हम जाएं बंदर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर धन छोड़कर पाप नहीं अपना।

प्रेम प्रेम करके मुझको कर देगी अब तू पागल, मेरा धीरज तोल रहा है।

बाप चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, बाप चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, राजा के शिकारे को भंवर में उतार दे।

जान के क्षमा का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना फिरना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको तो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति का स्वागत करती हूँ। और आज ज्ञान से रूबरू इस कार्यक्रम में ज्ञान के पीड़ों से छुड़ाकर कुछ बातें आज आपके बीच लेकर आई हूँ। और आज हम चर्चा करते हैं, हाँ, जीवन को जो भी ईश्वर के द्वारा जो भी पुरस्कार मिला है, कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें लगता पुरस्कृत किया गया है ईश्वर के द्वारा, लेकिन हम कभी कभी उसे समझ नहीं पाते हैं। तो जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार बनाए, हमेशा यही सोचे कि ईश्वर का दिया हुआ पुरस्कार है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं, जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार बनाए। तो जैसा कि कहा जाता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व की प्रशंसा केवल कहते हैं कि शमशान में ही होती है, लेकिन अगर कहते ही ऐसा है, लेकिन अगर यह कथन पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है, क्योंकि हम अनेक आयोजन भी अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित होते हुए देखते हैं। ऐसे सम्मान के नेपथ्य में यही उद्देश्य होता है कि समाज के अन्य लोग भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो सके। कई ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं जो श्रेष्ठ चरित्र, शुद्ध व्यवहार और श्रेष्ठ कर्मों से प्रशंसा योग्य होते हुए भी उनकी जो है निंदा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रशंसकों की तुलना में आलोचना की संख्या अधिक होती है। हाँ, उसमें आलोचक जो होते हैं उनकी संख्या आप देखना अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर यही पाएंगे कि संसार में लगभग हर व्यक्ति के अंतर्मन में जो होता है प्रशंसा और सम्मान की आकांक्षा जो होती है, यह बात अलग है कि किसी किसी को अपनी इस आकांक्षा का आभास नहीं होता, लेकिन उनका अंतर्मन जो है वो प्रशंसा और सम्मान की आकांक्षा रखती है।

किसी को इसकी आकांक्षा का क्या होता है अभाव कभी कभी नहीं होता है। सम्मान पाने वाले को जो है उनकी निंदा तभी मतलब होती है जब दूसरे लोगों में उसी प्रकार के या उससे अधिक सम्मान पाने की इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा अपूर्ण रहने पर किसी न किसी विधि से सम्मानित व्यक्तियों की निंदा करके उनकी छवि बिगाड़ने की प्रयास की जाती है। और एक तरफ हम ये भी देखते हैं सम्मान और प्रशंसा के जो भूखे लोगों की पीड़ा भी दोहरी होती है। एक ओर उन्हें किसी की प्रशंसा सुनना सहन नहीं होता, दूसरी ओर स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए उनके कान जो हैं वो व्याकुल रहते हैं। सम्मान के प्रति ऐसे आसक्त लोग जो होते हैं दूसरों को सम्मानित होते देख ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। ऐसा करके वे अपनी प्रशंसा और जो योग्य है जो भी उनकी बची खुची जो भी योग्यता है या जो भी विशेषताएं हैं उसे भी वो गवा बैठते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है जीवन को ईश्वर प्रद पुरस्कार बनाएं। जैसा कि हम देखते हैं, यदि किसी की प्रशंसा कम होती है तो निंदा भी कम होती है। इसलिए समाज के एक बड़े समूह को जिसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती, लेकिन जिनकी प्रशंसा अधिक बड़े स्तर पर होती है, तो उनकी निंदा और अपमान जो है वो भी बड़े स्तर पर होती है। निश्चित रूप से समाज के एक बड़े वर्ग को उनकी जानकारी मिल जाती है। यदि सम्मान पाने की भावना के साथ कार्य किया गया तो प्रशंसा भी होगी, आलोचना भी होगी, निंदा प्रशंसा का समाधान आध्यात्म के मार्ग पर मिल सकता है। जो व्यक्ति को निंदा प्रशंसा से ऊपर उठाकर एक ऐसे शिखर पर विराजित करता है जहाँ सर्व प्राप्तियों की सूक्ष्म फुहारें उसके अंतर्मन में बरसती हुई अनुभव होती है, इस शिखर पर सामाजिक सम्मान और प्रशंसा जो है वो तुच्छ अनुभव होने लगते हैं। इससे होता क्या है, सभी प्रकार की जो भौतिक इच्छाओं और आकांक्षाओं की जो भी ये होती है आकांक्षा इसकी, उससे मुक्त रहने का यह अलौकिक आध्यात्मिक तरीका है। मन की यह अवस्था जो होती है वो व्यक्ति को मैं और तू तू के चक्कर में जो आते हैं उससे ये बाहर रखती है। जिसने सम्मान नहीं चाहा उसका कोई अपमान भी नहीं कर सकता, और जिसने प्रशंसा नहीं चाही उसकी कोई निंदा भी नहीं कर सकता। स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से मन की यह अवस्था बन सकती है। यह अवस्था सर्व प्राप्तियों का जो होता है वो अलौकिक अनुभव स्वतः ही करवाती है। एक होता है अध्यात्म के पथ पर निरंतर चलने से मन की यह जो अवस्था होती है वो व्यक्ति के स्वभाव संस्कार में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, और ये जो होता है यह अलौकिक उपलब्धि समाज से जो प्राप्त सम्मान व पुरस्कार की तुलना में अनमोल है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आगे देखते हैं जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार कैसे बनाएं। तो हमारा आज का विषय है जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार बनाएं। जैसा कि हम देखते हैं जीवन यापन हेतु सीमित मात्रा में भौतिक हो जो साधन

हुए भी मन की यह जो श्रेष्ठ अवस्था है वो अवस्था अपने आप में संपूर्णता, संपन्नता और निश्चिंतता का अनुभव कराते हुए जो है जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करती है। सांसारिक दृष्टिकोण से यह जो है अवस्था जीवन की मुख्य धारा से विपरीत अवश्य अनुभव होगी, क्योंकि हमारा समाज जो है वो भौतिक उपलब्धियों की कसौटी पर ही व्यक्तित्व का आकलन करता है। आत्मा की जो यह श्रेष्ठ स्थिति जो होती है हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। करोड़ों में से ही कोई जो बेला होते हैं वही समझदारी से स्वयं को उस अनुरूप गढ़ पाता है। आश्चर्य की बात है कि समाज ऐसे बिरले व्यक्ति को मूर्ख ही समझता है। ईर्ष्या युक्त मानसिकता से ऊपर उठने के कारण ऐसे व्यक्ति सामाजिक आलोचना से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आत्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत होकर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा, क्योंकि समाज जो है ना, ऐसी महान आत्माओं के जीवित रहने तक उन्हें कौड़ी तुल्य समझा और मरणोपरांत क्या करते हैं, अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने या पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं, उन्हें देव तुल्य घोषित कर दिया। आवश्यकता यह है कि हम इस आध्यात्म की शरण में आकर स्वयं को दिव्य गुणों से इतना उत्कृष्ट बनाए कि हम स्वयं ही स्वयं का सम्मान और प्रशंसा कर सके। हमारा चरित्र जो है श्रेष्ठता को, उस पराकाष्ठा को स्पर्श करे जहाँ सम्मान, प्रशंसा और पुरस्कार की आकांक्षा न रहे, बल्कि समाज को हमारा संपूर्ण जीवन ही ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार नजर आए। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस हमने समझा है, उसमें हम बात कर रहे थे रिश्तों की, लोगों के साथ रिश्ता, और फिर अगर पिछली कड़ी को देखें तो अपने साथ रिश्ता हमने कायम किया था। अब इस रिश्ते को कैसे मजबूत करते जाना है, ये हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। आज इसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और रिश्तों की इस पूरी सीरीज में बात करते हैं परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मेरे रिश्ते की। कैसा होता है वो रिश्ता अगर हम जिंदगी में देखें तो सचमुच हमें से हर कोई भगवान के साथ जुड़ा है किसी न किसी रूप में। कभी न कहीं कोई मुश्किल आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हर बार भगवान को याद करते हैं। कुछ काम करवाना है या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, याद करते हैं कि प्लीज गॉड हेल्प मी। लेकिन सचमुच में ये रिश्ता क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार इस पूरी श्रृंखला में जब हमने देखा है एक नए अंदाज से हम चीजों को देख पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रमा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहां तक बात लोगों के साथ मेरे रिश्ते की थी, उसको नई नजर से देखा, खुद के साथ एक रिश्ता, एक पहचान बनी, तो समझ में आया कि ये रिश्ता जो है ये भी बन सकता है, और फिर उसके ऊपर काम करते करते मैनेज करना आया चीजों को। परमात्मा के साथ, गॉड के साथ रिश्ते की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग, अगर नास्तिक भी जो सपोजिटली जो नहीं मानते, वो भी कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मान रहे होते हैं, कुछ सुप्रीम को मानते हैं, और एक सचमुच में रिश्ता कुछ है लेकिन अनजाना सा, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे जाने,
1: जैसे आपने कहा रिश्ता तो है लेकिन अनजाना सा, हम उसके बारे में स्ट्रांगली क्यों नहीं सोच पाते? बिकॉज समवेयर हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किसके साथ वो रिश्ता है। यू नो, परमात्मा से रिश्ता तो एक सेकंड बात हुई, जैसे कि आपके साथ रिश्ता, रिश्ता तो तब जुड़े जब पहले आपका पहचान तो मिले,
0: कौन है वो, यू नो, सच में।
1: फर्स्ट बिफोर अ रिलेशनशिप गेट्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एनी टू एंटिटीज, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को पहचान तो ले। रिश्ता तो फिर धीरे धीरे एक एस्टैब्लिश होता है और फिर वो ग्रो होता जाता है, लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि वो कौन है, उसके बारे में हमारे माइंड में कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं, यहां तक कि तो डाउट भी आ जाता कि पता नहीं है भी या नहीं है, तो जिसकी एग्जिस्टेंस पर ही फेथ नहीं हो, यू नो, कभी ना कभी डाउट आ जाता है। कई बार काफी हद तक जीवन में हम चल रहे हैं, हम कहते हैं भगवान है, लेकिन सडनली मेरी लाइफ में कुछ, यू नो, सम ट्रेजेडी हिट्स और समथिंग, एंड सडनली ऐसे भगवान कोई है नहीं। आज दिन तक, क्योंकि हम इतने बॉडी कॉन्शियस में हैं, हमें अभी तक तो मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं पता था, यू नो, जैसे विस्मृति हो गई थी कि मैं कौन हूँ। सो आई थॉट आई वॉज अ बॉडीली फॉर्म, तो फिर भगवान को भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फॉर्म में ही ढूंढ रहे थे, कहीं देवी फॉर्म में ढूंढा, कहीं धर्म पिताओं के फॉर्म में ढूंढा, कहीं वर्तमान समय ही जो महान आत्माएं, संत आत्माएं, उनके फॉर्म में ढूंढा, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एक, यू नो, सॉर्ट ऑफ इल्यूजन में रखा कि उनके थ्रू हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। अगर, क्योंकि जहां भी हम जाते महान आत्माओं से ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ जाते हैं, और फिर अगर हमें कोई कहे लेकिन परमात्मा से तो भी जुड़ना है, तो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, इनके थ्रू हम उनसे जुड़ जाएंगे। बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इफ आई वॉन्ट टू मीट यू, इट इज मीटिंग यू। इफ आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट, देन इट इज मीटिंग योर पेरेंट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको मिल ली तो आपकी मम्मी को भी मिल ली, एक ही बात है। नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप हैं, वो है। आप एक कंपनी में जाते हैं, आप एक मैनेजर को मिलते हैं या आप एक सीएमडी को मिलते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मैनेजर को मिल ली, एक ही बात है, मैंने सीएमडी से मिल लिया। नॉट एट ऑल। हाँ, आपसे मिलो, आपके साथ रिश्ता एस्टैब्लिश हो, आपसे जो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना आई विल हैव, लेकिन परमात्मा से मिलो, आई कैन नॉट से आपको मिली, उनको मिली, एक ही बात है, नहीं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे, तो हम ये समझने लगे कि जिन्होंने कर लिया है
0: वो उनके साथ,
1: हम उनके साथ कर लेते हैं। हाउ विल दैट वर्क? आपका किसी के साथ एक रिलेशनशिप है, लेट्स से आपका आपकी मम्मी के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, अगर मेरा आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, does that mean therefore mera aapki mummy ke sath bahut acha relationship ho gaya? No, not at all. We still maybe we still haven't experienced ki what is it to have a relationship with God. Kyunki it will have to be a direct relationship. Relationship via nahi ja sakta. Aapko business karna hai, aap via kar sakte. Main aapke sath karu, aap kisi aur ke sath kare, aapko wo profit ho, mujhe aapse, that is all okay. But when we are talking of an exchange of energy, to mujhe agar parmatma ke sath karna hai, I will have to do it directly. It cannot happen. I cannot. Ye bahut bahut bada illusion hai jisme hum apne aap ko rakh rahe hain. Inke sath kar liya to unke sath apne aap ho jayega. Hamara to buddhi yog aaj atmaon ke sath hi jud gaya hai na. And that's a very special relationship. That's okay. Lekin wo un atmaon ke sath hai. Chahe wo dharm pitaon ke sath hai. Agar main Jesus Christ ko aaj yaad karu to pavitra atma jinhone itna shreshth dharm ek sthapan kiya. So I will experience a relationship with that soul. Mm-hmm. But that does not mean that I will experience a relationship with God. Mm-hmm. I will experience a relationship jinko main yaad karti hu, unke saath hi wo kahin na kahin jo bhi mera tarika ho yaad karne ka, us aadhar par main unke saath wo rishta anubhav karungi. But does that mean therefore I will experience a relationship with the Supreme mm-hmm. Power?
0: So, but then for that I have to be very, very clear, who is the Supreme Power?
1: Absolutely.
0: Who is the God?
1: Yeah. To jitne bhi चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे वर्तमान समय जो भी हमें परमात्मा का संदेश देते, और अब तो जो परमात्मा ने स्वयं आकर ही अपना परिचय दे दिया कि जैसे हम आत्मा हैं, तो पिता भी कैसा होगा. यू नो द चाइल्ड इज ऑलवेज लाइक द फादर. तो आई एम प्योर बीइंग, कॉन्शियंट एनर्जी, इटर्नल, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट टू विजुअलाइज. तो मेरा पिता भी कैसा होगा, हम उसको कहते ही है परम आत्मा. तो मतलब अगर मैं आत्मा हूं तो परम आत्मा कैसा होगा, वो भी एक आत्मा ही है. लेकिन हम कई बार सोचते मैं आत्मा, वो परम आत्मा. परम मतलब साइज में बड़ा,
0: बिग
1: बिग ना. सो परम इन पावर्स, परम इन क्वालिटी. परम मींस सुप्रीम. तो इफ आई एम अ प्योर सोल, तो द सुप्रीम सोल विल बी ओशन ऑफ प्योरिटी. वो आत्मा ही है, मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है. सिर्फ फर्क क्या है, जैसे डिग्री होती है ना, तो फर्क क्या है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, लेकिन वो आत्मा पवित्रता का सागर है. एंड परमात्मा और हम आत्मा में जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस वो आता कि हम आत्मा इस सृष्टि रूपे ड्रामा में वी टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी, टेक अ बॉडी लीव अनदर बॉडी. तो कहीं ना कहीं बॉडी से अटैच होते होते हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते और हमारे ऊपर वाइसेस का इन्फ्लुएंस होता. लेकिन परम आत्मा, ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एवर प्योर. वी लूज आर प्योरिटी बिकॉज ऑफ कमिंग इन दिस साइकिल एंड देन गेटिंग अटैच टू द बॉडी. तो वी लूज आर डिग्रीज, लेकिन वो एवर प्योर है. एंड अब जब मैं उसको पहचान लेती हूँ, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए क्या चाहिए, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, रोल क्या है, और उसकी क्वालिटीज क्या है, ये फंडामेंटल. जस्ट टू स्टार्ट विथ, इफ आई मीट यू द फर्स्ट टाइम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, देन आई स्टार्ट टॉकिंग. धीरे धीरे धीरे
0: आपकी विशेषताएं क्या है पता चलती है,
1: धीरे धीरे रिलेशनशिप डेवलप होता. तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आकर हमें अपना परिचय देते, आज दिन तक हम भगवान को ढूंढते आए थे, अब भगवान हमें आकर ढूंढता है. Because he also has a very special relationship with us. We are his children. So Paramatma hame aakar batate form kaisa hai. Like you are a tiny point of light.

0: आई एम ऑल्सो अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। आपका घर कहाँ है, आत्माओं का घर कहाँ है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच से पार, बियॉन्ड स्पेस, व्हाट वी कॉल एज द यूनिवर्स एज वी नो इट इज द लैंड ऑफ द सोल्स, द सोल वर्ल्ड, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम कहते आए, उसी को परम धाम भी कहते हैं। तो परम धाम, क्योंकि वो परम आत्मा का रहने का धाम। सो नाउ आई हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर इन माई माइंड, राइट नाउ आई एम हियर, वेयर इज ही, सो आई इमीडिएटली थिंक ऑफ हिम, देयर ही इज इन दैट लैंड ऑफ गोल्डन रेड लाइट, वो वहां है। एंड हाउ इज ही, ही इज द ओशन ऑफ प्योरिटी, द ओशन ऑफ लव। हु इज ही फॉर मी, आई विल एस्टैब्लिश माई रिलेशनशिप।
1: अभी एकदम से ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आना कि परमात्मा वो एनर्जी है और वो परम धाम के निवासी हैं, जहां पे इवन मेरा भी निवास नहीं है, वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, हर रोज की मेरी जिंदगी में, जो मेरा एक जीवन चल रहा था, जीवन चक्र था, उसके में कहीं एक डिस्पैरिटी है हल्की।
0: क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अपने को ह्यूमन फॉर्म में, मैं ह्यूमन ये बॉडी हूँ, इसमें देख रहे थे, तो आई फाउंड द नीड के सामने वाला भी कौन होना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन फॉर्म होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। और इसीलिए आज आप देखो, हम सबको याद कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान को याद करने बैठते हैं, इवन आपके पास जो भी फॉर्म है, आपने कोई भी फॉर्म क्रिएट किया है, फिर भी आज के सबकी कॉमन कंप्लेंट क्या है कि भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन
1: भटकता है।
0: क्यों? औरों को, दिस हैज टू बी अ वेरी क्लियर थिंग, ईच वन हैज टू आंसर इट फॉर देमसेल्व्स। सबको याद करते हो आप, सारा दिन याद करते हो, जो लोग पसंद नहीं है उनको भी याद करते हो, फोटो नहीं निकालते, तैयारी नहीं करते, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालते, एक्स्ट्रा स्थान नहीं बनाते, फिर भी याद नेचुरल आती है। काम करते हुए भी हम औरों को याद करते हैं, तो भगवान को याद करने में इतना मुश्किल क्यों होता है?
1: अच्छा, और एक और बात है, भगवान को जब हम याद करते, कई बार मैं ये सोचती हूँ, किसी भी भगवान की अगर बात करते हैं, श्री राम की बात करें अगर, तो उनकी जो फोटो है, जो एक पर्टिकुलर फोटो जो हमने देखी हुई है, वो फोटोग्राफी याद आती है, यू नो दैट मीन्स वो तो फोटो है, वो फोटो किसने बनाई, किसी पेंटर ने बनाई होगी। तो
0: इसीलिए इंस्टेड ऑफ looking at the form, क्योंकि वैसे भी आज भी जो मेरा relationship है, it's not with this body. Relationship किसके साथ है?
1: Soul.
0: It's this relationship of the soul with the soul. क्योंकि relationship क्या है? Thought with thought. फिर वो thought word में आएगा, action में आएगा, लेकिन अभी तक उस awareness में नहीं चल रहे थे, इसलिए हमने सोचा relationship जो हम बोले उस पर based है, लेकिन अब तो ये fundamental समझ में आया कि relationship उस पर based है जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, vibration का connection मेरा किसके साथ जुड़ना होगा, not just with the picture, it will have to be with that energy, right? अगर मैं किसी, okay, let's say I take a picture of a family member, ठीक है, suppose मैं आपकी बेटी की फोटो ले लेती हूँ,
1: ठीक है,
0: आई डोंट नो हर, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई टेक हर फोटोग्राफ एंड मैं सोचू कि मैं इसको याद करती हूँ, विल आई बी एबल टू डू इट? एंड यू, आपको उसकी फोटो की जरूरत नहीं
1: है? यस, यू नो, बिकॉज आई नो हर,
0: तो रिलेशनशिप फोटो पर बेस्ड नहीं है, रिलेशनशिप उसके ह्यूमन फॉर्म पर बेस्ड नहीं है। टुडे शी कुड बी इन अमेरिका, यू कुड बी हियर, ये हो सकता है आप उसको एक साल से मिले भी नहीं, आपको फोटो निकालने की जरूरत है याद करने के लिए? नहीं, याद कौन कर रहा है, कौन कर रहा है?
1: कॉन्शियसनेस,
0: कॉन्शियसनेस, रिमेम्बरिंग हु, अनदर कॉन्शियसनेस, उनकी क्वालिटीज, वो क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, वो कॉन्शियसनेस। फोटो की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो फोटो रखने के बाद भी याद नहीं आते हैं, तब भी कहते हैं कि हम भगवान को याद करने बैठे, लेकिन हमारा मन तो ऑफिस के काम में, घरों के, यू नो, परिवार के लोगों में भटक रहा था। क्यों? क्योंकि जिसको याद करने बैठे थे, क्लैरिटी नहीं,
1: एब्स्ट्रैक्ट है ना,
0: एब्स्ट्रैक्ट है ना, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, श्योर नहीं है कौन है। तो भगवान को जिसके साथ हम आज गायन करते आए कि मेरे सारे रिश्ते तेरे साथ हैं, तो उसको याद करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गायन में है, यू नो, वो महिमा में है, हमारी वाणी में है वो, कि मेरे सारे संबंध तेरे साथ, लेकिन शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। नहीं तो अगर लॉजिकली सोचा जाए, एक तो वो परमात्मा है जो हमें सिर्फ सुख, शांति, पवित्रता देता, दूसरा वो है जिसके साथ मेरे सारे संबंध है, हाँ, तीसरा वो

0: लग जाते थे, मतलब इतनी भावना, इतना प्यार, विच इज वेरी नाइस. लेकिन वो किसने क्रिएट किया?
1: मैंने
0: क्रिएट किया. तो हमने पहले ही देखा कि जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते हुए वो सबसे पहले हमारे थ्रू गुजरती है. लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर साइड?
1: आप कुछ भी कहते जाए, कुछ भी कहते जाए, मैं अगर नहीं कुछ बोल रही तो आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा.
0: From the other way. मुझे आपको transmit करते वक्त महसूस होगा, but I will not get anything from there अगर if you're not there. लेकिन जिस दिन आप actually आ गए सामने and अब I start transmitting, तो in return
1: I should experience. But how will I experience? How will I know that I've experienced it?
0: So how will we experience God? एनर्जी लेवल पर वर्क करें. हियर वी आर नॉट टॉकिंग के हम कुछ बोलेंगे एंड सडनली कोई आवाज आ जाएगी और कोई आंसर आ जाएगा. वी आर नॉट लुकिंग फॉर मैजिक. हम कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं. हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आई एम कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर. क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि किसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है और उसके साथ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग इन द रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशन है, राइट? अब हमने ये देखा कि जितने हमारे आज के रिलेशनशिप्स हैं, इनमें एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा वर्तमान समय इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वी नॉट बीइंग एबल टू गेट जो हमें चाहिए. लेकिन परमात्मा के साथ आई थिंक वी कैन हैव एन एक्सपेक्टेशन बिकॉज ही इज नॉट इन दैट बॉडी कॉन्शियस फॉर्म, ही इज स्टिल दैट एवर प्योर. तो उससे हम जो भी एक्सपेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वो जो है, अब हम आज परमात्मा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज भी हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं. मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप उसको ठीक कर दो.
1: मेरी सिचुएशन नौकरी नहीं मिल रही है,
0: नौकरी नहीं मिल रही है,
1: मेरे बॉस को हटा दो, या बहुत सारी और, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो,
0: यस, मेरी तबीयत ठीक कर दो, या दोस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है उसका रोल क्या है. व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद यू आई नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं. अगर मैं आपके साथ कुछ और एक्सपेक्टेशंस करने लगूं और फिर बोलूं आप तो अपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, तो हम परमात्मा से मांगते हैं. और हमेशा ज्यादातर आप देखो तो हम परमात्मा को तभी याद करते हैं जब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और फिर हम उससे मांगते हैं, और मांगते भी क्या है, प्रॉब्लम को ठीक कर दो. मैं कुछ नहीं तो मैं बोल दूंगी प्लीज कनुप्रिया को ठीक कर दो, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो आई एम आस्किंग गॉड to change the situation, to change the other person. अब हमें बहुत क्लियर हो गया कि ये सारी जो मेरी सिचुएशंस हैं, ये मेरे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं. अगर भगवान हर एक के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करने लगे, then the whole law of nature will go haywire. Paramatma God is the source of power. He is the source of truth, the source of purity. तो उनसे हमें मांगना है या जो लेना है वो क्या लेना है? वो जो है पावर, पीस, प्योरिटी. हाँ, आई कैन डू दिस कि मैं परमात्मा को याद करके वो शक्ति ले सकती हूँ जिससे मैं वो परिस्थिति को मैं हैंडल कर सकती हूँ. लेकिन परमात्मा को बोलूं मेरी परिस्थिति चेंज कर दे, तो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो देयर अगेन आई विल नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग, क्योंकि परिस्थिति कई बार चेंज होती, कई बार नहीं चेंज होती. चेंज हो जाती तो हम कहते थैंक यू गॉड, नहीं चेंज होती तो हम कहते आई डोंट लाइक यू, आपने मेरी बात तो ठीक की नहीं. सो वी डोंट रियलाइज के ईदर वेज ही वॉज नॉट प्लेइंग अ रोल इन दैट. दीज सिचुएशंस आर माई कार्मिक अकाउंट्स. कहीं ठीक होने वाला है, कहीं नहीं ठीक होने वाला है, बट वॉट इज माई रोल? आज हम परमात्मा को जब याद करते तो माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, माइंड साइलेंट हो जाता है, आत्मा में ताकत आ जाती है, और फिर आत्मा अपनी परिस्थिति हैंडल करती है. परमात्मा परिस्थिति नहीं चेंज करते हैं. सो नाउ व्हेन आई कनेक्ट टू गॉड, इट इज नॉट विद चेंज द सिचुएशन, इट इज विद द इंटेंशन ऑफ एम्पावरिंग माई सेल्फ. अपने आप को गिव मी भी नहीं बोलना पड़ता. गिव मी भी क्या करना है? आप एक सागर के किनारे जाकर बैठ जाओ, आप गिव मी थोड़ी बोलते हो,
1: वो अपने आप आ जाती है.
0: आप सागर के किनारे जाकर बैठ जाते हो, शीतलता, ठंडक अपने आप फ्लो करते हैं,
1: पानी अपने आप आता है, लहर अपने आप
0: आती है. आप अपनी बेटी को अभी याद करो, आप बोलोगे थोड़ी गिव मी लव, आप बोलोगे नहीं ना गिव मी लव, क्योंकि वो रिश्ता ही क्या है कि जैसे ही याद किया आपको अभी प्यार की अनुभूति हो जाएगी. आप अभी कोई ऐसे

0: स्वच्छता के सागर का बच्चा हूँ। मैंने याद किया, किसको याद किया? अपने पिता को याद किया। और हम तो यहाँ प्यार से उनको बाबा कहते हैं, बिकॉज ही इज माई फादर। अगर हम भगवान, ईश्वर कहते हैं तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स मी लिटिल अवे, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटल्स देन, बट ही इज माई फादर, तो वी कॉल हिम बाबा। लेकिन बाबा जब हम कह रहे हैं, इट्स नॉट ए ह्यूमन फॉर्म, इट्स दैट एनर्जी। तो जैसे ही हम उसको, उसकी क्वालिटीज को याद करेंगे, तो यहाँ बैठे क्या एक्सपीरियंस होगा? ऑटोमेटिकली। एंड फिर वो क्वालिटी, वो पावर मेरे अंदर भरती जाती, क्योंकि जैसा संग हम रखते वैसा रंग अपने आप लगता जाता। तो परमात्मा को याद करेंगे, मतलब परमात्मा के संग में रहेंगे, तो उसका रंग अपने आप लगता जाएगा। तो सिचुएशन को हैंडल करना
1: शक्ति आ जाएगी हमारे पास।
0: एंड नॉर्मली क्या होगा कि जो चीजें हम औरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, एंड हमें नहीं कहीं मिल रहे, हम उसके साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं। आज हम लव अनकंडीशनली, कैन वी एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव फ्रॉम एनीवन? नो। लेकिन विद गॉड, यस। कैन वी ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एंड से चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, इनके साथ गलत नहीं होगा? बट विद हिम, यस। जितने हम रिश्ते आज सारा दिन में निभाते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं ये मेरे से नाखुश ना हो जाए। विद हिम आपको कोई डर नहीं है। तो जहां कंप्लीट ट्रस्ट है, कंप्लीट सिक्योरिटी है, प्यार है, कहीं डर नहीं है, रिलेशनशिप कैसा होगा? और ये रिलेशनशिप फिर हमें इतना शक्तिशाली बनाता है, इतना भर देता है अंदर, कि फिर हमारे जो दूसरे रिलेशनशिप्स होंगे
2: वो अपने आप होने लगते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि परमात्मा से हम कौन से संबंध जोड़ सकते हैं और उनसे हमें क्या प्राप्ति होगी।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंदित रहा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्वती, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, कितनी तरह के स्किल्स हम सीख चुके थे, लाइफ को ही नहीं जान पा रहे थे। अब वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीखते जाएंगे। जिंदगी बहुत सुंदर होती जा रही है और अनुभव से बड़ा जो कहते हैं कि सच कोई और नहीं होता, तो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव होता है, तब हमारे लिए वो सच बन जाता है। आज भी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दिन भर में हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि दिन जो है वो कम पड़ने लगता है। हर बार की तरह हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत है। शांति
1: शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सी बातें हमने सीखी। आप ये लगता है कि दिन छोटा है, इतनी सारी चीजें हैं, काम है, बहुत कुछ और मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है। अब हम स्टूडेंट बनके स्किल्स भी सीख रहे हैं ये इस पूरी श्रृंखला के अंदर अंदर कि कैसे हमने अभी तक गलतियां की थी उन्हें ठीक करें, लेकिन टाइम जो है वो मतलब दौड़ जाता है, भागता है। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए, नहीं होता। कहां गलत हो रहे हैं हम समय को समझने में, उसे मैनेज करने में?
2: सबसे जो फाउंडेशन इनफैक्ट यही है कि भी सवेरे जल्दी उठो तो आपके पास हुआ 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और तब तो जल्दी उठो सवेरे, और वह जिसको कहते अधिकतर 90% का वही पीक टाइम होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपने स्नान आदि किया, तैयार हो गए, उस समय जो सबसे डिफिकल्ट काम है वह करो।
0: लेकिन उस वक्त तो जब हम अपने आप को उठाते हैं हम इतने हैवी हुए हुए होते हैं।
2: विशेष सर्कल आपने खुद क्रिएट किया कि भाई टेंशन में सारा दिन बिताया, लेट सोए, शराब पी के सोए, या तो और रीति से भी और टेंशन में ही सोए तो सवेरे उठे तब भी फिर दिक्कत होती है। अगर फुल साइकिल को आप ठीक करो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने निश्चित टाइम किया है तब उठ जाओ, और उठते ही फिर ये नहीं कि अभी और 5 मिनट के बाद अभी नींद आ रही है और अभी 10 मिनट के बाद, ऐसे में आपने टाइम डिसाइड किया तब बस, भल नींद आ रही है तो भी उठ जाओ। एक बार उठ के कुछ पैदल करने लगो, चलने लगो, ब्रश करने लगो। मैं तो सीधा स्नान करता हूँ, चाय भी नहीं पीता, उठे सीधे 1.5-2 ग्लास पानी पिया, बस सीधा ब्रश करने गए, तैयार होने लगे, शेविंग की, और देखो उतनी देर में फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। उस समय क्यों हमें थकावट रहती है, क्योंकि नींद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, और जब तक वो नॉर्मल ना हो आप में एनर्जी नहीं आती है। परंतु अगर इस प्रिंसिपल को अपनाओ कि तुरंत बस आप तैयार होने लगो।
0: लेकिन सुबह उठते तो अखबार चाहिए ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं कि वो सोए हुए अखबार आती है, चाय आती है, उससे उठते हैं।
2: पूरी मतलब इट्स वर्स्ट थिंग, दोनों नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बैड टी इज बैड,
0: बैड टी इज बैड,
2: इसीलिए तो बैड टी कहा ना उसको। तो चाय पीनी भी है तो नाश्ते के बाद पियो, उठते ही चाय नहीं पियो, क्योंकि चाय की जो हार्मफुल इफेक्ट है वही है कि इमीडिएटली वो इरिटेशन क्रिएट करती है, स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी चाय पिएगे तो नुकसान नहीं होगा। और अखबार के नेगेटिव न्यूज है, बस एक आदत की बात है, 2 दिन आप करिए, बस उठते ही 1.5-2 ग्लास पानी पियो, पॉसिबल तो बस उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो ताकि वाइटामिन सी आदि हम आपको

0: करेंगे और फिर तैयार होने जा। वो आधे पौने घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्नान आदि करके आप फ्रेश भी होंगे। फिर चाहिए तो भले आप एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी चाय पीनी है तो पी लो। इस प्रकार से वह जो टाइम आपको मिल जाएगा और तब एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा।
1: आपने कहा स्नान के बाद एक्सरसाइज करो।
0: नहीं, अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी सिंपल तो करो भले। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भले पहले ही कर लो, तो पसीना होगा। अगर नॉर्मल योगा आदि करते हैं कि जिसमें आपको पसीना नहीं होना है, तो स्नान के बाद भी करो तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मुख्य बात तो मेरी ये थी कि भी सवेरे थोड़ा जल्दी उठो और वह आपको डेढ़ दो घंटे का जो टाइम मिलेगा वह पावरफुल टाइम होगा। तब डिफिकल्ट काम करो, अच्छे से सारे दिन का प्लानिंग करो। तो जो आपका शुरू में प्रॉब्लम था कि भी दिन छोटा पड़ गया, वह दिन छोटा नहीं पड़ेगा। आपका 25-30% काम अर्ली मॉर्निंग में भी हो जाएगा। मेंटली भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे।
1: लिटरली देखें, ज्यादातर देखें सत्य शिवानी, जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि सुबह उठे और टाइम हमारे पास कम है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ स्केड्यूल हमने रखा हुआ है जो हमें करना है, और उसके बाद ट्रैफिक जाम मिलेगा या कुछ मिलेगा, उसका मार्जिन रख के भी हमें घर से निकलना है। तो टाइम तो प्लानिंग का, हमें जीने का ही टाइम कम मिल रहा है, ये इसको कैसे हैंडल करें?
0: गलती तो वही है ना कि आप ये सोचते हो कि 45 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे। आपको 7:30 को घर को निकलना है तो आप 7 बजे उठते हो, फिर तो हड़बड़ी होगी होगी। ये जो ब्रह्मा कुमारी की लाइफ स्टाइल है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हम जल्दी उठते हैं, जो मैंने बताया, तुरंत स्नान कर लेते, तैयार होते तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5-3 घंटे होते हैं।
1: लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक आदत है कि आप 7 बजे उठते हैं तो तब आप फिर, क्योंकि आप रात इतना लेट सोए होते हैं और जो भी है, तो इस कारण वो सुबह उठने के बाद भी काफी हैवीनेस रहती है।
0: तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम है।
1: ओके।
0: आपने जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट किया कि भी रात को 1:30 बजे सोना, सवेरे 7 बजे उठना, उसको बदलना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को भी वह सेटिंग हो गई है। क्या करिए, अगर अभी आप 1:30 बजे सोते हैं तो 5 दिन 1 बजे सोना शुरू करिए तो नींद आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और 5 दिन के बाद 12:30 बजे सोइए, और सप्ताह के बाद 12 बजे सोइए। ऐसे करते करते आप 10:30-11 पर भी आ सकते हैं, फिर सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं होगा।
1: तो पहले हम सोना जल्दी करें या उठना करें?
0: सोना जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा ही, 1/2 आवर ही आप जल्दी सो, भले उसी टाइम पर उठो। फिर और कम हुआ तो उठना जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड है स्लीप का वो तो पूरा हो गया।
1: और एक जो मैंने अनुभव किया है, घर पहुंचते 10 बजे हैं, फिर क्या करें? तो भी अपनी, अब ये भी सोचना होगा हम 10 बजे क्यों घर पहुंच रहे हैं, हमें हर काम करने में आज ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन नहीं रख रहे। आई विल हैव टू स्टॉप, रीशेड्यूल एवरीथिंग, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हम सब जब मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, एंड कई बार हमने ये बात की है, राजयोग मेडिटेशन इज नॉट 10 मिनट्स और 1/2 आवर, राजयोग मेडिटेशन इज अ लाइफ स्टाइल ऑफ 24 आवर्स। तो जो परिवर्तन हमें एक तो अटेंशन रख के लाना है, कुछ धारणाओं को हर रोज फॉलो करना है, जैसे ही हर चीज पर फॉलो करते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या भोजन खाना, सारा दिन में कैसे सोचना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे द होल साइकिल विल फॉल इनटू प्लेस। देखो, जब डिसहार्मनी होती है तो पूरे एस्पेक्ट पर डिसहार्मनी होती है, जैसे ही आप उसको हार्मोनाइज करना शुरू कर देते पूरा दिन हार्मोनाइज हो जाएगा। एक चीज भी अगर हम शुरू करें कि मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर,
2: कभी भी उठो
1: जल्दी थोड़ा, क्योंकि अगर लेट उठे तो फिर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हम क्या कहते हैं, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। सी अगेन, हमने मेडिटेशन को अपने प्लानर में कहाँ डाल दिया कि अगर टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो टाइम तो कभी होता ही नहीं है। हमें अगर उसकी इक्वेशन को चेंज करें, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। सी, इट्स जस्ट द वे आई ट्यून माई सेल्फ, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इफ आई से टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो वो हफ्ते में कभी एक दिन टाइम मिलेगा तो करेंगे, और क्योंकि रोज नहीं करेंगे तो जब वो एक आधा दिन करेंगे, योग लगेगा नहीं, फिर कहेंगे लगता नहीं, क्या आधा घंटा निकाल के बैठे, लगा भी नहीं, सो देन इट गोज आउट ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट। मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, इससे मेरा थॉट और टाइम

0: मैनेज होगा. नाउ लेट मी एक्सपेरिमेंट करके कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, जो भी टाइम हम उठते हैं, क्योंकि इमीडिएटली शायद नहीं कर पाए. प्रेफरेबली जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि 4:30 जो अमृत वेले का समय है, जब माइंड की एक्टिविटी, जब हम वो मेडिटेशन बहुत पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़े दिन उसको अभ्यास करके देखें. जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आती है, अपने आप आने ही है.
1: ये तो होता है कि जिस दिन आप सुबह,
0: तो अगर स्टार्ट करना है मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट कि कल से मुझे ये स्टार्ट करना है और वो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करना है. नहीं भी हो रहा, अभी हम नए हैं, फिर भी मुझे रोज करना है. कोई भी एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत दर्द होता है पहली बार. अब जो हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं है, तो हम कहते छोड़ो, एक्सरसाइज करने से दर्द होता है. एक्सरसाइज करने से तो दर्द नहीं होता ना कभी, लेकिन वो कुछ एक दिन हमें क्रॉस करना पड़ता है. सेम विद मेडिटेशन. थोड़े दिन हम कहेंगे उठते हैं नींद आती है, उठते हैं योग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, अभी हम स्लीपी हैं, फिर भी हम बैठेंगे. जो सारी तैयारी करके, जैसे गिरीश भाई ने बताया, हम बैठेंगे, लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि योग करेंगे और थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगे. मेरे सारा दिन के थॉट्स कैसे चलेंगे? सी, वो मेडिटेशन मतलब सिर्फ उतनी देर में ना, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ टू अनदर फ्रीक्वेंसी. सारा दिन थॉट्स कैसे हो जाएंगे? स्लो डाउन होंगे. रात को घर भी पहुंचेंगे, सोने का टाइम होगा, थॉट्स कैसे होंगे? स्लो होंगे. सोएंगे, अच्छी नींद आएगी, सुबह उठना इजी हो जाएगा. इट विल हैव टू स्टार्ट विद द मेडिटेटिव थिंग इन द मॉर्निंग. कि मेडिटेशन और ज्ञान, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन. हम लोग जब सभी पहली बार आते हैं, हम में से किसी को सुबह पहले 4 बजे उठने की नहीं आदत होती है. इट इज एन अनअर्थली टाइम. वी यूज टू थिंक 4 बजे कोई उठता है, ये कोई उठने का टाइम है, अभी तो रात लगती है बाहर. एवरी वन कम्स विद देयर ओल्ड लाइफ स्टाइल. कोई 6 बजे, 7 बजे, कोई तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे. लेकिन किया, परिवर्तन हुआ, प्राप्ति हुई. थोड़े दिन मुश्किल लगा, थोड़े दिन के बाद रह नहीं पाए उसके बिना, क्योंकि उसका वो आधा घंटा जो हम निकालते हैं, वो आधा घंटा नहीं है. इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर 24 आवर्स. अगर मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला, तो पूरे दिन शरीर ठीक रहेगा ना. और पूरा दिन क्या, फिर हर रोज शरीर ठीक रहेगा. लेकिन कहें कि वो आधा घंटा नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो भी सारा दिन काम करेंगे, लेकिन ड्रैग करते हुए, इस तरह से एनर्जेटिक. सो लेट्स बिगिन विद दैट मेडिटेशन. दिस हैज टू बी पुट ऑन टू माई प्रायोरिटी लिस्ट. कि ठीक है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ विद दिस? हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं. हु एवर थॉट दैट वी हैड टाइम फॉर दैट बिफोर. आज ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई बहने आते हैं, 9 लाख से ऊपर परिवार है ना, उनका भी शॉप है, बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे पास इतने इतने बच्चे हैं. अगर उनका स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का है, पहले वो 8 बजे तक तैयार होते थे ना, आज वो 7 बजे तक तैयार होकर सेंटर पर आते हैं मुरली क्लास के लिए. क्या प्राप्ति है उस छोटे से बच्चे को? 1 घंटा एक बच्चे के लिए जल्दी उठना. इट हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड. देन यू गेट द रिजल्ट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. फिर वो आपकी हार्मनी में लाइफ स्टाइल चलने शुरू हो जाएगी.
2: ना, 3 बातें एक्चुअली. एक तो जो कहा कि प्रायोरिटी उसको दीजिए, कि मुझे जल्दी पहुंचने की प्रायोरिटी है. अभी घर में आप पहुंचते हो 10:30 बजे, तो मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना ही है. उसके लिए दूसरा ये करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़ेगा. लर्न टू से नो, अभी मुझे पहुंचना है 9:30 तक, तब मेरी दिनचर्या ठीक होगी. और तीसरी बात, कहीं छोटा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा. तो बिजनेस थोड़ा सा कम चले कोई बात नहीं, और कोई एक आध काम आपका रात्रि का हुआ कोई बात नहीं, थोड़े दिन में करूंगा, फिर सवेरे तो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उल्टा और आप एफिशिएंटली करेंगे. जैसे कहते हैं सक्सेस के लिए भी कहा है, डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम
0: इन द राइट वे.
2: राइट वे,
0: यू मे बी डूइंग थिंग्स बट नॉट इन द राइट वे एट द राइट टाइम.
1: एंड आई थिंक वी डोंट इवन नो, हमें पता ही नहीं है कि राइट क्या है. राइट और रॉन्ग को भी हमने इतना रिलेटिव कर लिया.
0: इसीलिए तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम. और फिर बाकी जो सारे साइड इफेक्ट साथ में आ रहे, इट्स ओनली बिकॉज eating not at the right time, sleeping not at the right time, thinking not in the right way. इस पूरी सीरीज में हमने देखा है कितनी सारी हम गलतियां करते आ रहे हैं. छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें, टाइम वुड नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज थॉट्स स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं. हमारे सेंटर पर हैदराबाद में मिस्टर KVK राजू आते थे. ही वॉज

0: he's left the body. He was chairman of Nagarjuna Fertilizers. Chairman hai, bahut badi industrial setup ka. Pehle to kehte the time hi nahi hota tha. Mere ko to 1:30-2 baje to sone ka time milta hai. Aur bahut kam der sote the. Lekin jab meditation ka prapti samajh mein aayi, to unhone 3:30-4 baje uthna shuru kiya. Jaise Girish bhai ne kaha sacrifice, unhone parties band kar di, late night socializing band. Chairman hai na, ye thodi socha ki meri company mein koi loss ho jayega. Nahi, samajh mein aaya what is good for me. Unke ek plant pe bahut kuch badi problem chal rahi thi kafi samay se, between the labor and the top management. Meetings, discussions, no solution. Ek din wo morning mein uthe 3:30, he was sitting in meditation. There is the answer. What the idea which he got in the early morning, he put it forward to his board of directors us din meeting mein. Everyone went unanimous, yes, ye isi tarah hona chahiye. Jo unhone us din plan kiya aur implement kiya, unko government ke level se us cheez ke liye award mila tha. And he said, kitne din meetings, discussions and morning meditation, and mujhe idea aaya. The time waste ho raha tha na, lekin hame lag raha tha na hum bahut busy hain, discussion kar rahe hain. Koi bhi problem hai. Discussion is sometimes waste of time and energy. Hum superficial level par soch rahe hain, hum anxiety mein, stress mein soch rahe hain, kabhi accurate solution nahi aayega. Leave it, iske bare mein kal sochenge. Jab silence mein hote hain, jab hamari ekdam ye anxiety stress wali thoughts bilkul clear and purity ki state mein hain, aise solution aakar samne khada ho jayega. To kitna time bacha.
1: Aapne kaha ki time nahi hai isliye meditation karte nahi karte hain. Meditation karenge to aapka time jo hai aapke paas bahut zyada ho jayega. Ye time aapka manage ho jayega.
0: We find that ke bahut time hai aur batao aur kya kaam karna hai, jabki we doing much more than jo pehle kya karte the sara din ke andar. It's just that thought streamlined hoti hai na, har kaam ko kam time lag raha hai.
1: How is that possible? Agar science,
0: agar main kaam kar rahi hu project pe aur koi stress nahi hai, koi fear nahi hai, insecurity nahi hai, ye hoga nahi hua to agar uska pehle, all this is not there, to aapki puri concentration kis par hai? Kaam par hai. Definitely wo kaam jaldi hoga aur galtiyon ke bina hoga. Aapko decision lena hai. Aapke mind mein doubt nahi hai, confusion nahi hai. Decision lene mein kitna time lagega? Aap yahan wahan baith kar idhar udhar ki iski uski baatein nahi kar rahe hain. Andar bhi nahi chal raha, bahar bhi nahi kar rahe. Kitna time bachega? You could just save lot of time and energy. And sara kaam jaldi hota jayega, and you'll say more. And most important, sirf kaam nahi hoga, enjoy karte hue, halke rehte hue wo kaam karenge, and jab shaam ko ghar aayenge, you will be more or less jaise aap subah gaye the, at least mentally. Physically thak sakte hain, lekin mentally you are still very charged, kyunki mind was still slow even if the body was fast. Jab jo bahut fast physically kaam karna ho sakta hai, but my mind if it is slow, hum nahi thakte hain. Aaj hum physically static baithe hain, computer pe baithe hain to baith hi gaye ghanton, lekin mind kitna fast hai. So I have to ask myself, kaun thaka? At the end of the day, thaka kaun? Shareer ne to bahut zyada kuch kiya hi nahi, man bahut zyada thaka. Aur fir raat ko usko slow down nahi kiya, to ye thake hue man ko raat ko sone bhi nahi diya. Ye abhi bhi raat ko chal raha tha. Tab jo aapne kaha ki subah uthenge to sar dard ho raha hai, thake hue man ke sath uthe hain, it's still like very heavy over here, fir bhi time nahi hai, rest thodi kar sakte, fir us thake hue man ko liya, fir us journey par chale. Imagine, days and days, years and years have passed like this. What will be the result? That's the only reason why we are suffering so much. Jaise isko slow down karenge, har cheez streamline ho jayegi.
2: Morning mein bahut kuch aapko mera anubhav sunata hu. Mujhe kai baar likhna hota hai, books likh rahe hain. Dekha hai ki agar evening mein likhte hain, to agar ek page likhne mein aapko aadha ghanta laga, to morning mein wohi 10 minute mein likh pate. It means it is almost triple. तो इसलिए भले थोड़ा जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताई वो फॉलो करके सवेरे एटलीस्ट एक घंटे का टाइम आप निकालो कि फ्रेश हो गए, सब कुछ वो आपने लिए है, चाहे उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो और ये सारे दिन का फॉरवर्ड प्लानिंग करना है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करो, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी.
1: एक मैं बात ये जानना चाहती हूँ, ये आपने कही बात की फिजिकली, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज कि हमने फिजिकली तो कुछ करते ही नहीं है. ज्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे हमें इतनी ज्यादा थकान है कि हम कुछ भी शाम की वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाते हैं. तो ये मेडिटेशन के बाद जो हम दिन की शुरुआत करते हैं उसमें और आज जो मैं जिंदगी जी रही हूं उसमें क्या फर्क हो जाएगा?
0: क्योंकि थॉट प्रोसेस स्लो डाउन एंड एक्यूरेट होता जाएगा. पूरा हम समझते आ रहे हैं थॉट हर चीज कर रहे हैं, थॉट का बॉडी पे इफेक्ट. आपने कहा बॉडी ज्यादा कुछ नहीं करती, फिर भी हम थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सारा दिन में हमने कितनी टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितनी क्रिएट की. गिरीश भाई ने बताया हर थॉट का बॉडी के हर सेल पे असर, हर थॉट का ब्रेन के हर केमिकल पर असर. तो इतनी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो ब्रेन पर और बॉडी पर कितना असर पड़ा होगा. किया कुछ भी नहीं था, गाड़ी में बैठे थे, गए थे, सारा दिन एसी ऑफिस में बैठे वापस, यहां क्या क्रिएट किया? वी एक्सपीरियंस के जब हम माइंड का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकल बहुत एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी माइंड लाइट है एंड राइट है तो फिजिकली भी एग्जॉशन है. आप अपने आप को एक हॉलीडे पे देखो, लुक एट योर सेल्फ ऑन अ पिकनिक. ठीक है, आप वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, ड्राइव करके 2-3 घंटा दूर जाते हैं, वहां पे ट्रैक करते हैं. ये वो चीजें हैं जो आप अपने नॉर्मल डे पे कभी नहीं करते. राइट, फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं उस दिन, इनफैक्ट बहुत एग्जॉस्टेड हैं उस दिन, लेकिन आप मेंटली कैसे थे पिकनिक वाले दिन?
1: बहुत खुश थे.
0: तो घर आके भी कैसे लगेगा? और कुछ मूवी चलना है रात को? आई स्टिल हैव दी एनर्जी. बाय फिजिकली हर चीज टूट रही है, दर्द हो रहा है. माइंड, आई डिड नॉट क्रिएट एनी स्ट्रेस टूडे. मैंने आज किसी पर गुस्सा नहीं किया सारा दिन पे. देर वॉज नो फियर. माइंड ओवर मैटर. मन का नहीं ध्यान रखेंगे तो टाइम का भी ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि सब चीज क्रम्पल होने लग जाती है. तो मेडिटेशन हम मॉर्निंग में भी करते, और फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, हर एक घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल, वो चार्जिंग, ताकि अगर कहीं भी गलती से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही थी, हमें फिर वो अटेंशन मिल जाता. हम रुक कर फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते. हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया राइट थिंकिंग, तो वो राइट थिंकिंग कई बार बीच बीच में चेक कर लेते हैं. पूरा दिन अच्छा अगर बीतेगा, बहुत अच्छी नींद रात को आएगी. अगले दिन सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी.
2: और एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, और सब चीजों की तुमने चर्चा की है, परंतु सवेरे सवेरे आपने मेडिटेशन कर लिया तो परमात्मा की भी मदद मिलती है, जैसे वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं. तो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग.
1: लेकिन मतलब अभी भी ज्यादातर लोगों के साथ ये बात है कि मेडिटेशन और मेरी डेली लाइफ में क्या परिवर्तन है, क्या कनेक्शन है? सी, मेरे डेली ऑफिस के जो मीटिंग्स हैं, ऑफिस की जो हैंडलिंग है, ऑफिस के जो डिसीजंस हैं, उसमें और मेडिटेशन, तो मेरा जो हम मेडिटेशन यहाँ कर रहे हैं एक परमात्मा के साथ कनेक्शन है या अपने साथ कनेक्शन है, उसमें मेरा ये जो ऑफिस के डिसीजंस हैं या लाइफ के डिसीजंस हैं, उसका कनेक्शन क्या है?
2: तो एक बार तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे तो लोगों से डील करना बहुत ईजी होगा. कई बार हम एंग्जाइटी में लोगों से डील करते हैं तो उल्टा गलतियां कर बैठते हैं. रिलैक्स्ड वे में करेंगे तो सही करेंगे. थोड़े डिटैच भी होंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा. अब देखिए, डिटैच होके कोई देखता हो तो वह चीज को सही दिखेगा. वैसे आप डिटैच होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव सही हो जाएगा, अन्यथा आप अटैच होकर के कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी गलत हो रहा है. इंट्यूशंस भी आपको मिलेंगे, जो इंट्यूशंस भी मदद करेंगे कार्य को सही करने में.
0: मेडिटेशन में जो सबसे पहली बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, माय थॉट्स आर इन माय कंट्रोल. जैसे ये फंडामेंटल चीज पर मास्टरी आ जाती है, आपके इमोशंस पर मास्टरी आने लगे, आपने सारा दिन किसी पर गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, आपने लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो आपने उनको कौन सी एनर्जी भेजी?
1: एक्सेप्टेंस की.
0: जैसे आपने उनको वो वाली एनर्जी भेजी, आपको उनसे कौन सी एनर्जी मिली? सी, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम क्यों भारी हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही है. आई मे बी द लीडर ऑफ माई कंपनी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं और उस वजह से कई लोगों के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या गुस्सा नहीं भी कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत फियर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उनसे फियर की एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मुझे भारी करेगी, उनको तो करेगी करेगी. आई ऑलवेज फील कि एक लीडर के लिए

0: एक जूनियर से ज्यादा रिस्की है। हमें लगता है कि जो जूनियर्स हैं इनको डांट खानी पड़ती है, तो इनके लिए बहुत टफ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप वर्कर का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांट किसको खानी पड़ती है? ज्यादातर वर्कर को खानी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या एग्जीक्यूटिव को क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 10, 20, 100, 1000 वर्कर्स के लिए जिम्मेवार है। मैं एक को अगर डांटती हूँ, उसको तो एक ही बार डांट मिलती है। मैं 10 को डांटती हूँ, मुझे कितनी बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है? 20 times, 10 times when I gave it and 10 times when they give it back to me. तो मेरी तबीयत पर तो असर पड़ना ही है। अगर मैंने बचा लिया अपने आप को इन चीजों से, और उल्टा अगर मैंने 10 times प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी, तो मुझे 20 times कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाउ विल आई फील बाय द एंड ऑफ द डे? मेरे को लगेगा जितना पहले था उससे भी ज्यादा लेकर मैं शाम को घर पर।
1: इट्स अ बिग टेस्ट। आप जैसा फील कर रहे हैं शाम तक जाते जाते, ये आपको बताएगा कि आपके दिन भर की स्थिति, आपने क्या क्या दिया।
0: बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, और कुछ भी नहीं है। इट्स अ रिफ्लेक्शन, मैंने आज सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट की, कौन सी एनर्जी गिव की, और फिर औरों से मुझे एनर्जी मिली। शाम को एक्सरे आपको पता चलेगा, यू नो एग्जैक्टली वेयर यू मेड अ मिस्टेक। एटलीस्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग अदर पीपल। लेट मी जस्ट चेंज व्हाट आई गिव फ्रॉम टुमारो। हर स्टेप पर चेंज आएगा, बहुत अच्छा सारा दिन बीतेगा, एंड यू विल एंजॉय योर वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट।
1: यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई एंजॉय द डे, यू नो, जो पूरा दिन, इतना सुंदर दिन मेरे लिए दिया है, उसको मैं एंजॉय तो कर पाऊंगी। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शांति।
1: सचमुच देखने की बात है, बार बार हम कितनी बार फिल्म में या किसी किताब में, कविता में सुनते थे, पढ़ते थे कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एहसास क्या हो रहे हैं हमें? आज हम जिंदगी जीना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना थका हुआ महसूस करते हैं। आज जितना बड़ा टेस्ट हमारे सामने आया है, हम शाम को कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर थके हुए हैं, अगर दुखी हैं, अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, इसका मतलब दिन भर में यही चीजें ना सिर्फ मैंने दी हैं बल्कि रिसीव की हैं। जब मैंने जितनी बार मैंने दी उससे डबल टाइम मैंने मुझे मिली है, क्योंकि उतनी बार मैंने दी थी और फिर उन्हीं लोगों से मुझे वापस मिली। अब देखना ये जरूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसा महसूस करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैंने तो दिन भर अच्छा रही थी, लेकिन अगर शाम को मैं थकी हुई हूँ, इतनी भारी हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइम को मैनेज करने के लिए जो अभी तक हमने इतने तरीके किए थे, एक जो आज मैं सूत्र पकड़ कर जा सकते हैं हम लोग, कि सुबह अपनी अपने हाथ में कर लें। जैसे अभी तक सोच को अपने हाथ में किया था, सुबह उठने को अपने हाथ में कर लें। एक बार मन को ये तैयार कर दें, समझा दें, ताकि सारी चीजें उठते ही मेडिटेशन को अपना, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, ताकि सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस। ये अनुभव बता रहा है और देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या कहता है। आज अवेकनिंग विद डॉक्टर मोइज़ में इतना ही, फिर मिलेंगे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। अयो अयो अयो अयो ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना बिना बिना बिना।

के खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा कहे के खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: बत्ती बना ले मुझे पत्ती, मैं हो गए मशरती तेरे बिना।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करें।
4: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यशस्वी भारत। भारत का जो गौरव है वो देश और दुनिया तक फैला है, लेकिन दोस्तों भारत का गौरव फैलाने वाले कौन है? कुछ ऐसे भारतीय जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं को ऐसा निखारा, ऐसा उन्होंने उभारा कि भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने अपना साथ साथ देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं जो आपको जानकर बहुत खुशी होगी। कालबेलिया नृत्य आप सभी पसंद करते हैं, जानते हैं जहाँ से उत्पत्ति हुई है वो सोर्स के पास हम आपको लिए जा रहे हैं आज। जी हाँ, जिन्होंने शुरुआत की है कालबेलिया नृत्य की, हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी। उनके नाम के पीछे राज हैं, उनके जन्म में उनके नृत्य में बहुत राज छिपे हैं। उनको कई पुरस्कार मिले हैं, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और देशों दुनिया में न जाने 50 देशों में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बहुत कुछ है जाने को। गुलाबो जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है हम आपकी शुरुआत से अगर शुरुआत करें।
5: मेरा जन्म स्पेशल हुआ है और हम लोग सपेरा समझते हैं, और नाम तो आपने बता ही दिया है। मेरा नाम गुलाबो सपेरा पद्मश्री लगा सकती हूँ, और अभी मेरा प्रो डॉक्टर का PhD का सर्टिफिकेट मिला है, तो डॉक्टर गुलाबो सपेरा भी ले सकते हैं नाम। तो हमारे समाज में क्या है कि हम लोग गुरु करीपाना जी के शिष्य हैं, नौ नाथों में से, जैसे गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, पार्श्वनाथ और गुरु करीपानाथ। तो हमारे जो गुरु जी जो थे वो जंगल में रहते थे, सांपों का जहर निकालते थे और घर घर जाके उनकी पूजा करवाने का काम था। उसी पद से हम लोग निकले और हमारा नाम रखा गया। काल को पकड़ते इसलिए हम लोग कालबेलिया कहते हैं, क्योंकि हम लोग सांप को वश में करते इसलिए हम कालबेलिया कहते हैं। नाथ हम लिए इसलिए कहते हैं कि हम करीपानाथ जी के शिष्य हैं और हम गुरु गुरु शंकर भगवान के पद से निकले हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को नाथ कहते हैं और जोगी भी कहते हैं हम लोगों को। और सपेरा इसलिए कहते हैं कि हम सांप को नचाते हैं, घर घर जाके बीन बजाते हैं और सांपों को नचाने का काम, इसलिए हम लोगों को सपेरा कहते हैं। उसी समाज में एक रीति और रिवाज बना हुआ था कि लड़कियां जन्मते उनको नहीं रखा जाए, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब होते थे और गांव डाणी में घूमने का काम, आज यहाँ डेरे कल वहाँ डेरे परसों वहाँ डेरे, हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। हम लोगों को गांव के कुएं का पानी भी नहीं पीने देते थे, हम लोग जंगल में जाके जंगल का कुआं ढूंढ के और वहां से हम लोग पानी पीते थे, लोग बाग हमारे से छुआछूत करते थे। तो इसी तरीके से हमारे ये रूल बना दिया कि ज्यादा बेटियां रखेंगे तो रुकाली भी नहीं कर सकते बेटी की, और एक बेटी हो तो ठीक हम शादी कर दे, लेकिन 4-5 बेटियां हो तो फिर उसकी शादी करना, खर्चा करना, उनके लिए देना, कपड़े पहनाना, देना दहेज वहेज, ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे समाज में पंच लोगों ने, हमारे गुरुजी ने डिसाइड किया कि जो भी कन्या पैदा होती है नाला नहीं काटो उसको, वैसे की वैसे जमीन गाड़ दो। नाला काटने के बाद तो वो अपनी हो जाती है, नाला नहीं काटते जब तक वो जहाँ से आई है उसी दुनिया में वापिस भेज दो। तो इस तरीके से हमारे नाला नहीं काटते थे और सदियों से लड़कियों को दफनाते आ रहे थे। वो कोई एक लड़की रख भी लेता कि भाई मेरा आंगन कवारा नहीं रहे, मैं तो बेटी को चाहता हूँ, बेटी को मैं ब्याह कर सकता हूँ, तो कई के लोग थे भी इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरे घर में भी इसी था कि मेरे पापा माता चामुंडा के पुजारी थे और वो बेटियों को नहीं मारते थे। तो पहले 3 बहनें थी और फिर उसके बाद 3 भाई हुए, फिर चौथे 7 नंबर पर मेरा जन्म हुआ। उस रोज धनतेरस का दिन था और मेरे पापा घर पे थे नहीं, दीपावली का सामान लेने के लिए अजमेर चले गए, और पीछे से औरतों ने, जिस औरतों ने मुझे जन्माया और जिन औरतों ने हेल्प किया उन्हीं औरतों ने जन्माते और जमीन में ले जाके और जंगल में ले जाके मुझे गाड़ दिया। मेरी माँ सोची कि निराने लेके गए होंगे या नाला वाला काट रहे होंगे, तो 15-20 मिनट

0: घंटा भर तक मेरी माँ ने वेट किया और वो भी नहाई धोई कपड़े लेते पहने तो कहा कि भाई मेरे बच्चा हुआ या बच्ची मुझे बताओ तो सर मेरी गोद में तो दो। तो मेरी मौसी ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी उसको जमीन में गाड़ दी। तो ये जन्म से ही मेरे साथ हुआ कि मैं इधर से माँ के पेट से 9 महीने बाद निकली और धरती माता के पेट में मुझे डाल दिया गया। तो मेरी माँ रो रो के भीख मांगने लगी, औरतें धमका के चली गई और कहने लगी कि नहीं वो लड़की थी मर गई अब तो चुप हो। मेरी मौसी के आगे मेरी माँ ने हाथ जोड़ा और मेरी मौसी ने हेल्प किया। इस तरीके से मेरी माँ और मेरी मौसी रात की 12 बजे निकाल के जाके और मुझे उस जमीन से खुद वापस निकाला। और मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी जिंदा मिलेगी, मेरी माँ का विश्वास जीता, मैं मेरी माँ को जिंदा मिलेगी। मेरी माँ की जीत हुई और मेरी सांसे चल रही थी जब मेरे को खोद के निकाला। तो ये मेरे जन्म का वेलकम
1: जी। और बिल्कुल आप धरती पुत्री भी हैं, आपने धरती माँ की गोद से भी जन्म लिया।
2: तो आपने अपने जन्म की एक कहानी सुनाई गुलाबू जी, और हम शायद नहीं जानते कि कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ये होता है और जो नहीं भी बच पाती हैं, और फिर भी आज भी कहते हुए बड़ा दुख होता है लेकिन भारत के कई कोनों में इस तरह की प्रथा है। गुलाबू जी, जब आप बड़ी हुई धीरे धीरे, और आपने नृत्य करना कैसे शुरू किया?
0: जब मेरे को जन्म से गाड़ दिया था तो समाज वाले लोगों ने बहुत विरोध किया, कहने लगे कि इसको लड़की को मरना है एक न एक दिन इसको, क्योंकि ये समाज के खिलाफ जाके तुमने इसको जिंदा छोड़ा और जिंदा रखा। तो मेरे पापा डरते थे, वो ये सोचते थे कि इस बेटी को मार नहीं दे। तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे, सांपों को नशाने जाते थे। उन सांपों को देख देख के मैं 6 महीने की थी जब से मेरे पापा के साथ जा रही, और उन सांपों को बचावा। मेरी माँ पूछती कई बार की बच्ची रोती है तो खिलाते क्या है इसको। मेरी माँ मेरे पापा ने कहा कि मैं क्या खिलाता हूँ, जो सांपों को दूध पिलाती है औरतें, वो जो बचा हुआ दूध है वो मैं इसको पिला देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पापा के साथ पली बढ़ी और सांपों के साथ खेलते खेलते, मेरे बहन भाइयों के साथ नहीं खेली, सांपों के साथ ही खेलते कूदते बड़ी हो गई। और सांपों को गले भी पहनने के, और जब 6 महीने की होगी तो मैं गले में पहनना स्टार्ट कर दिया। 2.5 साल की होगी तो मैं गले में पहन के सांपों को नाचती थी, वो बीन की धुन और डपली की थाप पे मैंने डांस स्टार्ट कर दिया। और ये गॉड गिफ्ट है, और मेरे पापा से सांपों से प्रेरणा मिली मुझे डांस, और वहां से मैंने डांस स्टार्ट किया। समाज के लोगों ने कहा कि पहले जब तू समाज के खिलाफ जाके धरती से बच्ची को बाहर निकाला, अब तू डांस करवाता है तो इसको तो इसीलिए पाला है कि तू बेटी की कमाई खाए, ये लड़का है लड़की ने, तू इतना तो सोच इसको क्या सिखाता है, बीन बजाना है या डपली बजाना या सांपों को नचाना। इस तरीके से ताना देते थे मेरे पापा और मेरे पापा को लोगों। और मेरे पापा फिर कहा कि नहीं मैं तो तुम्हारे डर के मारे इसको लेके जाता हूँ, मैं कोई बेटी की कमाई नहीं खाती। फिर मेरे पापा ने कहा, समाज ने कहा कि नहीं हम नहीं मार सकते, मुझे 2.5 साल की हो। तो मेरे पापा ने मुझे घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे को वो लत पड़ी हुई थी डांस करने की। मैं रोज डांस करूँ या रोने लग जाऊँ या फिर मेरी माँ तम्बू की पर्दा करती और मुझे डांस भी सिखाती थी और गाना भी सिखाती थी। कहती मैं तेरे को नचवाती थी, तेरे पापा नचवाते थे, अब मैं नचवाती। ये करते करते मैं बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, और डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि नहीं इस लड़के को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और ये बचेगी नहीं, इसको घर लेके। मेरे पापा पीर बादशाह पे विश्वास करते थे अजमेर ख्वाजा, कहा कि नहीं ये लड़की अजमेर धरती पे जन्मी हुई, ख्वाजा शरीफ की धरती पे जन्मी हुई, नहीं मर सकती 5 घंटे धरती में रहने के बाद, अभी डॉक्टर साहब ये नहीं मर। मेरे पापा बड़ा विश्वास रखते और वहां ले जाके मेरे को दरगाह में सुला दी। और 1 घंटे बाद में गुलाब का फूल आया और मेरे हाथ पांव चलने लगे। तो मुरैना साहब ने कहा कि तेरी बेटी जिंदा हो गई, इसको लेके। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं जो लेके आया था वो धनवंती, अब जो लेके जा रहा हूँ वो गुलाब। तो मेरे नाम के पीछे भी ये रीजन है कि मेरा नाम पहले धनवंती था जन्म से, और फिर मैं बीमार हुई पीर बादशाह की और अजमेर ख्वाजा शरीफ की कृपा से गुलाब का फूल आया और मेरे सांसे चल, मेरे पापा ने मेरा नाम गुलाब रखा, वो धनवंती वहाँ खत्म हो और गुलाब मेरा नाम। उसके बाद फिर मैं जब 7-8 साल की थी तब मैं पुष्कर मेला में हमारे समाज की जो औरतें वो छुप छुप के नाचने के लिए जाती है होली के दिनों में भी, और वैसे मतलब आज भी लोग लेडीज के कपड़े पहन के जाते थे लेकिन औरतों को घर से नहीं निकली। और तो मतलब जिसको शादी करनी होती थी वो यहाँ जालौर से लड़कियां मॉल खरीद के लेके जाते थे, यहाँ आते थे अजमेर से दिल्ली से जयपुर से, यहाँ जालौर में आके यहाँ से वो छाबड़ी बनाने वालों की लड़कियां मॉल खरीद के ले जाते और उनको पाल पोस के बड़ा करते थे और उनसे शादी करते थे, पर खुद की बेटियां नहीं बचाते थे। इस तरीके से हमारा ये रिवाज बना हुआ। और मैं समाज की औरतों के साथ में और एक मेरे चाचा और मेरे भाई बीन बजा के डपली बजा के मुझे छुप के नचा रहे थे कि भाई अपन को पैसे मिल जाए।

और लाली टीकी बिंदी खरीद ले अपन मेले में शॉपिंग कर, तो छुप छुप के नचाते फिर रहे थे। और वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की मस्त पांडे आए और उन्होंने देखा कि बोले भीड़ इकट्ठी हो रही। वो भीड़ देख के वो आए और एकदम उनको लगा कि लड़की नाच रही, लेकिन ऐसा लग रहा कि इसके बदले में तो हड्डियां ही नहीं। पर मैडम को ये लगा कि सपनों की लड़कियां तो नाचती नहीं है, वो तो सांप को नचाते हैं। ये पहला लड़की है जो मेरे को नाचते हुए दिख रही है। तो हमने पूछा कि तुम्हारे तो लड़कियां नाचती हैं, फिर कैसे नाच रही? मैंने कहा मैम मैं छुप के नाच रही हूँ, मेरे समाज वाले नहीं देख। हम लोग ऐसे ही थोड़ा काजल बिंदी खरीद ले तो छुप छुप के नाच रहे। बोला ऐसे ही तुम सांप को नाच प्रोग्राम के लिए। उन्होंने हमें प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया और हम लोग चले गए। प्रोग्राम समझते नहीं थे लेकिन हमें नाचने के लिए कहा, हम लोग चले गए। मैडम ने पहले बार घुंघरू दी। पुष्कर मेला में मैंने 81 डांस स्टार्ट किया और वहाँ पहले दिन डांस किया, दूसरे दिन डांस किया और तीसरे रोज समाज वालों को पता चला कि ये लड़की तो तख्तों पे डांस। और समाज वाले तो बिल्कुल ले बाउम की जैसे फटे के बोले तुम जो हम कह रहे थे वही हुआ, ये लड़की कलंक है समाज, हमारे समाज का नाम काट दिया इसने, नाक काट दिए इसने, ये तख्तों पे डांस कर, कई तख्तों पे अच्छी लड़कियां डांस नहीं करती, अच्छी औरतें डांस नहीं करती, ये लड़की ने तख्तों पे डांस किया। तो मेरे पापा को उन्होंने डिसाइड किया कि इसको समाज से बाहर कर, और मेरे पापा ने दंड जुर्माना दे के और समाज से बाहर होने के लिए एग्री हो। इधर से मैडम 15 दिन बाद भी मैडम के कोई लोग आए जयपुर से, कहा कि भाई तेरी बेटी को मैडम बुला रही। मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं भेजूंगा इसको, हमें समाज से बाहर कर दिया। लेकिन मैंने सुन लिया, मैं मेरे भाई के साथ हाथ जोड़ के उनको और कैसे कैसे मना के मेरे भाई को, हम लोग दोनों मेरे भाई रात को उठ के और 1 बजे रात हाईवे पे जाके और बस लेके हम लोग जयपुर चले गए। 6-7 महीने बाद मेरे मम्मी पापा भी आ गए और इस तरीके से मेरे सफर की स्टार्ट। वहाँ जाके हम मैडम से मिले, कृति मैम से 15 दिन बाद जाके मिले। हम रक्षा चला चला के पेट भरे हमारे और वहाँ जाके फिर मैडम से मिले। फिर उन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया और कहा कि बोला ठीक है तुम भी यहाँ प्रोग्राम। तो हम लोग पूरे इंडिया में 5 साल तक टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोग्राम किए और 85 में अमेरिका जाने का मौका मिला पहले बार। और जब तक हमारे समाज के लोग हमें समाज से बाहर कर रहे हैं, कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी पंचायती, पर मेरे पापा चट्टान के जैसे खड़े और वो पूरे समाज को देखते। और इधर जयपुर की महारानी गायत्री देवी है मैडम, उन्होंने कहा कि ये बेटी तुम्हारी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की पूरे राजस्थान की बेटी है, इसको तुम्हें सपोर्ट करना है, इसको आगे निकलने दे। मेरे पापा ने एक ही बात कही कि मैडम ये बात तो मैं सपोर्ट करूंगा मेरी बेटी का और इसको आगे निकाल, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरीके से मेरे पापा महारानी गायत्री देवी जी के गोद दिया मुझे, वो समाज से लड़ना स्टार्ट कर दिया और इधर मैं मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर। 85 में अमेरिका जाने का मौका मिला मुझे और वहाँ पे भारत महोत्सव हुआ था, उस वहाँ पे लता जी भी मिले थे मुझे, उनका आशीर्वाद भी मिला कि लड़की बहुत आगे जाएगी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी ने बोला ये लड़की बहुत आगे जाएगी, इसका सपोर्ट करो। फिर मेरे जाने से 1 रोज पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे अमेरिका जाने से, और मैं वहाँ दिल्ली में थे हम 2 महीने, मुझे वापस लेके आए। फिर मुझे बताया कि तेरे पापा नहीं, बेहोश पड़ी 2 बजे रात की, मेरे पापा ड्रीम में आए, कहा कि बोले बेटा तेरे को जाना, बेहोश नहीं होना है, तेरे को चील गाड़ी में नहीं बैठे। तो इस तरीके से मेरी आंख खुली है, मैंने कहा माँ मैं दिल्ली जा रही। मेरी माँ ने कहा कि नहीं 12 दिन से पहले नहीं जा सकती। फिर मैंने कहा कि मेरे पापा लड़ रहे थे मेरे लिए, क्या माँ आप नहीं लड़े? मेरी माँ ने कहा तू जा अमेरिका, मैं लड़ती हूँ समाज से, 12 दिन भी हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे पापा मरे नहीं है, जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है। और वो अपने आंखों से गुजरे लेकिन वो अपने साथ, आप आंख बंद करके देखो आप उनको पाएंगे, वो बहुत नजदीक पाएंगे। तो इस तरीके से मैं मेरी माँ को समझाती रही अमेरिका के लिए। और वहाँ पे मेरे को राजीव गांधी जी मिले, उन्होंने कहा कि हमने सुना कि तेरे पापा नहीं रहे आने से पहले, फिर भी आप आए तो मैं पापा की जगह तो नहीं लूंगा लेकिन भाई बन सकता हूँ। तो मैंने उनके हाथ की राखी बांध और सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी साथ, और 2 महीने 5 दिन हम लोग अमेरिका रहे। और बहुत बड़ी बड़ी मैगजीनों में, बहुत बड़े बड़े अखबारों में आता था, समाज के लोगों को चाय पिला रहे हैं, कोई पास में बिठा रहे हैं, कोई क्या कहते कि हमारी लड़की तो अमेरिका गई हुई। बोला नहीं नहीं नहीं साहब कलंक है, वो हमारी लड़की नहीं। पर बोले उन्होंने देखो बड़ी बड़ी बुकों में नाम आ रहा है उसका, उसने तो बहुत बड़ा नाम किया है, नाम उनके सपेरा नाम रखा है अपने सर ने, और तुम्हारे सपेरा को तो बहुत बड़ा नाम हो गया। तो इस तरीके से फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि नहीं नहीं लड़की को अच्छा काम कर रहे। जब मैं वापिस आई अमेरिका से तो समाज के लोग मुझे दिल्ली आए लेने, बहुत मान सम्मान, समाज का अध्यक्ष चुना। और उसके बाद समाज वालों ने कहा कि बोले बेटा तेरे जैसी बेटी हमारे को भी चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसी बेटी आपको चाहिए तो मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारो। मेरे समाज वालों ने मुझे प्रॉमिस किया और अमेरिका से आने के बाद मेरी पहला जीत कि समाज की बेटियों को नहीं जिंदा गाड़ते हैं नहीं मारते।

0: एक ही घर में पांच पांच छह छह बेटियां हैं और उन्हीं बेटियों का वो वेलकम करते हैं। वो बेटियां उनको कमा के खिलाती है, सासरे में जाती है तो ससुराल वालों को कमा के खिलाती है। आज अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, पेरिस, हमारे हजारों लड़कियां पांव पे खड़ी है, कमा रही है और वो होल सोलर मतलब जीती है, अपनी जिंदगी जीती है और वो पढ़ रही है, लिख रही है। मेरी शादी हुई, मेरी पहला बेटी, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी देखा देख बहुत सारा समाज के लोग वो पढ़ रहे लिख रहे, और मेरे खुद के पांच बच्चे, दो बेटा और तीन बेटी। तो पहला लड़की को मैंने इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ाया, उसने इंग्लिश से भी किया, क्लासिकल डांस करती है, राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन। मेरा बेटा जो है वो फ्यूजन ग्रुप चलाता है, डीनो बंजारा के नाम से सब जानते हैं। दूसरा भवानी सक्करा है, वो मोटर बाइक स्टैंडिंग रेसिंग करता है, इंटरनेशनल खिलाड़ी। और दो बेटियां छोटी है, वो एक्ट्रेस भी है और वो राजस्थानी मेरा वाला डांस भी कर रही है। अब साथ तीसरी पीढ़ी मेरी पोती, दोनों पोतियां माही और तिया, वो भी डांस करती है। तो ये
1: गुलाबा जी, जैसा हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा योगदान है आपका, कालबेलिया नृत्य और कई भारत की बेटियां जो रोशन कर रही हैं भारत का नाम, और एक प्रथा जो वो आपने खत्म कराई, बहुत बहुत बड़ा योगदान। ये नृत्य का नामकरण कैसे हुआ और ये जब यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुआ तो उसके बारे में कैसा लगा आपको ये नृत्य के नाम और इसकी ड्रेस, ये इसकी पति?
0: मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं ये डांस करना स्टार्ट किया, जब तक मुझे खुद को पता नहीं था कि इस डांस का नाम क्या, और ये ड्रेस मैंने देख के और कहीं पे भी, और मैंने ये ड्रेस बनाई। काला कपड़ा मुझे बहुत पसंद था शुरू से, मेरे काम के पापा मैंने काले ड्रेस बनाना चाहती हूँ मैं, मेरे घाघरा लूंगी, तो पापा ने कहा काला कपड़ा अपना अलाउ नहीं, चाहे हम घर कनी पाना जी किसी से, हम लोग सिर्फ भंगवा पहन काला ने। मैंने कहा मैं ऐसा ड्रेस बनाऊंगी कि उसको पूरे को ढक दूंगी। तो मेरे दिमाग में डिजाइन चल रहा था, तो मैंने पूरे सात कलर की सात पाइपें ले ली, फिर गोटा पत्ती ले ली, फिर सितारे ले ली, फिर मैंने मेरे पापा को कहा, मैंने कहा दिख रहा कुछ काला? बोले कुछ नहीं काला दिख रहा महारानी, अब तो जीती में हारा, ठीक है तू पहन। तो इस तरीके से मैंने मेरा ड्रेस डिजाइन, मेले में हम लोग अक्सर जाया था, मैंने गाना भी मैंने खुद नहीं बनाया, अरे रे रे रे काले गयो बड़े मेला में लायो काले,
1: क्या दो लाइन सुना सकते हो?
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे र

0: रहे क्या होता कि जब मेला देखने जाते थे ना हम लोग तो मोटर पहले बसें लगती थी, वो लंबे लंबे मुंह वाली बसें, वो पापू उनकी आवाज आती थी, हॉर्न बजाते रहते थे। तो मैं खड़े खड़े बस वो कह रही थी, मेरे को जयपुर देखने का भी बहुत शौक था, तो मोटर पड़ी पड़ी धरना में जयपुर जाबाड़ो कोई गौरे भाई, मैं ही जाऊंगी एक रोज जयपुर और कोई नहीं जा सकता, अब तो धरना थी। तो ये गाना भी मैंने बनाया और ड्रेस ही मेरा खुद का डिजाइन और डांस गॉड गिफ्ट, और पापा से मम्मी से प्रेरणा मिली, सांपो से प्रेरणा मिली, सांपो के साथ पली बड़ी। और ये डांस मेरा साथ ही जन्म, इसका नाम कैसे हुआ, अमेरिका में मुझे गुलाबी नाथ कहते, मैंने कहा मेरा गुलाबी नाथ क्यों कहते हैं, मैं तो लड़की हूँ, नाथ तो हमारे लड़कों के लगते हैं, मर्दों के लगते हैं, मेरे पापा के लगता है नाम नाथ। तो उन्होंने कहा कि भाई सर नेम चाहिए, अंग्रेज से तो कहे सर नेम क्या है, सर नेम, मैंने कहा सर नेम क्या होता, हम लोग तो सपेरा है, तो ऐसे करो मैं सांप की जगह नाचती हूँ, तो आप ऐसे करो मेरा नाम सरनेम गुलाबी सपेरा रख, मैं सांप की जगह नाच, तो इसलिए मैंने मेरा खुद का नाम सरनेम रख। बोले इस डांस का नाम क्या है, मैंने कहा डांस का नाम भी सपेरा डांस रख, क्योंकि मैं सांप की जगह नाच रही, तो मेरा इस डांस का नाम सपेरा रखो। और अभी यूनेस्को में जब शामिल हुआ तो किसी ने काल बिलिया डांस लिखवा दिया कि काल बिलिया डांस, हम लोग काल को पकड़ के वस्त्र में करते हैं, सांपों को पकड़ते हैं, लेकिन हमारी कोई जात नहीं है काल बिलिया, हम सिर्फ काल को पकड़ के वस्त्र में, सांपों को पकड़ते हैं, तो सांप काल हो गए तो उसको वस्त्र में करते, इसलिए उन्होंने काल बिलिया नाम रखा। पर ये डांस मेरा वहाँ शामिल हुआ और इसी तरीके से उसका अमेरिका में नामकरण हुआ, इसका डांस का भी और मेरे सरनेम का भी।
1: क्या अभिनवी जी, जब आप विदेशों में परफॉर्म करते तो कैसा महसूस होता है, भारत की संस्कृति को विदेशों तक लेके जाना, ये आपने बहुत कमाल किया, तो कैसा महसूस होता है?
0: सबसे पहले मैं 85 में गई थी अमेरिका और उसके बाद मैं लगातार लगी और मैं जाती रही, मैं

0: मैं 101st कंट्री जा चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाहर जितनी जाऊँ मैं उतनी मेरी कला को बाहर। और अभी कोरोना में भी मैंने ऑनलाइन डांस सीखा है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो मेरे से डांस सीखती हैं। और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं घर घर में बुलाऊं, ये डांस मेरे नहीं है और ये जिंदा रहे। तो बाहर जाती हूँ तो इस डांस को बहुत लोग लाइक करते हैं। आज देख लो, इंडिया में भी हो चाहे विदेश में भी हो, ये डांस नहीं होता कोई फेस्टिवल, कोई पार्टी, कोई शादी ब्याह, कोई मतलब होता ही नहीं। अगर ये डांस नहीं हुआ तो फिर कहते क्या, सपना कालबेला डांस तो वही नहीं, फिर आपने क्या। तो वो ये डांस होता तो हर फेस्टिवल पूरा हो जाता है, नहीं तो अधूरा रहता है। ऐसे विदेशों में मेरे से यहाँ लड़कियाँ डांस सीख के जाती है, वहाँ से लोग भारत आने के उनको पैसे मिलते और मेरे डांस सीखने के उनको स्पेशली पैसे मिलते हैं कि कलरशिप 6 महीने के कलरशिप पर आते हैं। ये कि हम गुलाबी सफेरा के पास जा रहे हैं उनका डांस सीखने के लिए, तो वहाँ की सरकार उनको पैसे दे के भेजती, अरे वो डांस सीखने जा रहे हो आप। वो 1 महीना डांस सीखती है, मेरे को धन्यवाद बोलती है और पूरे 5 महीने पूरे हिंदुस्तान में घूम के जाती है, कहती है आपका लाख लाख शुक्र कि हमें वहाँ की सरकार, हमारी सरकार हमें पैसे देती है, हम आपका डांस। और वो लड़कियाँ जाके वहाँ डांस सीख, चिली हो, जापान हो, अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, हॉलैंड हो, डेनमार्क हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, न्यूजीलैंड हो, ब्राजील तक में डांस सीखा गया। कोई सा भी देश है, कौन सा देश है जिसमें मैं नहीं गई।
1: तो कैसा लगता है, भारत से तो बहुत अलग है विदेश, तो कैसा अपनापन आपको मिला वहाँ या कैसा?
0: हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी मतलब डांस को और हमारे संस्कृति को बहुत वो मान सम्मान देते हैं और इतना प्यार से इतना ध्यान, जैसे अपना यहाँ कोई प्रोग्राम कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। वो अगर डांस देख रहे हैं किसी के तो डांस ही देख, इतनी शांति वातावरण का, हमारा एक सितारा भी गिरता है स्टेज पे तो वो भी उसकी भी आवाज आती, तो इतना वो प्यार से देखते हैं और उतनी वो रेस्पेक्ट करते हैं, इतनी वो रिगार्ड करते हैं कि नहीं ये कला है, इसको अपने को देखना है, कितनी मेहनत करके इन्होंने डांस सीखा है। तो वो लोग एक एक चीज पे गौर अपने इंडिया में भी करते हैं, अगर इंडिया में गौर नहीं करते, राजस्थान में गौर नहीं करते तो हम लोग विदेश तक पहुंचते ही नहीं, हम लोग पास तो यहाँ से ही होके बाहर जाते हैं। लेकिन उनका एक देखने का नजरिया और तरीका एक अलग से है, वो एक कला को सरस्वती माता के रूप में भी वो रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको ये कला देखने को मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ तो अपने ठीक है गली गली में देख लेते हैं कलाकार को, एक राजस्थान की, राजस्थान की ये कला, लेकिन वहाँ बेचारों के लिए एक स्पेशल होता है कि नहीं अपने को देख वो। इसलिए
1: गुलाबा जी, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि आबू के आसपास के जो गांव है, जो बेटियां आपको सुनते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सारी बेटियों को एक ही जवाब देना चाहूंगी, उनको एक मैसेज छोड़ना चाहूंगी, बेटी हो चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो, और उनको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बेटी हो आप कहीं जाओगे आप भी माँ बनोगे, बहन हो आप भी कहीं जाओगे माँ बनोगे। आपको अपनी बेटियों को बचाना है, कन्या भ्रूण हत्या जो प्रोग्राम चलता है उसको बंद करना है, सिर्फ 2 लोगों को समझना है, माता और पिता को। माता पिता ये सोच ले कि जो भी आ रहा है अपने हिंदुस्तानी राजस्थानी नागरिक आ रहा है और उसका वेलकम करना, तो कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगा। वो बच्चा जब आ रहा है आपका तो आप उनको ढंग से वेलकम करे, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, और वो बच्चा कुछ भी बनना चाहता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अगर कुछ बनना चाहती है चाहे वो कलाकार बने चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने चाहे कुछ भी, उसका माता पिता सपोर्ट करे। और उनको, मेरे माता पिता पढ़े हुए नहीं, वो शहर में रहने वाले नहीं थे, वो अनपढ़ थे, लेकिन एक महारानी गायत्री देवी जी ने थोड़ा सा कहा और वो उस चीज को गौर किया और मेरा सपोर्ट किया और मेरे को पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन मेरे माता पिता की वजह से हुआ। तो आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं और उन बेटियों को आगे उनको नया रास्ता दिखा सकते हैं। हर बेटी को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको माता पिता आपको सपोर्ट करके आगे लेके जाए, आप माता पिता की कदर करें, माता पिता का वो आदर करें, माता पिता की वो इज्जत रखें, माता पिता का वो ठीक रेस्पेक्ट रखें कि जो माता पिता आपको भेज रहा है आपके हाथ पांव संभाल के आपको चलना है। मेरे माता पिता ने एक ही चीज कही, बेटा आप जाओ ये दुनिया में, हम आपके पीछे, लेकिन आपको हाथ पांव संभाल के, दुनिया बहुत टेढ़ी है, आपको इधर उधर नहीं देखना, पीछे दुश्मन है, आगे भगवान है, भगवान का हाथ पकड़े सीधे चलते बने और आप चलते रहे, इधर उधर आपके लोग गलत लोग खड़े रहते हैं आपको कहीं वो अपनी बातों में नहीं लगा, तो आप अपने सीधे चलते जाओ और माता पिता की रेस्पेक्ट करो कि माता पिता ने आपको इस लाइन में डाल दिया, तो उनको कुछ करके दिखाए। मैं सारी बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ करके दिखाए, कोई भी हुनर हो कोई भी कला हो, आप अपने माता पिता का और अपने समाज का और अपने देश का नाम करें और आगे।
1: गुलाबा जी, भारत के लिए क्या सपना देखते हैं आप? देश का,
0: देश के लिए मैं एक ही सपना देखती हूँ कि भारत मेरा, भारत वैसे मेरा भारत महान और

0: अनिरे और चार चांद लगे भारत और अच्छा अच्छा काम करे भारत और आगे निकले और सारी दुनिया से हमारा भारत मान है और मान रहेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे सब मिलके और एक दूसरे को मिलकर एक एक करके 11 होते और बस इसी तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करें और आगे बढ़े।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाबू जी और हम पुनः धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश का नाम रोशन किया, कालबेलिया नृत्य हमें दिया तो भारत की धरोहर आपने जो है बहुत ऊंची आपने इसका ऊंचाई प्रदान की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इसलिए कुमारी जी को और यहाँ पे सब कोई कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और सब लोगों से अरूबरू करवाया और पद्मश्रियों को सबको एक साथ बुलवाया, बहुत सारे मेहमान गेस्ट आए उनसे मिले और इतनी पावन धरती पे हम लोग आके इतने भगवान के घर में आके हमें मान सम्मान मिला, इतना बड़ा इवॉर्ड मिला और इतना सम्मान मिला उसके लिए मैं पर कुमारी जी की बहुत बहुत बहुत आभारी। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा हर बार इसी तरीके से आऊँ, इसी तरीके से उनका प्यार पाऊँ और आशीर्वाद।
1: हम भी बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ आज की मुलाकात हुई तो हम ये याद भी रखेंगे और जो आपने सिखाया है वो शेयर भी करेंगे हमारे दोस्त को जरूर। एक दूसरे के साथ बातिएगा दोस्तों और रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, अपनी पैशन को आगे बढ़ाते रहिए, आपकी बेटियां आपका नाम रोशन जरूर करेंगी, विश्वास रखिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेड़ लगाना, पेड़ को परवरिश करना, हम बचपन से बहुत सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हम एक पेड़ लगाते हैं और लगा के भूल जाते हैं, इससे वो काम पूरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको परवरिश करना और उसको एक जंगल बनाना बहुत जरूरी है। आज हम जितना भी तापमान देख रहे हैं, जिससे हम पीड़ित हो रहे हैं इस गर्मी के कारण, तो उसका अगर हमें कम करना है, एक पेड़ लगाने से नहीं, एक पेड़ से शुरू करके उसको जंगल बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही काम किया है आज के हमारे मेहमान। आज हम बातचीत करने वाले हैं पद्मश्री हिमताराम भंबू जी से, जिन्हें ट्री मैन ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ट्री मैन ऑफ राजस्थान क्यों कहते हैं और ऐसा क्या किया उन्होंने, आइए जानते हैं उन्हीं के मुंह से। तो स्वागत करते हैं हिमताराम जी आपको रेडियो मधुबन में। नमस्ते। आज हमारा सौभाग्य है हम आपसे मिल पा रहे हैं, और खुशी भी इस बात का है कि आपने पूरे भविष्य को सोचते हुए मिलियंस ऑफ ट्रीज आपने लगाया है, एक पेड़ से शुरू करके एक जंगल बनाया है। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और कैसे शुरुआत हुई इस पेड़ लगाने का जर्नी।
3: ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले 1975 में, आज से 45 साल पहले, मेरी दादी थी 95 साल। उस दादी की प्रेरणा मिली। दादी ने मेरे हाथ से, मेरे पैतृक गांव सुकवासी में, नागौर जिले के पैतृक गांव सुकवासी में, एक पीपल का पौधा लगाया। और उस पौधे को दादी ने कहा कि इस जो पेड़ लगा करके इसको बड़ा करना, इससे बड़ा और कोई धरती पर पुण्य नहीं होगा। और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि जो मूक जीव है, बेचारे बोलते नहीं, उनकी अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, उनकी भी सेवा करना, जो जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, और है, इनको चुगा डालना, इनकी सेवा करना, घायल हो तो इनका इलाज करना। ये प्रेरणा 1975 में मेरी दादी से मिली। और इस प्रेरणा लेकर के जब उस पेड़ की मैं सेवा कर रहा था, उस पेड़ को बड़े होते देखा।
2: उस समय आपकी क्या उम्र थी?
3: मेरी उम्र 18 साल थी।
2: अच्छा।
3: आज उस पेड़ के नीचे 500 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, और इतना विशाल काय, हर साल उसका जन्मदिन मैं मनाता।
2: क्या पेड़ लगाया था?
3: पीपल का पेड़।
2: बहुत अच्छा।
3: और उस पीपल के पेड़ से शुरू हुआ, लगाता गया, लगाता हर गांव, हर ढाणी, हर खेतों में जाऊं, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, सीकर, नागौर। नागौर जिला तो ऐसा है जिसमें एक गांव भी नहीं बचा जहां हमने पौधारोपण नहीं किया। और सब पौधों का आंकलन करना, सबका लिखना, रजिस्टर में लिखना, फिर वापस देखभाल करनी। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करते करते लगातार आज तक 5.5 लाख पौधे लगाए, और जिसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बने। और इतना ही नहीं, फिर 1999 में मेरे एक खेत जंगल खरीदा, मेरे एक खेत खरीदा, खुद का निजी भूमि, और उसमें 11,000 पेड़ लगा करके उसको जंगल, और उसमें 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, और उसको हर रोज भोजन कराना, 20 किलो सूखा डालना, भोजन कराना, उसको पानी के लिए कटोरे भरना, और इतना ही नहीं उसमें सांप, गोईरे, गोपाड, नेवले वगैरह रेंगने वाले जीवों के लिए भी एक आशी स्थल बनाया। और आज मेरे लगाए हुए जो पेड़ों का वैज्ञानिकों के आधार पर एक आकलन हुआ, जिसमें आज प्रत्येक वर्ष वो पेड़ 12 अरब रुपयों की ऑक्सीजन हवा में छोड़ रहे हैं। वे मानव मात्र के लिए वो ऑक्सीजन काम आ रही है। तब ऑक्सीजन का पता तो पिछले 2 सालों में लगा, 2020-21 में जब कोरोना महामारी आई तब लोगों को पता लगा। जब कई जवान बिना ऑक्सीजन वो संसार छोड़कर भी चले गए तो ऑक्सीजन का महत्व तब चला। और हमने तो ये नहीं सोचा था कि भी क्या है क्या नहीं, हम तो पेड़ बड़े होते देखते गए और लगाते गए लगाते गए लगाते गए। आज 2 लाख बच्चों से मैं मिल चुका हूं पद्मश्री मिलने के बाद, और मेरा लक्ष्य है 5 लाख बच्चों से मिलना। अब बच्चों को मैं ये

0: फीक देता हूँ कि सुबह घर से शुरुआत करते समय स्कूल जाते समय एक पेड़ को नमस्कार करें, क्यों कि वो आदमी खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर कुछ दिन जी सकता है, परंतु प्राण वायु ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट ही आदमी बच नहीं सकता। तो इसलिए प्राण वायु ऑक्सीजन जो पेड़ देते हैं, बच्चों को कहता हूं कि आप उसको नमस्कार करिए कि भाई आपकी ऑक्सीजन की बदौलत हम इस धरती पर जीवित हैं।
1: जी हिंताराम जी, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो बातें आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ये बातों का महत्व आपके जीवन में आपको कब समझ में आया?
0: मेरे समझ में तो जब 18 साल का था, मेरी दादी ने ये जो पेड़ लगाया मेरे हाथ से, उस पेड़ को हमने बड़ा किया और जो पेड़ लगाता गया तो मेरे को जो आनंद की अनुभूति होती गई और मेरे को बड़ा के एक लगा दिया, दो लगा दिया, 10 लगा दिया, 1000 लगा दिया, 5000 लगा दिया, ऐसे गणना करता गया, लगाता गया और फिर धीरे धीरे इनका पता तब लगा पिछले दिनों कोरोना काल में। और ये तो हमें पता था ही कि हमने ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बीच हमारी जो पर्यावरण संगोष्ठियां होती है, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, पिछले 2021 में जब एक वो सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन का हिमालयम हुआ था तो हमें, मैं गेस्ट के तौर पर गया था, और लखनऊ में जो एक सम्मेलन हुआ था हिमालय जो इसका जलवायु परिवर्तन का उसमें भी गया था, कई जगह में पूरे भारत में कई जगह संगोष्ठियां हो रही है, वहां भी मैं जाता हूं। और अब तो मेरे को, मैं पढ़ाई तो 5वीं तक की है, पर मेरे को इतना अनुभव हो गया है कि ये पेड़ एक भगवान के बराबर है, इनकी कोई अपरंपार है, आदमी दूसरी इनके ये सर्वधर्म संभाव है, इन पेड़ के कोई जाति है नहीं, कोई धर्म है नहीं, कोई भेद है नहीं, कोई भाव है नहीं, और कुछ नहीं है, ये तो देता ही देता है, ये तो पशु को देगा चारा देगा और देसी दवाई देगा, पक्षियों को देगा बैठने के लिए, पक्षियों को बसेरा देगा, तो न जाने इनके कितने, तो ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक पेड़ की आवश्यकता रहती है। इसलिए हमने ये पाया कि ये पेड़ अगर धरती पर नहीं रहेंगे तो बड़ी भयंकर गर्मी बढ़ेगी और ये तापमान बढ़ेगा और ये जो पेड़ों की पत्तियां जलने लगेगी, जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी, और इसी अगर हम नहीं चेते तो आने वाला समय ये भी हो सकता है कि 56 डिग्री तक तापमान न जाने बढ़ जाए और शारीरिक काम रात को करने पड़ेंगे और ये बाजार भी कोर्ट कचहरी रात को खुलेगी, ऐसा हो सकता है अगर हम नहीं चेते, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की बोतलें खरीदनी पड़ेगी, दम घुटने लगेगा, तो ये स्थिति हो सकती है। इसलिए हमें ये जो सबसे जो मुख्य काम है, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो समुद्र में जा रहे हैं, और ये जो पूरे आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कारण चिंतित है, बड़ी उनको चिंता हो रही है। इसलिए हम लोग जो बच्चों को जागृत करते हैं, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो उनके वो ये बातें समझ में आ जाती है, क्योंकि बड़े लोग तो पहले करते ही थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो तो पेड़ों की रक्षा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। तो हमने क्या है कि फिर 2020 में जब 3 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति भवन में मेरे को न्यूनता मिला कि आपको राष्ट्रपति जी आपसे चर्चा करेंगे, जब मैं 3 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति भवन गया, 22 मिनट तक मेरी चर्चा हुई, तो उस चर्चा में हमने पहले ये ही मुद्दा रखा कि जल 7J पर हमने बात की, तो सबसे पहले जल है तो जंगल है, जंगल है तो जल है। अब क्या है कि जंगल ही नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी तो बरसात कहां से आएगी, तो जल है तो जंगल है, जंगल है तो जल, और जंगल है तो जीव, जल है जंगल है जीव, जीव मतलब ये जो जंगल में घूमने वाले बेचारे वो छोटे मोटे जो जीते जीव, कई तरह के जीव, वो भी एक मतलब संतुलन बनाए रखते हैं, ये जो प्रकृति का संतुलन है, भगवान की बनाई हुई धरती ने, भगवान ने क्या किया, सबसे पहले ये धरती बनाई, फिर बाद में नदी नाले पहाड़ और जीव जानवर पशु पक्षी और पेड़ पौधे पूरा झरना ये सब बना दिया, झीलें सब बना दिया भगवान, फिर मानव को उतारा कि भैया इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, इसको डिस्टर्ब मत करना, किसी को परेशान मत करना, एक कड़ी अगर टूट गई तो पूरा मामला घबरा खड़बड़ा जाएगा। तो इसमें क्या है कि मानव ने अहंकार के शिखर पर बैठ करके मानव ने इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी प्रकृति के साथ, और प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई, विकास तो हो गया 1000 गुना और विनाश हो गया 5। इसका कारण है जलवायु परिवर्तन। तो ये

0: वायु परिवर्तन के कारण जो स्थिति गड़बड़ाई है, तो इससे क्या है कि आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हैं और हमारी सरकारें भी विचार कर रही है, मंथन कर रही है भी कैसे इस गर्मी को कम किया जाए
1: जी। तो यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि सभी चिंतित हैं, गर्मी बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है अभी जिस प्रकार का माहौल हम देख रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण हम देख रहे हैं, इसमें हमारा सर्वाइवल कितना है? मतलब जैसे हम बचपन में हम देखते हैं जितना तापमान थी, अभी वो बढ़ती जा रही है, वो आपके बचपन में और भी ठंडक रही होगी, हमारी बचपन से भी
0: जी, जी।
1: तो अगर इस तरीके से बढ़ता जाएगा तो आगे भविष्य क्या होगा?
0: आगे भविष्य ये होगा कि सबसे पहला मामला है, हमने जो 7 जे पर बताया मामला, जल है, जंगल है, जीव है, जैविक है और जलवायु है और जमीन है और 7वां जे है जनसंख्या। तो मैं तो सरकार से ये भी मांग करता हूँ, सरकारों से, कि भाई जनसंख्या को रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीजा ही कम पड़ जा, सिर्फ धरती पानी और हवा। आने वाले समय में एक दूसरी चीज ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कैसे छोड़ रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े रासायनिक खाद छिड़क रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, जमीन में ये फर्टिलाइजर है, केमिकल डाला जा रहा है, रासायनिक खाते डाल रही है, तो मानव आदमी कमजोर हो रहे हैं, तो ये खान पान भी कमजोर हुआ है, और फिर ये जो ये वातावरण हुआ गर्मी का, जो दो पेड़ों की कटाई हो रही है, बड़े बड़े जंगल जैसे सुंदर वन, जैसे एक सुंदर वन बहुत बड़ा वन हुआ करता था जिसमें कोई हजारों एकड़ में एक जंगल फैला हुआ था, तो उसमें उस जंगल को भी आज काटा जा रहा है, बड़े बड़े जंगल थे वो सिमट रहे हैं, देवताओं के नाम ओरण होते थे, गोचर होता था, देव वो देव वन होते थे, वो भी धीरे धीरे धीरे धीरे पेड़ों की कटाई हो रही है, जगह जगह ये हो रहा है। तो हमारा जो मानना है कि अभी जो समय है कुछ बचा है, कुछ समय बचा है कि भी आदमी को अभी सावधान हो जाना चाहिए, और सरकारें कर रही है, सरकार को भी इस मामले में जरूर मंथन करना चाहिए, सरकारें कर भी रही है बिल्कुल ही, जब कैसे जो ये है कार्बन को जैसे कैसे रोका जाए, जो गाड़ियां है जो ज्यादा धुआं फेंक दिए उसको रोक रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, दूसरी गाड़ियां चालू कर रहे हैं, कोई जो बैटरी से गाड़ी चल रही है, कोई जो ये जो सौर ऊर्जा लगाए जा रहे हैं, जो ये बिजली बढ़ाए जा रही है, इससे भी ये हो रहा है, तो ये कर भी रहे हैं। तो अभी हमारा मानना है कि अगर हम नहीं चेते तो 2040 तक स्थिति इतनी गंभीर होगी कि आदमी को सांस लेने के लिए ये जो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, ऑक्सीजन की बोतल की दुकानें लगेगी, जैसे राशन की दुकानें, जैसे ऑक्सीजन की बोतल खरीदनी पड़ेगी, और ये अन्न है, अन्न की पैदावार भी कम हो सकती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो अन्न की पैदावार भी कम हो, और तूफान है, भूकंप है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, तूफान है, भूकंप है, इस साल 22 तूफान आ गए, अभी विपक्ष हो रहा है और फिर तूफान आ रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये जो सब जलवायु परिवर्तन के कारण जो स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो इसमें अब क्या है कि हमारा तो काम ये है कि भाई हम लोग सब लोगों को चेतना चाहिए, हम लोग जगाते हैं, जगह जगाने का काम है और हम काम कर भी रहे, तो आदमी पर्यावरण की जो रक्षा है, हर चीज में रक्षा हो रही है, अगर कागज का एक छोटा टुकड़ा है उसको भी बचाया जाए, कई एकड़ जंगल काटा जाता है जब ये कागज बनता है, और दूसरा मतलब हर आदमी को, जैसे जानवर हैं जंगल में, जितने भी जानवर है बिचारे, वो भी बड़ी पीड़ा हो रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो भी उनकी वो फिर क्या है कि वो बड़ी गर्मी पड़ती है और वो बेचारे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के ये बरसात होती है।
1: तो हिंदराम जी, आपको लगता है कि जो 7 जय आपने कहा है, जल है, जंगल है, जीवन है, जीव जंतु है,
0: जलवायु है, जैविक है,
1: जैविक है और
0: जनसंख्या,
1: तो ये जनसंख्या के कारण आगे की छेद जाके ऊपर असर पड़ रहा है,
0: असर पड़ रहा है जनसंख्या,
1: तो एक इंसान अगर सुधर जाए, एक इंसान अगर अपने अंदर बदलाव ले,
0: बदलाव लिया हुए,
1: तो वो बहुत कुछ हो सकता है।
0: इंसान तो अगर बदलाव लिया हुए, इंसान अगर सोच ही बदल ले,
1: क्या बदलाव लेके आ,

0: चाहिए, आपको क्या लगता है क्या सोचना चाहिए, क्या सोच
1: ये
0: परिवर्तन लेके
1: नहीं आगे? ये चीज है, ये इसमें क्या है कि मैंने जो सरकार से मांग भी की है, हम जो ये निवेदन भी करते हैं, एक आदमी जन्म लेता है, जन्म लेता है उस आदमी का 70 साल तक वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार वो 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन फोगट में ले लेता है, जबकि पेड़ एक लगाते हैं। तो मानव मात्र को जब जन्म लेता है तो उनके जन्मदिन पर एक पेड़, दूसरी साल दूसरा पेड़, ऐसे करके वो 70 साल तक या 80 साल तक जब तक जिए जब तक एक एक पेड़ लगाता जाए उस पेड़ों को बड़ा करता है। ये अनिवार्य कर दिया जाए, पास जब हर आदमी कहीं के पास जगह नहीं तो जगह तो बहुत है, ये अनिवार्य हो कि हमने ये पौधे लगा करके बड़े किए। अब एक आदमी इंडिजन, अब एक करे दो वो पांच वो दस वो कितने भी हो, क्योंकि मन जो भावना तो सभी की चेंज होगी, सभी का सोच होगा, क्योंकि नहीं तो सभी भुगतेंगे, तो बड़े गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेते तो गंभीर परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले जल को बचाना, जल बचेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो जीव बचेंगे, जीव बचेंगे तो और जलवायु बचेंगे, और जलवायु बचेगी तो जमीन बचेगी, और जमीन बचेगी तो जीवन बचेगा, तो फिर ये जनसंख्या पर भी कुछ न कुछ अंकुश होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, जब सरकार को भी क्या कहते ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार को संसाधन ज्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके लिए संसाधन होंगे तो विकास होगा, विकास होगा तो विकास के साथ विनाश थे। तो इसलिए हमने जो ये हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो हमारा चिंतन है, और हमारे इस चिंतन की इस बात को दो हर आदमी को इस पर मंथन तो करना ही पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा और सोच बदलनी पड़ेगी। अब यह है कि जैसे पोलोथीन, ये भी एक पर्यावरण का बहुत बड़ा दुश्मन है, पोलोथीन चल रहा है, कानून बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी पोलोथीन लोग बेच रहे हैं, थैलियों में बेच रहे हैं, सब कुछ वो नालियों में पड़ जाता है, वो पानी रुक जाता है, फिर गंदगी फैल जाती है, तो इससे भी बहुत बड़ा ये जमीन खराब हो रही है। तो ये पोलोथीन भी है, इस पर भी क्या है रोक लगनी चाहिए, रोक तो लगी हुई है, पर हम लोगों को एक एक चीज पर मंथन करना पड़ेगा। और बाकी जो हम तो युवा पीढ़ी है, हमारी जो देश की भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते, हम तो उनको जागृत कर रहे हैं, वो अगर इसमें वो जाग जाएंगे तो वो पूरा काम कर देंगे बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि जो किसान है, किसानों को भी तो पेड़ बचाना होगा, क्योंकि उनके भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी खेती पर असर पड़ेगा, इसका जलवायु परिवर्तन का असर पड़ेगा, और बरसात कम होगी, अन्न की पैदावार कम होगी, इसलिए उनको भी खेतों की मेडों पर जहां जमीन है, तो हमारे यह तो क्या हमारे वहां जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहां रेतीला डेजर्ट एरिया है, वहां पानी की कमी है, बड़ी भयंकर स्थिति है, तो भी लोग पेड़ लगा करके बड़े करें, जागृति तो आई है जरूर, हर लोगों को पता भी लगा है कि पर्यावरण क्या है, जल क्या है, जंगल क्या है, सब पता लगा है बिल्कुल।
0: लेकिन आपको लगता है जितनी जागृति आई है, जितना अभी काम कर रहे हैं, उससे पूरा हो जाएगा?
1: उससे पूरा तो नहीं होगा, पूरा तो सोच तो आम आदमी की सोच बदलेगी तभी जाकर के सफलता मिलेगी, नहीं तो क्या है कि अगर आम आदमी की सोच नहीं बदली तो क्या है,
0: सोच जो बदलना है तो क्या सोच बदलना है, क्या सोचना चाहिए?
1: सोच ये बदलना है कि ये जो सोच 5-6 जी है, इस पर ये तो सोच बदलनी है, और तो करना ही क्या,
0: मतलब ये तो हमें ये
1: एक तो बूंद बूंद जल बचाना, जल बचेगा तभी तो मामला मिलेगा, बूंद बूंद जल, एक बूंद बूंद के लिए लड़ना पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा तब आपको एक गिलास वो पानी मिलेगा, क्या आप उस पानी के कंठ गीले करोगे, क्या वो प्यास बुझाओगे, क्या उसको नहाओगे, क्या मुंह धोओगे, क्या करोगे? अब एक आदमी हमने जो हमारी जिंदगी है, हमने आज से आपको बता दूं 60 साल 65 साल हमारे पिताजी ने हमने देखा है, अब मैं 72 साल का हो गया, तो वो 300 फुट नीचे से हाथों से पानी खींचते थे, एक एक बूंद काम में लेते थे, पीने के लिए देते थे, एक 20 लीटर 10-15 लीटर बाल्टी से पूरा कपड़ा धोना करना नहाना सब काम में ले लेते थे, एक बाल्टी पीने में पूरा काम लेते थे, 20 लीटर पानी में पूरा एक आदमी का जीवन चल जाता था 24 घंटे तक। आज ये स्थिति है, एक आदमी 100 लीटर ही खपा देता है, 200 लीटर ही खपा देता है, कोई

0: की जो ऑक्सीजन ले रहा है 70 साल तक, जन्म लेकर के बच्चा 70 साल तक 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन फोगड़ में ले रहा है। यार पेड़ एक ही पेड़ उसे ही तो मिलती है ऑक्सीजन, और आएगी कहां से? तो पेड़ एक ही लगाता नहीं है, तो इसलिए उनको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर इसका बिल आना शुरू हो गया ऑक्सीजन का, अगर मेरे घर या आपके घर 8.5 करोड़ रुपए का बिल आ जाएगा 70 साल तक, तो क्या आप भर पाओगे? यार ये ऑक्सीजन लोगों ने खरीदी है, महामारी में खरीदी है लोगों ने। एक एक आदमी जो बीमार पड़ा है 10-10 दिन तो वो वेंटिलेटर पड़ा है 15-15 दिन तक, तो उस आदमी ने कम से कम 3-3 लाख 4-4 लाख की ऑक्सीजन तो खरीदी। तो ये तो तब पता लगा, तो ये तो ऐसे महामारियां आएगी, क्योंकि ये तो प्रकृति का प्रकोप है, भगवान की बनाई हुई धरती। मैं तो सबसे पहले ये मानता हूं कि सबसे पहले परम पिता परमात्मा है, वो ऊपर सब देख रहा है, वो ऊपर संतुलन बराबर कर रहा है। अगर आदमी नहीं मानेगा तो वो अपने आप कर देगा, इसमें क्या है? ये तो समझने की बात है कि उसके हाथ में है कि बंदा के मैं धन करूं, धन कर करे गुमान, साई कतरनी हाथ में वो रखे उन्मान। तो परमपिता परमात्मा के पास सब कुछ है, ठीक है। हमारे को भगवान ने भेजा कि ये करो, हमने क्या जो शिकारी शिकार करते थे, कई जानवरों का शिकार किया, हमने शिकारियों के खिलाफ संघर्ष किया, और भगवान ने भेजा तो हमने 28 मुकुट में शिकारियों के खिलाफ लड़ा, और उसमें 13 शिकारियों को जेल में डलवा दिया, खुद के हर्जे करते पर लड़ा, और 2500 से ज्यादा जो जंगली जीव थे घायल अवस्था में इलाज करके उनको जंगल में छोड़ा। तो उनकी सेवा और इतने पेड़ पौधों की जो सेवा थी, ये भगवान की सेवा थी। तो ये जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे, इनकी आवाज शायद राष्ट्रपति भवन तक पहुंची हो, तभी तो ये पद्मश्री मिला, नहीं तो ये कौन पूछता? 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, जनसंख्या बढ़ रही है, यार कौन पूछता है, कौन परवाह करता है? तो ये भारत सरकार ने, तभी तो भारत सरकार तक ये हमारे जो फौज है, जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे, उन्होंने जाकर के आवाज लगाई, हमारा भी एक आदमी है, इसका भी तो ये, इनको भी कोई पुरस्कार दो, इनका सम्मान करो, तब जाकर के ये कोई सम्मान मिला है। तो इसलिए क्या है कि ये तो परम पिता परमात्मा की कृपा है। मैं तो ये मानता हूं, सबसे लास्ट में दीदी मैं ये आपको एक बात बता दू, मैं कुछ नहीं, न तो मैं हूं और न ये मेरा है। ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा, 70 साल की एज हो गई, न जाने कब, पता कोई पता नहीं, और मैं भी ये शरीर चला जाएगा, और मैं भी जो इसके अंदर है वो परमात्मा की रूह वो यहाँ है। हाँ। ये बाबा कहते थे, तो बाबा के बताए हुए मार्ग पर।
1: हेमंतराम जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपको ट्री मैन ऑफ राजस्थान ये जो खिताब मिला है, तो ये कब और कैसे मिला है, किसने दिया है आपको?
0: ये हुआ ये कि मैंने 5-7 जिलों में तो काम किया, और हमेशा इसमें प्रचार प्रसार मीटिंग है, पर्यावरण सम्मेलन, चेतना, 1472 किलोमीटर तो मैंने पद यात्रा की पर्यावरण को बचाने के लिए इस रास्ता, और 5-7 जिलों में मैंने पौधारोपण किया। तो इतना जो काम करते हुए मेरे काम को जब इलेक्ट्रिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबने मेरे काम को परखा है, और राजस्थान सरकार में सरकार ने परखा है, मेरे को 500 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, और राजस्थान सरकार से बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, भारत सरकार के जो ये इन्वायरमेंट के बड़े से बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये जो इतने पुरस्कार 500-700 से ज्यादा पुरस्कार मिले और ये पद्मश्री मिला, तब क्या है कि इलेक्ट्रिक मीडिया वालों ने सबने और वो उन्होंने ट्री मैन ऑफ राजस्थान घोषित कर दी, क्योंकि उनको काम लगा कि वास्तविकता में इस आदमी ने कुछ करके दिखाया, या फिर 1472 किलोमीटर पद यात्रा की है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ऐसे करके 6 जिलों से मेरी रिकमेंड गई थी कि भाई ऐसा आदमी इन्होंने काम किया, तभी जाकर के ये पद्मश्री जो पुरस्कार मेरे को मिला। और ये जो अब जितने भी अब क्या है कि सरकार भी एक अब एक भारत सरकार सूचना व जनसंपर्क मंत्रालय अब उन्होंने खिताब दिया, भारत सरकार का सूचना व जनसंपर्क मंत्रालय ने एक मेरे ऊपर एक फिल्म को बनाने का जो निर्णय लिया, जिसमें 4.5 लाख रुपए का जो बजट आवंटित करके कि हिमताराम बाबू ट्री मैन ऑफ राजस्थान के नाम से एक फिल्म बनेगी, तो उन्होंने मेरे को ये खिताब दे दी। पर खिताब तो दिया, तो अब मेन चीज मेरा कुछ नहीं, ये जो मेरा काम है, काम का खिताब, ऐसे काम करते जाएंगे, खिताब मिलते जाएंगे, होगा जो होगा।

0: परमात्मा करेगा जो करेगा, और जो परमात्मा की कृपा है हमारा काम तो हम करते जाएंगे।
1: तो चिंतराम जी, ये तो है कि आप 45 वर्षों से आपने बहुत सारे पेड़ लगाए और एक जंगल जैसा बन गया है, जिसके लिए आपको ट्री मैन ऑफ राजस्थान के नाम से खिताब भी मिली है, पद्मश्री का भी अवार्ड मिला है। आप आगे जाकर के भविष्य में क्या करना चाहते हैं?
0: हम तो अब क्या है कि 72 साल की उम्र तो होगी, और बाकी अभी हमें लग रहा है कि अब 10-20 साल तो और कुछ करेंगे, फिर तो मालिक की जो कृपा होगी वो होगा। बाकी हमारा है कि हम 2 लाख पौधे और लगा करके उसको पेड़ बनाना, एक काम तो ये है, और दूसरा 5 लाख बच्चों को प्रतिज्ञा दिलानी। प्रतिज्ञा उन बच्चों को दिलानी है 5 लाख बच्चों को, कि एक तो मैं पेड़ को नमस्कार करूंगा, एक पेड़ कोई काटता है तो काटने नहीं दूंगा, एक वन्य जीव के साथ जो जीव जानवर है उसका अत्याचार करेगा वो रोकूंगा, और एक पेड़ जन्म मेरे जन्मदिन पर लगा करके बड़ा करूंगा। ये प्रतिज्ञा है हमारी, ये प्रतिज्ञा दिलाऊंगा। 5 लाख बच्चों को प्रतिज्ञा हो जाएगी, मैं नोटेड कर रहा हूं, तो फिर 5 लाख और दिलाऊंगा। तो ऐसे मैं तो मेरा जीवन ही इस पर समर्पित कर दिया है, 45 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूं, और रात दिन अभी आज यहां हूं तो कल या परसों डीडी नेशनल पर मेरे को जाना पड़ेगा दिल्ली, तो वहां भी जाना पड़ेगा, वहां भी मेरा इंटरव्यू होगा, फिर जयपुर में इंटरव्यू होगा। तो हमेशा हमेशा कुछ न कुछ मीटिंगें होती रहती है, पर्यावरण संगोष्ठियां होती रहती है, कई वन मौसम मनाए जाते हैं, आगे बरसात होगी तो फिर पेड़ लगाने शुरू कर देंगे। तो ऐसे पूरे राजस्थान में, अब पूरे भारत में भी घूमना पड़ेगा, और हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर का क्या पता है, ये तो ऐसे ही चला जाएगा। ये 5 तत्व है, 5 तत्व मिल जाएंगे, मट्टी मिल जाएगी, तो ऐसे ही फूंक निकल जाएगी, और निकल गई तो इसका कोई धनी दौरी नहीं है, फिर इसको जला देंगे बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि हमारा काम है, मैं आज जो हमारा जो ये मधुवन चैनल है, ये जो लोग सब सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हमारे भाई बहनों से, कि आप सावधान हो जाइए, इस पर्यावरण को बचाइए, और साथ जे पर काम करिए, और जल है, जंगल है, जीव है, जैविक है, जलवायु है, जमीन है, इसको बचाइए, तभी तो हमारा जीवन बचेगा, और जल एक एक बूंद बचाना होगा, और इस पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, तब हम इस जीवन अच्छी तरह जी सकेंगे, नहीं तो आने वाले समय में मानव जीवन के लिए गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे।
1: बहुत अच्छा हिंताराम जी, आपने बहुत ही सख्त तरीके से बहुत अच्छा मैसेज दिया है। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे 5 शब्द पूछेंगे और आपको समाधान कहना है। तो सबसे पहला सवाल है जंगल। जंगल जब सुनते हैं आपको क्या दिमाग में आता है, क्या है जंगल?
0: जंगल एक भगवान का वास है, और उसमें जीव जानवर पशु पक्षी मानव सभी रह सकते हैं, और मानव को बड़ा आनंद मिलता है।
1: अच्छा, दूसरा सवाल है भविष्य।
0: भविष्य के लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य आगे क्या है, आगे का जो भविष्य है, वो आगे जो समय है वो बड़ा खतरनाक आ रहा है, इसलिए भविष्य में बहुत कुछ करना पड़ेगा।
1: पेड़ क्या है आपके लिए?
0: पेड़ मेरे लिए भगवान का रूप है, वो एक सर्वधर्म समभाव है, उसके न तो कोई जात है, न कोई पात है, न कोई भेद है, न कोई भाव है, उसके नीचे पशु है, पक्षी है, जीव है, जानवर है, मानव सबके लिए एक भगवान का रूप है।
1: और बच्चा?
0: बच्चा एक पेड़ अनेक, और बच्चा ये बच्चों को तो जैसी शिक्षा दूंगा, और वो अगर अपने जन्मदिन पर पौधे लगाएंगे तो पौधे ही पौधे हो जाएंगे, कोई पार ही नहीं है।
1: दया?
0: दया तो एक चीज, करुणा, ये दया है, इस पर थोड़ा सा मैं आपको समझ चाहता हूँ। दया तो आदमी को हमेशा ही करनी चाहिए, आदमी का जो एक सूत्र है, दया करेगा, दया करता जाएगा, तो भगवान अपने ऊपर बहुत दया करेंगे बिल्कुल ही। तो अपन दया किसी के ऊपर नहीं करेंगे तो अपने ऊपर कौन करेगा? तो ये तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने थोड़ी है, जब लग घट में प्राण, ये जब घट में प्राण है जब तक दया ही दया करते रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपसे मिलकर।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो जितने भी मधुवन चैनल सुनने वालों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत, जो मैं आपके जीवन की जो मंगल कामना करता हूँ, आप ये ऐसे सुनते रहिए और भविष्य में कुछ करके दिखाई। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेकर के ऐसे खा पी कर सोई जगत में, और जीवन रहता ढोर

0: यूं जीवे सो जगत में मानो पशु की छोर। अरे भैया जो पशु है उस समान दे करके पेट भराई करके कुछ नहीं है, पशु ही पेट भरता है। तो इसलिए मानव को कुछ करके दिखाना चाहिए, तभी जीवन का जो कल्याण होगा और जीवन में सफलता मिलेगी और परम पिता हमारे बाबा हमारे ऊपर खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं. इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं. हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना. तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें. ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा. नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन और मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन. प्रिय श्रोताओं, जीवन की तेज रफ्तार में हम निरंतर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं. आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है. आज का विषय हमें उसी ठहराव की ओर ले जाता है. आज हम बात करेंगे कृतज्ञता की. कृतज्ञता मीन्स ग्रेटिट्यूड, एक ऐसी भावना जो दिखने में साधारण है, लेकिन यदि जीवन में उतर जाए तो यही भावना आध्यात्मिक उन्नति की सबसे सशक्त कुंजी बन जाती है. तो मित्रों, आज का हमारा विषय है कृतज्ञता, आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी. कृतज्ञता केवल औपचारिक रूप से धन्यवाद कह देना नहीं है, यह जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है. यह वह आंतरिक अवस्था है जहां हमारा मन शिकायतों से मुक्त होकर स्वीकार और संतोष की ओर बढ़ता है. जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हमारा ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि हमें क्या नहीं मिला, बल्कि इस बात पर रहता है कि हमें कितना कुछ मिला है. यही दृष्टि हमारे भीतर शांति को जन्म देती है. अक्सर हम देखते हैं कि सुख सुविधाएं बढ़ने के बावजूद मन अशांत रहता है. इसका मुख्य कारण है अपेक्षाएं. कृतज्ञता अपेक्षाओं को कम करती है और स्वीकार को बढ़ाती है. जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी आभारी होते हैं, स्वस्थ शरीर, श्वास प्रश्वास, परिवार का साथ, भोजन और सुरक्षित वातावरण, तो भीतर एक गहरा संतोष पैदा होता है. यही संतोष आध्यात्मिक उन्नति की नींव है. आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कृतज्ञता अहंकार को धीरे धीरे गलाकर विनम्रता में परिवर्तित कर देती है. जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक लोगों और परिस्थितियों का सहयोग भी है, तब मैं का भाव कमजोर पड़ता है और हम का भाव मजबूत होता है. यही परिवर्तन हमें आध्यात्मिक स्तर

0: सिखाता है। कृतज्ञता हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जब हम आज के लिए कृतज्ञ होते हैं तब मन वर्तमान में टिकता है। यह वर्तमान में टिकना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कृतज्ञता केवल अनुकूल परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जब हम चुनौतीपूर्ण अनुभवों को भी ठीक के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं, तब वे हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाते हैं। यही दृष्टिकोण आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। हमारे शास्त्रों और संत परंपरा में कृतज्ञता को अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया है। कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। जब मन से यह भाव निकलता है कि जो हमें मिला है वही पर्याप्त है, तो भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यही शांति हमें आत्मा से जोड़ती है। यदि हम इसे व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहें तो यह बहुत कठिन नहीं है। दिन की शुरुआत एक संकल्प से करें, आज जो भी मिलेगा उसके लिए आभारी रहूंगा। रात को सोने से पहले दिन भर की 3 ऐसी बातों को याद करें जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे मन की दिशा बदल देता है। कृतज्ञता हमारे संबंधों को भी सुंदर बनाती है। जब हम अपेक्षाओं के बजाय सराहना से भरे होते हैं तो रिश्तों में सहजता आती है। हम दूसरों को बदलने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। इस तरह कृतज्ञता व्यक्तिगत शांति के साथ साथ सामाजिक सामंजस्य भी बढ़ाती है। प्रिय श्रोताओं, यदि जीवन के हर सुबह एक धन्यवाद के भाव से शुरू हो और हर रात कृतज्ञता के साथ समाप्त हो तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। कृतज्ञता हमें शिकायत से संतोष की ओर, शांति से शांति की ओर और अहंकार से विनम्रता की ओर ले जाती है। यही यात्रा आध्यात्मिक उन्नति की वास्तविक यात्रा है। इसी संदेश के साथ मैं आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं फिर लेकर आऊंगा एक नया विषय। सुनते रहे इसी तरह प्यार से हमारे कार्यक्रम ज्ञान चिंतन को और बने रहे हमारे साथ। खुश रहे, खुशियां बांटे। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: कागज पेन नहीं या वेड़ी, मोबाइल सा नवा उपक्रम आए, विवरण आनी माहिती।

0: अपने मन की थॉट दूसरे के मन की थॉट, इधर का तीर उधर, उधर का तीर इधर, उसमें कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर आ रहा है.
1: वी आर नाउ चूजिंग अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, राइट. हमें बहुत एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसको हम कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट है. एक छोटा चेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है. अनअवेयर ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, जहां ना रूल्स ऑफ द गेम नहीं पता, लॉज नहीं पता कौन से वर्क कर रहे हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई, ब्लेम गेम किया हुआ है कम्प्लीटली. ये इस वे ऑफ थिंकिंग से शिफ्ट करना टू अ वे ऑफ थिंकिंग जहां कम्प्लीट अवेयरनेस, कम्प्लीट नॉलेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्प्लीट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितना ईजी था बोलना उन्होंने ऐसा किया तो बुरा लगेगा, और कितना चैलेंजिंग है ये बोलना कि भले उन्होंने ऐसा किया मुझे फिर भी अच्छा सोचना है. कितना ईजी है बोलना वो जेलस हैं तो वो हैं बुरे, लेकिन कितना एक अप शिफ्ट करना है टू से अगर वो जेलस हैं तो वो दर्द में हैं, उनके प्रति अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है, कंपैशन. सो ऑब्वियसली द शिफ्ट इज वेरी बिग. अब ये शिफ्ट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें एक थोड़ा सा हमें एक प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये शिफ्ट हमारे जीवन को भी कम्प्लीटली शिफ्ट कर देगा.
0: नहीं, बट थोड़ा सा फियर भी होता है ना.
1: फियर किस बात का है
0: भाई? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं क्यों कार्मिक अकाउंट बनाऊं, ये इसलिए आर्टिफिशियल सा. और बिहेवियर में भी पहले मैं प्यार, वो मेरा प्यार था. भले अगला बोले यार किसी बात करता, लेकिन मैं अब मुझे वो प्यार करने जाता हूँ, प्यार से बात करना चाहता हूँ, प्यार की एनर्जी जबरदस्ती के भेज रहा हूँ.
1: बात करने के तरीके से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की सोच, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आज आप कह रहे हैं कि अंदर मेरा प्यार है, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूँ. इसका ऑपोजिट भी होता है कि अंदर बहुत कुछ पकड़ के रखा है, लेकिन ऊपर बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत मीठा बात कर रहे हैं. तो जब इस तरह की एक डिफरेंट चीज हमें दिखाई दे कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, बाहर गुस्सा नहीं होगा, बाहर सिर्फ एक बात करने का तरीका थोड़ा सा लाउड हो सकता है, लेकिन अंदर जो एनर्जी है वो बहुत प्यार की और एक्सेप्टेंस की है, तो वाइब्रेशन कौन सा क्रिएट होगा?
0: वाइब्रेशन तो प्यार के होगा.
1: एब्सोल्युटली. अब अगर अंदर एनर्जी क्रिटिसिज्म की है, अंदर एनर्जी हर बात पर एक थोड़ा सा डिसकंफर्ट क्रिएट करने की है, अंदर एनर्जी में रिजेक्शन है लेकिन शब्दों में एक्सेप्टेंस है. ना, अंदर से इफ आई फील क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बैठे, एंड बाहर से बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, बहुत अच्छा है, तो ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट करेगा? हम आज क्या कर रहे हैं, अपने एक्ट कर्म बाहर को देख रहे हैं, अपने बोल को चेक कर रहे हैं, और अंदर हम बहुत कुछ अक्यूमुलेट करके रख रहे हैं, और फिर हम ये पाते हैं कि कितनी मेहनत करके भी हमारे रिश्ते उतने सुंदर है नहीं, हमारे जीवन में उतनी खुशी है नहीं.
0: लेकिन अब मैं एक्सेप्ट करूं कि वो बात करे नौकर के चिर में तो भी मैं प्यार दूं, वो मेरी बात तीन बार बोलूं नहीं सुने तब भी प्यार करूं, मैं सारा कुछ अपने आप को पूरा 360 डिग्री चेंज नहीं कर पा सकता.
1: प्यार करूं मीन्स क्या करूं? प्यार करना नहीं है. हाँ, ये ध्यान रखना है कि गुस्सा करना नहीं है. एज लॉन्ग एज सपोज मैं यहाँ बैठकर आपके बारे में कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट करूं, अंदर आपको देख देख कर एक मेरी रनिंग कमेंट्री नहीं चलती रहे, यू नो, एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो हमारी लोगों को देख देख कर या लोगों के बारे में सोच सोच कर जो चलती है, दैट रनिंग कॉमेंट्री जो अंदर चलती है, दैट इज रेडिएशन, दैट इज वाइब्रेशन. अगर मैं वो नहीं चला रही हूं तो मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूं. मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है. सी दिस, जो आप कह रहे हैं ना, प्यार करने की मेहनत नहीं करनी है,
0: फोर्स नहीं करना है.
1: लाइक अ डिफरेंस इज बिटवीन, एक मदर को ले लें, वो अपनी बेटी को भी देख रही है और अपनी बहू को भी देख रही है. ठीक है, बेटी को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं और बहू को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं, ये डिफरेंस चेक करना है. ये चेक करना है. बेटी की भी कई बातें गलत लगेंगी, ऐसे थोड़ी है कि बेटी

0: सब कुछ सही करती है और बहू कुछ सब कुछ गलत कर रही है। दोनों अपने अपने तरह से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन बेटी के प्रति जो एनर्जी क्रिएट होती है वो मोर एक्सेप्टिंग होती है, और जो बहू के प्रति एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि वहां अभी फाउंडेशन नहीं है, वहां फाउंडेशन
1: नहीं है।
0: यू नीड अ फाउंडेशन,
1: समझ में आया,
0: एक फाउंडेशन चाहिए ना उस रिश्ते के लिए, वहां अभी वो फाउंडेशन नहीं है। और उस रिश्ते में पहले के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के लेबल्स लगे हुए हैं, ये रिश्ता तो थोड़ा सा
1: नाजुक होता है,
0: हाँ, इसमें तो सोचकर, इस रिश्ते में तो बनाना पड़ता है। माँ बेटी के रिश्ते में तो कभी नहीं बोलते बनानी पड़ेगी इनसे, इनसे अच्छी तरह से ध्यान रखो, अच्छी तरह से बननी चाहिए। वहां लेबल क्या है, ये तो है ही नेचुरल ब्यूटीफुल रिश्ता। तो इससे जो डेलिकेट जिनको हम कहेंगे रिश्ता है, उस रिश्ते में पहले से एक फिल्टर है, एक लेबल है, और दोनों तरफ के लोगों के पास है वो, और इसीलिए दोनों की जो वाइब्रेशन है वो उस लेबल के थ्रू जा रही है। अब आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है कि किसी के भी प्रति, चाहे वो स्टाफ है चाहे वो कोई भी है, आप सिर्फ एक धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे कि सारा दिन औरों को देखते हुए मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है, अभी चलो लेट्स से शब्दों में भी नहीं आ रही, मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है उस कमेंट्री की क्वालिटी क्या है।
1: मेरी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मेरे पास तो 20-20 साल से स्टाफ है, वो लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, बुरा मानने वाली फैमिली है कि आप कैसे बात करते हो, दोस्त बोलते हैं यार उससे सीख। मैंने बोला अगर उसको इतना बुरा लगता है वो 20 साल से क्यों है,
0: वो आपसे खुश है कि नहीं, वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ, मैं अपने से खुश हूं कि नहीं इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, लोग क्या बोल रहे हैं इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट।
1: अपने से खुश की बात नहीं सिस्टर, मैं इम्प्रूव करना चाहूँ, दैट्स इट।
0: अपने से खुश मतलब मेरी एनर्जी कंफर्टेबल है कि नहीं, मेरे अंदर एक कामनेस है कि नहीं, या एक आवाज चलती रहती है सारा दिन। ये जो इनर आवाज है ना, ये आवाज अगर क्रिटिकल है, ये आवाज अगर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर ये आवाज सारा दिन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या जो हमने लास्ट टाइम देखा कि ये आवाज दूसरों की खुशी को देखकर खुश नहीं है, ये किसी को पता नहीं चलेगा, आपको ये पता नहीं चल सकता अगर मैं आपकी सफलता को देखकर खुश नहीं हूँ, आपको बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगी ये बात। आई विल बी सो नाइस, सो अप्रिशिएटिव, सो मोटिवेटिंग, आई विल बी वेरी नाइस विद वर्ड्स, मेरे शब्द बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी कॉन्वर्सेशन सिर्फ मुझे पता है, तो लोगों के लिए तो मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कहेंगे कितना अच्छी बात करते हैं, सभी से कितना अच्छी तरह से व्यवहार करती है, आपको सबसे अप्रिसिएशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप अंदर खुश नहीं होंगे। अपने से खुश मतलब अपनी खुशी, वो एनर्जी ब्लॉक हो रही है। क्यों ब्लॉक हो रही है? क्वालिटी ऑफ थॉट्स, इस पे मेहनत नहीं करनी है, प्यार करने में, प्यार देने में मेहनत नहीं करनी है, वो आपका नेचुरल स्वरूप है, आत्मा का नेचुरल स्वरूप है लव। अगर हम ये वाली कॉन्वर्सेशन को, जैसे आपकी सफलता को देखकर मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है कि इतना सारा मिल गया, मतलब इतने थोड़े टाइम में इतना अचीव कर लिया, अब ये एक थॉट है, सपोज मैं इसको समझती भी नहीं कि ये गलत थॉट है, मेरे को लगता है नेचुरल है ना, इतना थॉट क्रिएट कर लिया, लेकिन ये एक थॉट भी जो इस तरह की क्वालिटी की है, इसने मेरी नेचुरल खुशी को ब्लॉक किया है। This is very important. तो अब मैं क्या करूँ? Now I am aware कि इस तरह की conversation, इस तरह की thinking मेरी खुशी के लिए damaging है। Leave alone कि वो दूसरे तक पहुंच के क्या करती है, That's not important. ये मेरी खुशी को, क्योंकि we are saying being bliss, I being bliss, not I radiating bliss, वो तो अपने आप हो जाएगा natural. Being bliss ये मेरी खुशी को कैसे block करती है? तो जैसे ही वो conversation चल रही है, मैं इतना तो अटेंशन रख सकती हूँ कि धीरे धीरे उस कॉन्वर्सेशन को चेंज, सपोज आप मुझे बोले आकर, उनको देखो इतने गलत काम करते हैं फिर भी कितना अचीव कर लिया, इतनी मेहनत भी नहीं की फिर भी इतना अचीव कर लिया, ये आपने बोलना शुरू किया। और सपोज मैंने फिर एकदम से ऊपर से बोला, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मैंने बोला हाँ आजकल के जमाने में तो कुछ भी होता है, ऑनेस्ट जो नहीं है वो लोग भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, ये मेरी एक तरह की कॉन्वर्सेशन। दूसरी तरह की कॉन्वर्सेशन अच्छा है ना, श्रेष्ठ कर्म तो कुछ किए होंगे ना उस आत्मा ने, सफलता तो ऐसे मिल ही नहीं सकती, अच्छा है उनकी

0: लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, अभी देखो कितना अच्छा आया, तो जीवन में खुशी आ गई ना। अब मेरी ये थॉट्स, मतलब मेरी ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे आपकी भी कॉन्वर्सेशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकती है। मन में जब एक थॉट चलती है तो उसके बाद एक और थॉट भी आती है। जैसे जब हम कुछ करना शुरू करते हैं तो एक थॉट आती है करो, दूसरी थॉट आती है नहीं ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी, फिर ये थॉट बोलती है नहीं तो क्या हुआ, एक बार करके देख सकते हैं ना। तो हमेशा ऐसे दो आती है। वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन, वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन इनसाइड, जैसे कि दो लोग बोलते हैं अंदर। कई लोगों को लगता है ये दो पर्सनालिटी है अंदर, दो पर्सनालिटी नहीं है, दो थॉट्स हैं। क्यों दो थॉट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे अंदर दोनों संस्कार हैं। मेरे अंदर नेचुरल प्यार का भी संस्कार है और मेरे अंदर अक्वायर्ड ईर्ष्या का भी संस्कार है। तो जो मेरा ईर्ष्या का संस्कार है वो थॉट क्रिएट करेगा, इतना मिल गया उनको। जो मेरा नेचुरल प्यार का संस्कार है, चाहे वो एक धीरे से ही थॉट क्रिएट करेगा, छोटी सी क्रिएट करेगा, कहेगा अच्छा है ना, तो क्या हुआ, अच्छा है, खुश है। अब क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपने कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है और कुछ नहीं करना है। वी डोंट हैव टू, यू नो, वी थिंकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम दूसरे को बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी के लिए, ऐसा क्यों सोचते हो किसी के लिए, ऐसा सोचो ना क्यों, बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। ऐसा हम अपने लिए नहीं बोल सकते, हम जोर से ही बोल रहे हैं अपने आप के साथ, कहते इतना क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं, लेट मी ग्रेजुअली चेंज, क्योंकि मेरी खुशी ब्लॉक होती है। हमें अब सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना है, लोग क्या बोलते हैं डजेंट मैटर, इवन इफ आई गेट द अप्रूवल ऑफ एवरीबडी अराउंड मी, डू आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, दैट आई हैव टू आस्क। क्योंकि सारा दिन अब हमें ये समझ में आ गया कि एनर्जी फ्लो कर रही है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन।
1: आई टू अप्रूव नेगेटिव काम में भी तो लोगों की करती होगी ना,
0: आई
1: अप्रूव माई सेल्फ,
0: नेगेटिव
1: ठीक किया,
0: yes.
1: उसको तो डांटना ही चाहिए था,
0: yes.
1: ऐसे लोगों को तो मार पड़नी चाहिए, मैं मारा अच्छा।
0: लेकिन
1: किया।
0: अब हमारा पैरामीटर बदल गया ना, पुराना बिलीफ सिस्टम से हम गुस्से को अप्रूव कर रहे थे, अब हम एक नए जीवन, इसीलिए तो आपने कहा ना वो थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही है
1: नए बिलीफ की।
0: अभी हमें वो क्यों थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, जो आपने कहा बहुत स्ट्रगल लग रही है आर्टिफिशियल, क्योंकि अब एक नए बिलीफ सिस्टम से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं अभी भी
1: पुराने कम्फर्ट जोन से हटके, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है।
0: कोई भी कम्फर्ट जोन को तोड़ना इट इज नॉट, इसके लिए सबसे इजी तरीका पहले है कि रोज ये इन्फॉर्मेशन तो जरूर भरनी है अपने अंदर, यू नो, दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो रोज लेनी है, क्योंकि पुरानी बहुत डीप रूटेड है, पुरानी बहुत डीप। रोज अगर 15 मिनट आधा घंटा ये लेंगे, इट विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन माय थॉट्स एंड देन होल डे अवेयरनेस। क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, लेकिन अब अपनी थॉट को चेक करके कि मुझे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है, क्यों व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है, मुझे नॉलेज है, अभी मेरा वो पूरा कम्प्लीटली सिस्टम में नहीं आया, लेकिन अभी मुझे नॉलेज तो है कि ये आत्मा भी कैसी है ओरिजिनली, ये भी एक प्योर ब्यूटिफुल सोल है जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ा गलत कर्म कर दिया है, लेकिन व्यक्ति कैसा है। सो इवन इफ यू हैव डन अ वेरी वेरी बैड कर्म, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, मेरे पहले एक थॉट ऑफ नॉलेज तो क्रिएट हो जाए कि व्यक्ति ओरिजिनली बहुत प्योर एंड ब्यूटीफुल है, कर्म जो अभी किया वो गलत है, तो एटलीस्ट जो व्यक्ति के प्रति थॉट्स क्रिएट हो रहे थे ना वो कम हो जाएंगे, ये बहुत यूजफुल है। क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट जो आपके साथ क्रिएट हो रहा है वो तब क्रिएट होता है जब मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ। अगर मैं आपके लिए एक अच्छी थॉट रख के आपने जो किया उसके बारे में सोचूं, तो भी मेरा आपसे जो कार्मिक अकाउंट बन रहा था वो नहीं बनेगा।
1: कभी कभी हम बोलते हैं ना कि इज अ नाइस मैन लेकिन रॉन्ग डिसीजन ले ली।
0: ब्यूटीफुल, बस ऐसे ही। नाउ एवरी वन इज अ नाइस पर्सन, क्यों? क्योंकि नॉलेज मिली, नॉलेज मिली। इट्स लाइक ये व्हाइट कुर्ता है लेकिन इसपे कुछ गिर गया, या ये कुर्ता ही गंदा, कैसा खरीदा, कैसा पहना, कैसी ड्रेस है, बिकॉज नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज से एक थॉट तो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर नफरत होने भी लगे, गुस्सा आने भी लगे, धीरे धीरे

0: ओरिजिनली वो आत्मा ब्यूटीफुल है। उस आत्मा के साथ के कार्मिक अकाउंट को थोड़ा सा हमें अभी पहले हल्का करना है। अब उन्हें हमें उनकी गलती भी बतानी है जो अगर उस रोल में है, जैसे चाइल्ड या स्टाफ या कोई भी फ्रेंड्स, हमें उनकी गलती भी बतानी है। नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एंगर
1: टू डिसिप्लिन
0: टू असर्टिवनेस। डिसिप्लिन तो हम एंगर के साथ भी कर रहे थे,
1: बींग असर्टिव,
0: क्योंकि बहुत बार बहुत लोग कहेंगे कि नहीं काम होने वाला है, ऐसे सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं, सिर्फ प्यार से बोलते जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हम।
1: मैं थोड़ा सा प्यार नहीं, मैं हो गया था इनडिफरेंट, जो हो रहा है होने दो,
0: नहीं
1: ये टूटता है टूटने दो, वो गलती करता है करने दो, ये छोड़ दो, बात ही नहीं करनी, मुंह ही कम खोलो।
0: क्योंकि मेरा बोला हुआ इनको पसंद तो आती नहीं बात, तो फिर ठीक है मैं नहीं बोलता।
1: नहीं, कार्मिक अकाउंट वाली बात है और बाकी काफी बातें आपसे सुन के,
0: लेकिन आपका जो रोल है अगर वो आपने उससे अलग हो गए तो वो भी तो कार्मिक अकाउंट हो जाएगा।
1: अच्छा, रोल एज अ पेरेंट, हेड ऑफ द फैमिली, घर का बड़ा हूँ,
0: पेरेंट का बच्चे के साथ कार्मिक अकाउंट क्या है?
1: सही रास्ता बता,
0: रोल है ना, गाइड, फैसिलिटेटर। अगर रोल से डिटैच हो गए,
1: हाँ, इनडिफरेंट,
0: इनडिफरेंट, अगर मुझे अभी दिख रहा है कि आप इस कुर्सी से अभी गिरने वाले हैं,
1: हाँ,
0: मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं, जब आपको अभी ये गलती है गिर जाएंगे, एंड आई सिट बैक लाइक दिस, इनडिफरेंस, कौन सा कर्म क्रिएट हुआ?
1: और फिर ड्यूटी भी है ना फैमिली,
0: तो कर्म कौन सा क्रिएट हुआ? कोई गिर रहा था,
1: बैड कर्म हुआ,
0: कोई गिर रहा था और उसको सहयोग नहीं दिया, तो ये तो रॉन्ग कर्म में चला जाएगा। तो इनडिफरेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड कर्म। रोल क्या है? मुझे राय देनी है। डिसिप्लिन करना है तो मुझे असर्टिव होना है। असर्टिव मतलब क्लियर, पावरफुल, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, अटैक नहीं करना।
1: क्लियर, पावरफुल, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन।
0: सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने कोई गलती की है, तो फिर मुझे ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि आप उस इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए रिसेप्टिव हैं, नहीं तो मैं इंस्ट्रक्शन दू भी और आप रिसीव नहीं करें उसको। जब मैं आप पे अटैक कर देती हूँ, आपकी प्रति क्रिटिकल हो जाती हूँ, तो फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी?
1: लो,
0: जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, फिर जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उसको आप रिसीव नहीं करते हैं। आपकी स्थिति का ध्यान रखते हुए, आपको अप्रिशिएट करके, अगर मैंने आपके काम को भी क्रिटिसाइज कर दिया, मतलब गलत बोल दिया, इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन जब आप पर अटैक कर दिया ना, देखो कोई भी किसी पर जब अटैक करता है, आप ऐसे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपकी ये बात गलत थी, आप हमेशा ऐसे करते हो, सामने वाला कहां चला गया? दर्द में। अब दर्द में जाने के बाद उसको कहते हैं आपको ना आगे से ऐसे करना चाहिए, वो तो सुनने की हालत में ही नहीं रहा अभी, वो उसका मन एक अलग डायरेक्शन में चला गया।
1: मैं जब गोल्फ खेलता हूँ ना, तो कैडी है, थोड़े कुछ ज्यादा ही बोलने वाले भी होते हैं, अरे क्या शॉट मार दिया, आप खड़े ही रॉन्ग थे, तो रॉन्ग ही जाएगा ना शुरू से। तो मैंने उसको बोला कई बार, मैंने बोले शॉट मारने से पहले क्यों नहीं बताया कि मैं रॉन्ग खड़ा था?
0: वही सहयोग देने की बजाय क्रिटिसाइज किया,
1: बाद में तो सब बोलने वाले हैं।
0: लेकिन उसमें भी एक है कि वो आपको ये बोलेंगे कि ये जो आपने मारा ना, ये आपको ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा मार लेते तो ये बेटर हो जाता आपके लिए। लेकिन एक है आपने ऐसा किया, आप ऐसे हैं, आप ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, अब उससे आपकी गेम पर इफेक्ट आ जाएगा,
1: आप हमेशा रॉन्ग ही खड़े होते हो।
0: अब आपकी थॉट्स कैसे हो जाएंगे जब ये सारी बातें सुन लेंगे?
1: टोटली कंफ्यूज हो जाऊंगा,
0: कंफ्यूज एंड फीलिंग वेरी
1: वेरी लो कि मुझे खेलना नहीं आता।
0: माय फादर सेड लाइक दिस टू मी, माय फ्रेंड स्पोक लाइक दिस टू मी, माय बॉस स्पोक लाइक दिस टू मी। अब जब ये हो जाएगी, मन की स्थिति ऐसी चली जाएगी, तो फिर जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो गोल्फ की गेम है, चाहे ऑफिस में काम है, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, स्थिति डाउन होगी। अब जब ये सब हो गया, तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी अपनी गलती को ठीक करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट होना चांसेस आर लेस, क्योंकि इट वॉज नॉट गिवन विद द राइट एनर्जी। वेन हमें किसी को चेंज कुछ करने के लिए कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी। चेंज करना, किसी को गलती बताना, ये छोटी बात नहीं होती है।

0: गलती को चेंज करना है। दोनों चीजों के लिए मुझे शक्ति चाहिए, नहीं तो एक मैं डिफेंसिव हो जाऊंगी, बाहर से नहीं भी अगर हो सके, आप बॉस है मैं नहीं बोल सकती आपको, अंदर से डिफेंसिव हो जाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था, ये तो हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते रहते हैं। मैं डिफेंसिव हो गई अपनी गलती के प्रति, मतलब मैंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। जब स्वीकार ही नहीं की तो चेंज करना तो होगा ही नहीं।
1: आउटसाइड स्वीकार गलती
0: कौन करता है स्वीकार गलती, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो गलती उनको सही एनर्जी के साथ बताई नहीं गई होती है। यस, आपने रिजेक्ट करके फिर गलती बताई, आपने व्यक्ति को रिजेक्ट किया कि आप ऐसे हो और फिर उनको गलती बताई।
1: अगर कोई आदमी, समझो मेरा ड्राइवर की आपकी जो बात हो रही थी उस दिन लेट आया, मैंने पूछा कि अगर सपोजिंग लेट क्यों आया, वो 200 कहानियां बना देगा, नहीं मैं तो आ गया था, मैं तो नीचे खड़ा था, मैं लेट नहीं आया, मैंने नौकर को बता दिया था कि साहब को बोल देना, मैंने भाभी जी को बोल दिया था कि मैं आ गया, उसकी ड्यूटी
0: है
1: मुझे रिपोर्ट करना, तो गलती मानते कहां है उसमें, मेरी क्या उसमें एनर्जी रॉन्ग थी,
0: एनर्जी रॉन्ग,
1: मैं रॉन्ग तरीके से पूछा भाई यू लेट,
0: पूछा भी और अंदर सोच सोच के उसको कैसी एनर्जी ऑलरेडी भेज दी थी।
1: हो सकता है उसने इमेजिन कर लिया।
0: सी, एनर्जी इमेजिन नहीं की जा सकती है,
1: एनर्जी इमेजिन नहीं की तो पास्ट एक्सपीरियंस है कि साहब डांटता है लेट आते हैं तो पहले से ही उसने इमेजिन कर लिया।
0: तो ये चीज कोई एक बार में नहीं वर्क होगी ये इक्वेशन, ऑब्वियसली इट्स माय वे ऑफ लिविंग विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैंने हर बार, सपोज मैंने 10 साल से किसी को क्रिटिकल एनर्जी दी हो और हर बार उनके बारे में ऐसा चिंतन किया हो और आज पहली बार मैंने वो क्रिटिकल एनर्जी नहीं दी तो फर्स्ट टाइम में नहीं मैजिक क्रिएट होगा नेचुरली।
1: दूसरे का संस्कार है सिस्टर कि हर बात में कभी भी अपनी गलती नहीं मानना, झूठी बोलना या अपने आप को बोलना मैंने किया ही नहीं, डिफेंसिव, तो उसको फिर मेरी राइट एनर्जी से भी मैं बोलूं।
0: अच्छा, और अगर रॉन्ग एनर्जी से बोले?
1: नहीं, रॉन्ग एनर्जी की बात
0: बोलना तो है ना, अपने ये ड्राइवर को बोलना तो है ही ना कि वो लेट आया एंड दैट ही हैज टू कम ऑन टाइम फ्रॉम आगे से, तो कौन से दो ही ऑप्शन है, नाराज हो जाए और ये भी सोचे ये हमेशा ऐसे करता है, यू नो ऑल दैट टर्बुलेंट एनर्जी।
1: अगर मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस दिन, लेट हो भी गया और कुछ ना बोलूं तो?
0: कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर आपका रोल ऑफ डिसिप्लिन, बोलना ये नहीं है कि लेट हुए, बोलना ये है कि आगे से आपको हमेशा टाइम पर आना है।
1: लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं बोलूं तो वो खुद ही आके बोलते सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया सॉरी,
0: तो फिर आपसे अच्छी एनर्जी गई है, ये सटल है।
1: क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं हुई ना उस दिन,
0: तो एक्सेप्ट कर लिया ना,
1: ठीक है आ गया हो गया, तो मुझे कहीं जाना भी नहीं था ना।
0: रिजेक्ट नहीं अगर किया तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया तो सामने वाले के लिए भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना वो इजी हो जाएगा। अब इसके साथ अगर आप अप्रिशिएट भी कर दो उनकी बाकी विशेषताओं को
1: और बोल दो अरे यार तुमने खुद आके बोल दिया सॉरी वेरी गुड,
0: वो तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन। और दूसरा कि आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आप जो काम करते हैं वो इतना एक्यूरेटली करते हैं, एक ये वाली संस्कार है विच फॉर यू आई फील यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने इस एक संस्कार पे वर्क करें, क्योंकि चलते चलते आपको इस संस्कार के साथ हो सकता है प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपने एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर इंस्ट्रक्शन भी दिया एंड ये भी हो सकता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन को आपको डिसिप्लिन बनाना पड़े, विच मीन्स देखिए कल से आप लेट या आप एक भी बार अब इसके बाद लेट नहीं आ सकते, अदरवाइज एक्शन।
1: लेट हो गया कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर दो
0: जनरली, मतलब लेट इज वन थिंग बट इट कुड बी लाइक ऑफिस में कोच या कोई भी बात, आप एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी रख सकते हैं उस पर, प्रोवाइडेड राइट एनर्जी दी है। और ये बोलने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उनकी वो गलती चित पर नहीं रहनी चाहिए, दे दी काम खत्म। क्यों चित पर नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि वो नहीं तो अगली गलती के लिए वो वाली बात जो पकड़ के रखी है, एक तो वो रेडिएट करती जाएगी और फिर वो वाली बात नेक्स्ट टाइम फिर बैक रेफरेंस फिर निकल कर आएगी। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, आप ऐसे ही करते हैं, दिस शुड नॉट हैपन, दिस विल क्रिएट दैट अगेन टर्बुलेंट एनर्जी जो फिर सामने वाला उस बात को स्वीकार नहीं करे। तो सिर्फ ये दो बातों का ध्यान रखना है, एक व्यक्ति पे अटैक बिल्कुल नहीं, ऑलवेज

0: keeping in mind Visheshta, purity, lovely soul and with very good qualities. Kuch ek sanskar, lekin very good qualities. Ab ye wali galti. Ab galti ke bare mein bhi jab baat kare, to jo galti ho chuki, uske bare mein baat karna, it's no use. Important, ab aap kya karenge? Aur iske baad se, aage se aap kaise kaam karenge? Focus on how to change the thing. गलती की क्यों, कैसे की, करते क्या हो, समझ नहीं आता क्या. वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, टर्बुलेंट एनर्जी, ये एंगर की एनर्जी है. और असर्टिवनेस, काम जो हुआ गलत हुआ सिर्फ आगे के लिए बात करेंगे. सी एंगर, ये बहुत थिन लाइन है, इसको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा. एंगर पास्ट के बारे में बात करता है हमेशा. एंगर हमेशा पास्ट के बारे में बात करेगा. जैसे आपने उस दिन कहा वो दरवाजा टूट गया कांच का इतना बड़ा, एंगर क्या बोलेगा, इतना महंगा दरवाजा लगवाया था, पहले तो मैंने लगवाने के टाइम ही तुमको बोला था कांच का दरवाजा नहीं लगाओ किचन में, लगाना नहीं चाहिए था, ध्यान से नहीं खोला होगा तुमने, नहीं तो हो ही नहीं सकता कांच का इतना बड़ा दरवाजा टूट जाए. दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जो हो चुका है, जो बीत चुका है. एंगर ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट.
1: ये पॉइंट बहुत अच्छा है.
0: ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट, देन एंगर विल से तुम हो ही केयरलेस, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा. मैंने कितनी बार देखा तुम केयरलेसली ये तोड़ देती हो, वो गिरा देती हो, तो आज दरवाजे को तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम केयरलेस हो. देन एंगर अटैक्स द पर्सन, टॉक्स अबाउट द पास्ट, अटैक्स द पर्सन. असर्टिवनेस, पास्ट के बारे में तो जाएगा ही नहीं, व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेगा नहीं. असर्टिवनेस सिर्फ कहेगा ये ऐसा हो गया है, अब हमें इसको ठीक करने के लिए
1: क्या
0: आपको क्या करना है, एंड आप ध्यान रखेंगे कि आगे से भी ये ऐसा होगा, फुल स्टॉप. एंड यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, यू नो, बच्चा है, स्टाफ है, यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट मेथड विल चेंज, एनर्जी विल चेंज.
1: थैंक यू सिस्टर, आपने फुल स्टॉप कहा लेकिन मुझे अब कॉमा करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक. नमस्कार, थैंक यू, ओम शांति.
2: इफ वी क्रिएट क्रिटिकल थॉट्स अबाउट द अदर पर्सन बट स्पीक वेरी स्वीट वर्ड्स, वी आर स्टिल सेंडिंग देम नेगेटिव वाइब्रेशंस. स्लो डाउन दिस इनर कॉन्वर्सेशन बिकॉज इट ब्लॉक्स आवर नेचुरल एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस एंड लव. Irrespective of the karma that the other person does, always remember they are a pure, beautiful soul. This consciousness keeps our flow of love natural and radiates respect to them. When we have to give a correction for someone's mistake, it has to be given with vibrations of love. Negative energy from us makes them justify their mistake and then not correct it. Anger attacks the person and talks about the past. Assertiveness talks about the mistake and solution for the future.
3: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज. ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल, हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। मैं हूं आपका हम सफर, जी हां सनी, लेकर आया हूं बहुत ही खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम जहां पर आप सुनते हैं 50s एंड 60s के बहुत ही खूबसूरत गाने, वो भी सिलेक्टेड अल्फाबेट से। तो आज हम लोग सुनेंगे डी अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने, और ये कलेक्शन वैशाली ने इन सारे कलेक्शन को कलेक्ट किया है और अपने पिटारे में रखा है। तो उनके पिटारे से हम लोग एक एक करके बहुत ही खूबसूरत डी अक्षर वाले सुंदर गाने सुनेंगे। फासले इतने तो न हुआ करते थे, मैं वही हूँ जिसे तुम अपना कहा करते थे। तुम अगर भूल गए हमको तो कोई बात नहीं, जख्म तो पहले भी इस दिल में लगा करते थे। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आज के इस कार्यक्रम में, बहुत ही खूबसूरत 50s एंड 60s के गाने हम सुनेंगे और ख्वाबों का सफर का बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे आज के शो को। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान वैशाली, आपका बहुत

0: बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ओके वैशाली, बहुत बहुत स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा हमारे जो श्रोता है हर रोज कुछ अलग अलग गाने सुनते हैं, तो 50s एंड 60s का जो कलेक्शन आपके पास है वो भी डी अक्षर का, तो सबसे पहले कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
1: 1968 में रिलीज हुई थी दीवाना मूवी, उसका मुकेश जी का एक रोमांटिक सॉन्ग है, मैं वो लेके आई हूँ। दीवाना मुझको लोग कहें मैं समझू जग है दीवाना, मैं समझू जग है दीवाना।
0: राज कपूर सायरा बानो पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और बहुत ही प्यारा सा मस्ती भरा गीत है। मैं यार की खातिर लुट जाऊं और प्यार की खातिर मिट जाऊं, चलता ही रहूं हर मंजिल पर अनजान से बेगाना होकर। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। दीवाना इस एल्बम से 1968 का ये खूबसूरत गाना आपके लिए खास, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने, मुकेश जी ने गाया था और शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध ये खूबसूरत ओल्ड मेलोडी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, दीवाना मुझको लोग कहे। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि कुछ अच्छी चीजें अगर आप सुनते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में उसका असर होता है, अगर आप कुछ गलत भी सुनते हैं तो उसका भी असर होता है। तो जितनी अच्छी चीजें आप सुनेंगे और अच्छा विचार करेंगे तो आपके जीवन में उसका कहीं न कहीं एक कुमारी रहेगी और उस चीज को आप अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे और लोगों को भी वही चीजें दिखेगी जो आपके अंदर है। तो आइए, कदम यूं ही डगमगा गए, कदम यूं ही डगमगा गए रास्ते में, वरना संभलना हम भी जानते थे, ठोकर भी लगी तो उस पत्थर से जिसे हम अपना मानते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। और वैशाली, कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा है आज के शो में आकर?
1: बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं तो हरफन मौला हूँ, मस्ती में रहता हूँ। और आपने जो कलेक्शन हमारे लिए कलेक्ट किया है ये देखकर मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए, कौन सा एक और गाना आप सुनाने वाले?
1: तीसरी मंजिल मूवी का मोहम्मद रफी जी ने गाया है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं इसको गाती सुनाऊं?
0: हाँ हाँ जरूर।
1: दीवाना मुझसे नहीं थी इस अंबर के नीचे।
0: ओके वैशाली, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा पारेख और शमी कपूर पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गाना, और विजय आनंद साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और जिसका नाम आपने बताया तीसरी मंजिल। जी हाँ, ये गाना जो है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था, राहुल देव बर्मन का संगीत था। तो बहुत ही पॉपुलर मूवी रही उस समय। शम्मी कपूर को इस फिल्म के माध्यम से लोगों ने अच्छी तरह से, एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेता है, ये पहचान उनको मिली। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आप सुनेंगे, दीवाना मुझसर नहीं, जो वैशाली ने गा के सुना। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं और बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप, क्योंकि ये थोड़ा सा मस्ती और चंचल भरा गाना है आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: पीछे पीछे
3: पीछे पीछे पीछे पीछे दीवाना तो नहीं हो गए आप?

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। आइए इस सफर को बहुत ही खुशनुमा बनाते हैं और कहते हैं अपनी तकदीर में तो कुछ ऐसे ही सिलसिले लिखे हैं। किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया तो किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप ख्वाबों के सफर में जो पुरानी 50s एंड 60s के मेलोडीज सुन रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके दिल को छू रहा है। तो आइए अब फिर से वैशाली से पूछते हैं कि कौन सा तीसरा जो गाना है वो थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि अच्छा वाला गीत, यानी कहीं न कहीं हमारे दिल को छू जाए, ऐसी बात उसमें हो। तो मैं चाहूंगा कि वैशाली आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले।
1: एक सॉन्ग है उपकार, जो ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, जो 9 टाइम्स फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट हुई थी और उसे अवार्ड भी मिला था। और ये प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इंस्पायर्ड मूवी है, उसी का एक बेहतरीन सॉन्ग है। दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से पूछो उनके अरमानों पे क्या गुजरी है।
0: वैशाली, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और मनोज कुमार आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत नगमा है और देश प्रेम से ओतप्रोत ये फिल्म थी, जहां पर देश के लिए मर मिटने का जो भावना है इस फिल्म के माध्यम से सभी को कहीं न कहीं ये फील होता है। गीत देखने के बाद या फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम सभी को अपने देश के लिए पूरे ईमानदारी से और पूरे विश्वास के साथ हमें देश के साथ रहना है। तो आइए 1967 का, जैसे आपने कहा, उपकार फिल्म का ये खूबसूरत नगमा है। कुमार जलालाबादी ने इसे लिखा था, मुकेश जी ने इसे गाया था और कल्याण जी आनंद जी का ये खूबसूरत संगीत से सजा हुआ गाना है। और कहीं न कहीं ये हमारे जो लोग जीवन में हम चलते चलते कहीं न कहीं भटक जाते हैं, उनको फिर से रास्ते में लाने के लिए या उन्हें कहीं न कहीं एक दिशा देने की जो भाव है इस गीत के अंदर दिखाई देता है। और बहुत ही प्यारा सा ये गाना है और इसमें लिरिक जो है बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। आशा करता हूँ आप सभी को ये गीत बहुत पसंद आएगा और हम लोग सीधे इस गाने का लुत्फ उठाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर। तो आइए आगे बढ़ते हैं खाबों के सफर में। 50s और 60s के गाने सुनते हैं, लेकिन कुछ पंकज जी के बहुत ही खूबसूरत गजल भी हम सुनते हैं। एक आध गजल आपको सुनाने की कोशिश हमारी जरूर रहती है पंकज दा का। तो आइए, एक पंकज दा का अगर डी से कोई गजल हो तो मैं चाहूंगा वैशाली उसके बारे में जरूर बताइए आप।
1: पंकज दास जी की एक गजल है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अर्ज करूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सी है।
0: जी।
1: कल रात मैंने अपनी सारे गम कमरे की दीवार पर लिख डाले, बस फिर हम सोते रहे और दीवारें रोती रही। सॉन्ग है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है।
0: वैशाली, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद कराया पंकज दा का। मुझे लगता है कि ये गाना जो कहीं ना कहीं हम सभी को मैसेज देता है और हमारे दिल की बात को बयां करता है। इस तरह के हालात सभी के पास आते हैं और लोग इन सभी चीजों को अच्छी तरह से अनुभवी हैं, और सभी के पास इस तरह का सिचुएशन कभी न कभी आ ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्यार जब मिलता नहीं तो होता क्यों है, अगर ख्वाबों में वो आए तो इंसान सोता क्यों है, जब यही प्यार आंखों के सामने किसी और का हो जाए तो दिल इतना रोता क्यों है। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज खाबों का सफर। खुश रहिए, खुशियां बांटिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि पंकज उदास जी जब गाते हैं तो उनकी रेशमी आवाज हर दिल को छू जाती है। आज भी लोग उनको पसंद करते हैं, उनके गाने पसंद करते हैं और उनके गजल तो लाजवाब है, जिसका एक गजल हमने अभी सुना। एंड वैशाली, थैंक यू, बहुत ही प्यारा सा गजल आपने अपने कलेक्शन में रखा है। और आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जीवन के इस सफर में आगे बढ़ना ही जीवन है, पीछे मुड़के कभी नहीं देखना, चलना ही जीवन की निशानी है, ये भी कहा गया है कि रुकना मौत की निशानी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वैशाली, मैं चाहूंगा कि अब अगला गाना आपके पिटाने में कौन सा है, डी अक्षर वाला।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी का गाना है, 1958 में रिलीज हुई मूवी का है। इस गाने से पहले मैं कुछ अर्ज करूं तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा सॉन्ग है। हम कबूल करते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती, हम कबूल करते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती, मगर ये भी जरा सोचो तुम्हें जब याद करते हैं तो जमाना भूल जाते हैं।
0: वैशाली, बहुत ही प्यारा सा जो शायरी है, बहुत ही अच्छा अंदाज में आपने कहा, थैंक यू सो मच।
1: फिर सॉन्ग है, देख हमें आवाज न देना ओ बेदर्द जमाने, आज चले हम छोड़ के दुनिया नहीं बसाने ओ बेदर्द जमाने।
0: देवानंद और वैजंती माला पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना है। आइए इस गाने का लुफ्त उठाते हैं, जिसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था, आशा और रफी साहब ने इस गाने को गाया था, सी रामचंद्र ने इसको संगीत से सवारा था और फिल्म थी अमरदीप 1958 का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आशा करता हूँ आपको बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हुए चंद लाइनें आपके नाम। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। आइए, वैशाली बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपके पिटारे में है 50s एंड 60s का। तो अब कौन सा गाना आपके पिटारे में है?
1: लिखता है 1963 में रिलीज हुई थी मूवी किनारे किनारे, तलत मामूजी का एक सैड सॉन्ग है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पोइट्री ऐड कर लूँगी। अनकहे अधूरे लफ्जों का बयां हूँ, मुकम्मल नहीं मगर दास्तां हूँ। मैंने हंसकर जिंदगी उसके कदमों में क्या रख दी, उसने पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। रोंद कर वो मुझे इतना आगे बढ़ गया जैसे मैं कोई रास्ता हूँ। मैं लोगों का दर्द लिखती हूँ अपनी कलम से, मैं तमाम शहर की जुबां हूँ। आपने मुझे बाहर से कैसे जज्ब किया, मेरे दिल में देखिए मैं क्या हूँ।
0: बहुत ही अच्छी कविता आपने हमें सुनाई, आपकी खुद की लिखी हुई शायद है ये। थैंक यू।
1: अरे सॉन्ग के लिरिक्स इस तरह से हैं, देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया, तेरी रहमत छुपी रही और मैं रोते रोते मर गया।
0: बहुत ही प्यारा सा लिरिक्स है गाने का। आशा करता हूँ ये भी शायराना अंदाज की तरह ही आपने लिरिक्स को बताया। और आइए तलत महमूद जी का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना, जयदेव जी का संगीत, किनारे किनारे 1963 का खूबसूरत गाना आप सबके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे गीत वैशाली के कलेक्शन को आप सुन रहे हैं। तो आइए, रुला गई आज वो आके फिर मुझे, दर्द में डूबा एक शख्स नजर आ गया, मैं तो हंस के हर गम भुला देता था, वो मेरी हंसी को ही चुरा गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर और आज के शो में मेरे साथ वैशाली है, जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गाने और कुछ कविताएं सुना रही हैं। तो वैशाली, अब कौन सा गीत आपके पिटारे से आप निकाल रही हैं?
1: नेक्स्ट सुपरहिट सॉन्ग है प्यार ही प्यार का। ये एक्चुअली इस मूवी के अंदर, मतलब कि जब कोई प्रेमी प्रेमिका की आंखों में देखता है तो उसके लिए प्यार ही प्यार दिखता है, उसकी बातों में उसके लिए प्यार ही प्यार दिखता है। जो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है तो वो इस गाने के जरिए डिस्क्राइब की गई है। तो इसके लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। आशा करता हूँ ये पूरे एपिसोड में ये गाना जो है शायद सबके दिल को धड़काने वाला है। धर्मेंद्र वैजयंती माला पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत नगमा, जैसे आपने बताया 1969 का प्यार ही प्यार इस एल्बम से। हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत से सराबोर ये खूबसूरत नगमा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को कहीं न कहीं ये गाना सुनते ही आपके दिल में खुशी की धड़कनें बजने लगे। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आशा करता हूँ सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दिल का है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। शायद इस लिरिक्स को सुनकर सभी प्रेम करने वाले लोग जो है खुशी से उछल पड़ते होंगे, और ऐसा ही हुआ होगा। अगर आपके दिल में भी प्यार है तो आप भी खुशी से झूम रहे होंगे और इसी तरह झूमते रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि वैशाली अब कौन सा गीत आपके पिटारे से आप निकालने वाली हैं।
1: नेक्स्ट सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आजा भोसले जी ने गाया है, बॉम्बे का बापू मूवी से है, 1968 में रिलीज हुई थी। ये सॉन्ग मैं आपको गा के सुनाती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा।

ओके, वैशाली, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है, और इसका म्यूजिक, इसका लिरिक्स कहीं न कहीं ये रिदम में बैठा हुआ है जो हमारे दिल को छू जाता है। कहते हैं कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है और हम थक गए दर्द छिपाते छिपाते। आप सुने हैं रेडियो पुडी की आवाज। वैशाली, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, और ये सुचित्रा सेन और देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था, राज खोसला का ये फिल्म था, और इस गाने को जो है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, आशा भोसले ने इस गाने को गाया था, सचिन देव बर्मन का खूबसूरत म्यूजिक इसमें है, बम्बई का बाबू 1960 का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो बूंदी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, बम्बई का बाबू, इस एल्बम से बहुत ही प्यारा सा जो मस्ती भरा गीत है, जिसमें एक मेहमान जब हमारे घर पे आता है उसके साथ जो मस्ती प्यार दिखाने का एक अलग अंदाज इस गाने में हमने देखा है, तो आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। एंड वैशाली, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आपके पिटारे से निकला। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि अब आगे कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं।
1: लास्ट गीत क्लासिकल सॉन्ग है। जैसे हमारी संस्कृति से कोई भी चीज जुड़ी हुई होती है, चाहे वो सॉन्ग हो या फिर कुछ भी, तो वो बहुत स्पेशल हो जाती है हमारे लिए। तो ये सॉन्ग भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो ये भी बहुत स्पेशल है सब लोगों के लिए। तो ये आशा भोसले, उषा मंगेशकर जी ने गाया है, फिर वही दिल लाया हूँ मूवी से। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, छम छम छम के माथे की बिंदिया, छन छन बिन पायल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के।
0: के वैशाली, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है। ये बहुत ही प्यारा सा म्यूजिकल सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सा गाना है, और आशा भोसले उषा मंगेशकर ने इसे गाया था। ओपी नैयर साहब का संगीत, फिर वही दिल लाया हूँ 1963 का ये खूबसूरत एल्बम है, और इस फिल्म से ये गाना है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था और आशा पारे, नासिर हुसैन पर पिक्चराइज किया गया था। जी हाँ, चलिए अब आखिरी गाना है, तो मैं चाहूंगा कि वैशाली, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू वैशाली, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करते हुए, और आपका ये कलेक्शन भी बहुत ही जबरदस्त।

था। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते चार लाइनें आपके लिए और ये खूबसूरत नगमा आपके नाम। हर गम की दवा नहीं होती, क्या होता जो दुआ नहीं होती। बेखौफ लोग तोड़ देते हैं दिल ये सोचकर कि इस जुर्म की कोई सजा नहीं होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। इसी के साथ मुझे और वैशाली को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुशियां बांटिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारी सी बातें आप सुन रहे हैं। एक साहित्यकार की प्रेम कहानी। जी हाँ, अमृता से कोई रिश्ता निभाने का वादा न दुनिया के सामने किया और न ही उनसे कोई कमिटमेंट किया, मगर फिर वह भी अमृता के बेहद दीवाने थे साहिर जी, और उनके गीतों में उनकी भावनाएं हमेशा महसूस की जाती थी। अमृता के लिए साहिर उनका भी इजहार उनके सामने नहीं कर पाते थे, तो वो सारा इश्क उनके गीतों में समा गया और उन्होंने फिल्मी दुनिया को बेहद दिल को छू लेने वाले गीतों से समृद्ध किया। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मशहूर थे और साहिर उर्दू में लिखे थे तो अमृता पंजाबी में लिखे थे। जी हाँ, लेकिन उनके प्यार के बीच मजहब या भाषा की कोई भी नहीं दीवार, ये अमृता बताती है। वैसे अमृता देखने में बहुत खूबसूरत थी और साहिर देखने में औसत दर्जे से भी कम, मगर जनाब ये इश्क सब कहाँ देखता है।
1: दिल तो बस एक ही जुबान समझता है, मोहब्बत मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत।

क्योंकि कहीं ना कहीं खालीपन तो इंसान को सौंपता ही है, क्योंकि 24/7 ना तो लिखा जा सकता है और ना ही सोचा जा सकता है। ऐसे कितने ही लम्हे, कितने ही मौसम अमृता ने साहिर के बगैर गुजारे होंगे। शायद कहीं ना कहीं उनके मन की स्थिति में ये बातें जरूर आती रही होंगी। तो जो बातें इनके मन की स्थिति में आती होंगी कोशिश की है, चलिए उसी से रिलेटेड हम आपको एक गाना सुनवाते हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार इस हरी खुशियों के साथ। अमृता, प्रीतम और साहिर की बात हम जब करते हैं तो निश्चित तौर पे दोनों ने मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान लिखी है। ऐसे ही न जाने कितने बरस गुजर गए तो श्रोताओं, जिंदगी में वो लम्हे जो खट्टे मीठे कुछ कड़वे होते हैं, जो हमें जिंदगी के तजुर्बे से मिलते हैं, तो उन्हीं से कोई शायर और कोई लेखक बन जाता है। लेकिन ये सब हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ऐसे लोग बहुत ही चुनिंदा होते हैं, सिलेक्टेड लोग होते हैं।
1: कहते ही एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो साहिर को फोन करके पूछती हूँ, क्योंकि वह हमेशा के लिए साहिर के साथ एक हो जाना चाहती थी कि चलो अब मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना है। तो उसके बाद जब वो घर से निकली और फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ की तरफ जाती है, तो वहाँ एक शॉप कर उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर में साहिर और सुधा मल्होत्रा के इश्क की चर्चा है। जब फ्रंट पेज पर उनकी नजर पड़ती है तो बहुत टूटे दिल से और भरी आंखों से वो घर वापस आ गई। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत खूबसूरत गजल।

0: जी हाँ साथी,
1: बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनी।
0: इमरोज अमृता की जिंदगी में बहुत तेज से आए। अमृता को अपनी किताब आखिरी खत के कवर पेज के डिजाइन के लिए एक चित्रकार की जरूरत थी। वो चित्रकार सेठी से मिली और कहा कि आप ये मेरा कवर डिजाइन कर दीजिए। चित्रकार सेठी ने कहा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो ये काम मुझसे बेहतर कर सकता है। और उन्होंने अमृता से इमरोज को मिलवाया। उस जमाने में इमरोज क्षमा पत्रिका में जो उर्दू की निकलती थी उसमें काम किया करते थे। इमरोज ने उनके कहने पर किताब का कवर डिजाइन किया। अमृता को डिजाइन भी पसंद आ गया और आर्टिस्ट भी।
2: तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। अमृता इमरोज से उम्र में बड़ी थी और इमरोज उनके साथ जब उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अपनी मर्जी बताई, तो बोली कि अरे पहले दुनिया तो घूमो, अच्छी तरह से देख लो, अगर फिर भी तुम्हारा इरादा मेरे साथ रहने का है तो मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगी।

उनकी ये बात सुनने के साथ ही इंदौर ने उनके कमरे के साथ चक्कर लगाए तो बोले लोग घूमने के लिए। इस तरीके से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। उस समय अमृता रेडियो में काम किया करती थी और वो बस से सफर किया करती थी। इमरोज जब उनको बस से जाता देखते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने उनके लिए पैसे जोड़ जोड़ कर एक स्कूटर खरीदा और बोले अब आप स्कूटर पर जाया करेंगे। इमरोज एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अमृता के लिए इतना कुछ किया कि शायद हम और आप लोगों की सोचे से भी परे की बात है। तो इस तरीके से उन्होंने जब स्कूटर पर जाना शुरू कर दिया तो अमृता स्कूटर पर इमरोज के साथ पीछे बैठती थी और उनकी उंगलियां इमरोज की पीठ पर साहिर और साहिरी लिखा करती थी। तो इमरोज को अमृता की इस बात से कोई गिला ही नहीं होता था क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ अमृता के लिए ही बने थे और उनको किसी परेशानी में कभी देख ही नहीं सकते थे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक बहुत खूबसूरत दिल को छू लेने वाली गजल।

0: जी हाँ साथियों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी गजल सुनी।
1: आइए बात कर रहे थे हम लोग अमृता प्रीतम की जीवन कहानी के कुछ किस्से आपको सुना। अमृता को रात के सन्नाटे में लिखने की आदत थी, ताकि रात में उनका कोई फोन या कोई शोर डिस्टर्ब ना कर सके। तो इमरोज ने रात को 1 बजे उठना शुरू कर दिया। वह उनके लिए चाय बनाते और वे बेआवाज उनके पास रख कर वापस आ जाते थे। अमृता लिखने में इतनी मशगूल होती थी कि देखती भी नहीं थी। तो ये सिलसिला 40-50 वर्षों तक लगातार चला, जहां शाहिर उनकी चाहत को कोई नाम न दे सके, वहीं इमरोज ने हर पल, चाहे समाज हो या कोई और, इश्क के हर इम्तिहान को 100% पास किया। जब वह संसद में मनोनीत की गई, तो वह उनको छोड़ने जाते थे और घंटों बाहर बैठकर उनका इंतजार करते रहते थे। तो लोग उनको अमृता का ड्राइवर समझते थे। पार्टी होती थी तो भी वो गाड़ी लेकर उनको छोड़ने जाते थे। जब लोगों को मालूम चला कि अमृता का बॉयफ्रेंड है, तो उनको भी इनवाइट करना शुरू कर दिया।
2: अमृता ने एक ही वाक्य में साहिल और इमरोज को बयां कर दिया। वो बोलती थी कि साहिल मेरा आसमान है और इमरोज मेरी छत। हालांकि छत तो आसमान में ही होती है, मगर क्या कमाल इश्क था इमरोज का कि उनके लिए इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ अमृता को ही चाहते थे और चाहते ही चले गए।

क्योंकि इमरोज बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, तो एक बार गुरुदत्त जी ने उनको उनकी ही शर्तों पर काम करने के लिए मुंबई बुलाया। जब इमरोज ने अमृता को ये बताया तो अमृता सत्ते में आ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इमरोज उनको छोड़कर नौकरी करने मुंबई जा सकते हैं। वो बोले, इमरोज मेरे पास जिंदगी के 3 ही दिन बाकी है और मैं इन 3 दिनों को जी भर कर तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। वो दोनों बहुत घूमे फिरे, वह सब कुछ किया जो अमृता के दिल ने चाहा। जब वो मुंबई चले गए तो अमृता को बहुत तेज बुखार हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वे इतनी तन्हा हो जाएंगी, और अकेले जिंदगी बिताने का तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वह अकेलेपन और बेचैनी से सही नहीं जा रही।

0: और जब इमरोज को ये मालूम चला कि अमृता बहुत बीमार है तो वो तीसरे दिन ही अपनी बेहतरीन नौकरी छोड़कर दिल्ली वापस आने लगी। उन्होंने अमृता को तार दे दिया कि वो वापस आ रहे हैं, तो अमृता उन्हें लेने रेलवे स्टेशन गई और इमरोज को देखते ही उनका सारा बुखार उतर गया और उसके बाद इमरोज फिर कहीं नहीं गए, हमेशा के लिए अमृता के साथ ही रहे। और आखिर में जब अमृता के कुल्ले की हड्डी टूटी तो वो बहुत दर्द में रही, मगर इमरोज ने उनके लिए वो सब कुछ किया जिसकी शायद कभी अमृता ने उनसे उम्मीद भी नहीं की,
1: और वह अंतिम सांस तक उनका सहारा बनकर रहे। तो रमेश जी, यहाँ मैं अपनी तरफ से इमरोज के लिए सिर्फ एक ही शब्द बोलना चाहती हूँ, जानते हैं वो क्या है?
0: नहीं।
1: वो है पानी। पानी जैसे रंग में मिलाने से और रंग हो जाता है, इसी तरीके से क्योंकि इमरोज वैसे भी आर्टिस्ट थे, वो अमृता के साथ इतने इस तरीके से हर सांचे में ढल गए कि ये इनके प्यार का कमाल ही कहूंगी मैं। उन्होंने किसी तरह से कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कोई सिर्फ उनके साथ उनकी मर्जी के साथ वो जीते चले गए। तो है ना श्रोताओं, इस प्रेम कहानी का कमाल।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वंदना जी, आशा करूंगा अमृता और इमरोज की कहानी, जैसे आपने कहा पानी का उदाहरण देते हो, पानी जहाँ जिस रंग में मिला दो वैसा रंग पानी ले लेता है, तो अमृता के लिए उन्होंने जैसा लगा अमृता को जहाँ जरूरत है वो वैसे ढलते। तो श्रोताओं, ये प्रेम कहानी आपको पसंद आया होगी और कहते हैं आपको भी कहीं ना कहीं दिल को जरूर छुआ होगा इन दोनों की कहानी। जी हाँ, और है भी इसी दुनिया की और बहुत पुरानी कहानी नहीं है।
1: हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत रहे थे इमरोज अपने में और बहुत अमृता से ज्यादा समय अर्न किया करते थे, लेकिन कहीं भी उनके अंदर कोई मैं ही नहीं था। जितनी भी हमने हालांकि उनकी लाइफ की बहुत ही छोटी छोटी स्टोरी शेयर करी है, समझ सकते हैं इतने सालों तक दोनों साथ रहे, लेकिन कहीं उनके अंदर मैं था ही नहीं। उनकी लाइफ में थी तो सिर्फ अमृता और एंड तक भी वही उनकी जिंदगी में रही। तो है ना चाहती कितनी खूबसूरत और अनोखी कहानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अनोखी कहानी आपने बताया और कैंडल लव स्टोरी की जो सुंदर प्रेम कहानी अमृता साहिब फिर एम्ब्रोज, तो बहुत ही अच्छा एक जो है प्रेम कहानी यहाँ बयां होती है। और वंदना जी, जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अमृता प्रीतम की ये कहानी, साहिब जी ने और अमृता जी की प्रेम कहानी ने इन दोनों को अलग कर दी है, लेकिन उन दोनों का मिलना या प्रेम दुनिया को समृद्ध कर गया। एक तरफ अमृता प्रीतम की जो लेखक है वो पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया, दूसरी तरफ शाहिर की जो प्रेम कहानी अमृता थी उन्होंने हिंदी गीतों में उनका प्रेम का जिक्र करके हिंदी फिल्मों की दुनिया में गीतों का एक समृद्ध गाने हैं, गीत है वो देखकर तो फिल्मी दुनिया को और साहित्य दुनिया को जो है दोनों का प्रेम का एक हिस्सा जो है समृद्ध कर गया, ये बहुत बड़ी बात।
1: और दूसरी बात, अमृता हमेशा इमरोज को बोला करती थी, इमरोज तुम मेरी जिंदगी की शाम में तुम मुझे क्यों मिले, मिलते तो जिंदगी की दोपहर में मिलते। ये बहुत प्यारी सी उनकी पोएम है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि समय हमें इतनी जरूरत नहीं दे रहा है आपको पढ़कर बताएं, तो आप ये पढ़ सकते हैं इसमें इनके बारे में। और उनके जाने के बाद इमरोज बोलते थे अमृता कहीं नहीं गई है, वो यही है मेरी पेंटिंग में, मेरी यादों में। और इस तरीके से जो अमृता की एक बहुत मशहूर पोएम है जो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज जरूर, मैं तैनू फिर मिलूंगी। तो दोस्तों, इस प्रेम कहानी में आपके दिलों में न जाने कितने चाहत के रंग बिखेरे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की हमारी प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको छोड़ जाते हैं बहुत ही खूबसूरत लोगों के साथ।
0: चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, नमस्कार।

पुनरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंदी लुटा।
1: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि

0: का सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। अब हम आपके लिए

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छी मानसिकता के साथ खुशी अनुभव करते हुए इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए आज एक नए करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते काफी अलग अलग विषय को लेकर आर्ट्स के बारे में बातें की थी, कलाकार के बारे में बातें की थी, आइए आज हम बात करेंगे एक शोधकर्ता के बारे में। जी हाँ, आप अपने जीवन में एक शोधकर्ता कैसे बन सकते हैं, एक रिसर्चर कैसे बन सकते हैं, इस विषय को लेकर आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आशा करूंगा हम जिस भी विषय को लेकर आते हैं और आप सभी को उन विषयों के बारे में गहरी जानकारी भी हो और आप उसे कैसे अपना सकते हैं, इस विषय में भी हम बात करते रहते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि हमारी जरूरत है और इस करियर के बारे में या किसी विकल्प के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं 9414092245 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आपको अलग विषय या इस विषय पे जानकारी चाहिए तो हम उसे अपने इस सीरीज में कहीं ना कहीं आपको जोड़ना चाहेंगे। अगर आप कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तब भी आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात किस विषय पर रखना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं ताकि हम उस विषय के अंतर्गत आपको जोड़ सकें। तो आइए शोधकर्ता के बारे में बातें करते हैं। शोधकर्ता के रूप में करियर बनाना एक चुनौतीपूर्ण जरूर है पर फायदेमंद विकल्प है जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में नया ज्ञान उत्पन्न करने या समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करता है। इसीलिए आपको टाइम जरूर लगता है लेकिन लोगों को आपका अनुभव, आपका सलूशन जो है काम करने लग जाए तो फिर आप रातों रात सितारे बन जाते हैं, चमक जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सुंदर जो है शुरुआत में चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है लेकिन एक बार आप रिसर्चर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे जो है सम्मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए एक शोधकर्ता के मुख्य कार्यों में क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो एक अध्ययन जरूरी है, अध्ययन की योजना बनाना। दूसरा है डेटा संग्रह और विश्लेषण, ये दोनों चीजें आती हैं। फिर तीसरा आता है निष्कर्ष और साझा करना और आखिरी में आता है परियोजना प्रबंधन को अंजाम देना। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ जुड़ी हुई है। अगर एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट रिसर्चर बनना चाहते हैं, शोधकर्ता बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इन मापदंडों के साथ अपने जीवन को या अपने ज्ञान को उतारना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। तो आइए इसके लिए कौन से स्किल या फिर क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे और ये जो चार बातें इसको गहराई से भी समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके मोटिवेशन के लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें चुनौती शुरुआत में है, लेकिन बाद में सफलता और रातों रात आप सितारे बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन भी है, और आजकल रिसर्च के लिए काफी जो है सरकार की तरफ से और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी बहुत ज्यादा जो है ऑप्शंस खुले हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक शोधकर्ता के लिए क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, किस तरह के स्किल्स कौशल की जरूरत है और किस तरह की पढ़ाई आपके पास होना चाहिए। आमतौर पे इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको बैचलर की डिग्री होना जरूरी या फिर मास्टर्स की। कई विशेषज्ञ अनुसंधान भूमिकाओं में, विशेष रूप से एकेडमिक या उन्नत उद्योग अनुसंधान में, डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त करते हैं और ये भी बहुत जरूरी होता है। दूसरी, अपनी रुचि के क्षेत्र में गहन ज्ञान, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यवसाय प्रबंधन, ये सारी चीजें इसमें बहुत मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है। कौशल की बात करें तो आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल, जानकारी का मूल्यांकन करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये कहाँ काम आ सकता है, किस समस्या का समाधान कर सकता है, इस तरह की सोच विचार आपके अंदर आनी चाहिए, इस तरह का विचारधारा जरूर होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है आपको एक शोधकर्ता की। कौशल में एक और बात आता है जहां पर आपकी जिज्ञासा और समर्पण भाव बहुत काम करता है। नए विचारों की खोज और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगे रहने की स्वाभाविक इच्छा, ये आपको शोधकर्ता बनने में आगे बढ़ा सकता है। संचार कौशल, ये अपने शोध निष्कर्षों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता भी बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपके अंदर एक शोधकर्ता के रूप में होना चाहिए। नैतिक व्यवहार सबसे मूल बात है, जब इन सारी चीजों को आप कर लेते हो तो इसमें अभिमान या अहंकार नहीं होना चाहिए, नैतिक व्यवहार होना चाहिए। अनुसंधान के दौरान उच्च नैतिक मानकों और गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी, और ग्राउंड से हमेशा जुड़े, धरती पर रहे, ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब आदमी कुछ बन जाता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को अलग महसूस करने लगता है और उस अलग होने की वजह से फिर वो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। इसलिए हमें अपने जमीन से जुड़े रहना है, अपने मूल्यों से जुड़े रहना है, स्वाभाविक मानवता के गुणों को हमेशा अपने साथ रखना है, तो ये बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब वो कुछ बन जाते हैं तो फिर वो हमेशा जो है, हो सकता है कि आपको अपने कंपनी में काफी सम्मान मिलता होगा, आपका बड़ा ऑफिस, ये वो सब चीजें आपको मिल रही होगी, आपके आसपास में 10-12 लोग जो है आपके आज्ञा को पालन करने के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं, लेकिन वही चीजें आप जब शहर में आते हो, रास्ते पर कहीं जा रहे होते हो या आप कुछ खरीदी करने जाते हो, शायद हो सकता है वहां पर आपको कोई पहचान नहीं होगा या कोई पहचानता नहीं होगा, तो तब आप जो है वहां पर एक सिंपल ह्यूमैनिटी की तरह, आप साधारण व्यक्ति की तरह ही पेश आना जरूरी है। अगर वहां पर ये सोचेंगे कि यहाँ मुझे वही सम्मान ऑफिस वाला मिले तो गड़बड़ हो जाए। कई बार ये हमारी मानसिकता की प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं वही सराउंडिंग हम अपने पास हमेशा देखना पसंद करते हैं, तो वो मुश्किल कर देगा। तो वही आगे बढ़ते हैं, ये नैतिक व्यवहार की बातें मैं दोनों तरह से आपको बताया है कि आप अपने जगह पर जब सीट पर स्टेट हो तो वहां पर कैसी चीजें हैं, और जब आप अपनी सीट से अलग होकर अपने घर या मार्केट में होते हो तो वहां पर सिचुएशन अलग होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अब एक एक जो विकल्प है उसके बारे में बात करते हैं। अध्ययन की योजना बनाना, शोध के उद्देश्य और मापदंडों को निर्धारित करना, इसके कुछ उदाहरण जरूर देख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो इस बात का कि ये क्या है और कैसे इसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अध्ययन की योजना बनाने के लिए शोध के उद्देश्य और मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। इसमें शोध समस्याओं को परिभाषित करना,

स्पष्ट शोध प्रश्न पूछना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित कर विश्व एक योजना विकसित करना शामिल है। अब देखिए स्मार्ट बोलते हैं विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त करने योग्य प्रासंगिक और समय सीमा वाले बनना बहुत जरूरी है और शोध के दायरे में निर्धारित करने वाले मापदंडों को परिभाषित करना ये आवश्यक है। अब बात करते हैं समस्याओं को परिभाषित करें। सबसे पहले शोध समस्या का स्पष्ट और विस्तृत तरीके से परिभाषित करें। दूसरा है शोध प्रश्न विकसित करें। उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट शोध प्रश्न पूछें। स्मार्ट उद्देश्य बनाएं। उद्देश्यों को विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त करने योग्य प्रासंगिक और समय सीमा वाले होने चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट भाषा का उपयोग करते हुए परियोजना के लक्ष्य परिभाषित करें ताकि यथार्थवादी लक्ष्य तय किया जा सके और कार्य को विभाजित किया जा सके। उसके बाद आता है मापदंड निर्धारित करना। शोध की सीमा निर्धारित करें। ये तय करें कि अध्ययन में क्या शामिल होगा और क्या नहीं। जनसंख्या और मापदंडों को परिभाषित करें। ये निर्धारित करें कि शोध किस जनसंख्या समूह समाज आयु वर्ग पर लागू होगा और किन मापदंडों को उपयोग किया जाएगा। मापने के तरीके भी तय कर सकते हैं आप। ये तय करें कि अवधारणाओं को मापा जाएगा या नहीं, मात्रात्मक या गुणात्मक होगा, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। मानदंडों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। जैसे उन मानदंडों को परिभाषित करें जिनके द्वारा आप अपने परिणामों का मूल्यांकन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। योजना बनाने के अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये भी हो सकते हैं कि साहित्य समीक्षा मौजूदा शोध का अध्ययन करें और उन अंतरालों की पहचान करें जिन्हें आपका अध्ययन पूरा करेगा। परिकल्पना की बात करें तो एक परिकल्पना विकसित करें जो आपके शोध के परिणाम का एक आरंभिक पूर्व अनुमान है। संसाधन समय वित्तीय संसाधनों और उपलब्ध धन पर विचार जरूर करें। फिर तैयारी एक शोध योजना टेम्पलेट बनाना और उसका उपयोग करना समय बचाने और एक रूप सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। तो है ना कमाल की बात। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों पर गहराई से जब चिंतन मनन करेंगे तो एक अच्छे रिसर्चर आप बन सकते, एक अच्छा शोधकर्ता आप बन सकते हैं। तो आइए थोड़ी देर में और हम लोग जो अन्य विषय है डेटा संग्रह और विश्लेषण, इस विषय को लेकर भी गहराई से आपसे समझने समझाने और जानने की कोशिश करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। डेटा संग्रह और विश्लेषण में विभिन्न तकनीकों जैसे प्रवाह, प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन का उपयोग करके जानकारी एकत्र करना और फिर उसका विश्लेषण करना शामिल है। और ये नेचर एक अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता का होना जरूरी है। इसके लिए पहले व्यवस्थित रूप से डाटा कलेक्शन करना है और विश्लेषण के लिए उसे साफ और व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें त्रुटियों को ठीक करना और डेटा को वर्गीकृत करना शामिल है। तो ये जो है आपको काम करना पहले से होता है। जब आप किसी डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या कमियां हैं और वो अलग अलग वर्गीकृत हो, ताकि उसके लिए आसानी से प्रश्नावली भी बन सके और स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा हो सके। तो डेटा संग्रह तकनीक के लिए अगर बात करें तो पहला है आपका प्रश्नावली, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है अवलोकन और फिर अन्य चीजें इसके साथ में जोड़ सकते हैं। तो प्रश्नावली में इसमें पूर्व निर्धारित सवालों का उपयोग किया जाता है, जो बंद अंत वाले हाँ

नहीं, यहाँ बहुविकल्पी या खुले अंत वाले व्यक्तिगत उत्तर हो सकते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न मात्रात्मक डेटा के लिए और खुले अंत वाले प्रश्न गुणात्मक डेटा के लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा, जब साक्षात्कार की बात करें तो ये एक व्यक्तिगत संरचना प्रक्रिया होता है जहां एक शोधकर्ता मौखिक रूप से प्रश्न पूछता है और जो रिसर्चर है या जो प्रत्युत्तरदाता है उत्तर देता है। इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार, फोकस समूह या विभिन्न प्रारूपों का उपयोग हो सकता है। अवलोकन की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष या सहभागी विधियों का उपयोग करके किसी घटना या विषय का अवलोकन किया जाता है और जानकारी एकत्र की जाती है। आखिरी में अन्य तरीके ये है, इसमें दस्तावेज और रिकॉर्ड का अध्ययन, सर्वेक्षण, प्रयोग और केस स्टडी जैसे विधियां भी शामिल है। डेटा का विश्लेषण, डेटा सफाई, डेटा एकत्र करने के बाद विश्लेषण से पहले उसे साफ करना महत्वपूर्ण है ताकि कोई त्रुटि, विसंगति या अनुपलब्ध मान न रह जाए। डेटा संगठन की बात करें तो सफाई के बाद डेटा को व्यवस्थित किया जाए, जिसमें डेटा को लेबल करना या उसको डिवीजन वाइज करना शामिल हो सकता है ताकि इसे विश्लेषण करना आसान हो सके। फिर आता है विश्लेषण के प्रकार। विश्लेषण के तरीके उपयोग किए गए डेटा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो घटना क्रिया विज्ञान विश्लेषण जैसी विधियां साक्षात्कार के गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। एक रिसर्चर को इस विधि से डाटा कलेक्शन करना और फिर उसका डिवीजन और साफ सफाई करके विधिवत चीजों को एकत्रित करना है। समझ गए ना आप? तो यहाँ पर आखिरी में आता है दो और विकल्प, जैसे कि एक बात यहाँ पर आता है कि निष्कर्ष। जब आप निष्कर्ष पर आते हैं तो निश्चित तौर पे आप किस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अब बात करें, निष्कर्ष को साझा करने के अलग अलग तरीके होते हैं और इसमें आप रिपोर्ट, शोध पत्र या प्रस्तुतियों को उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सारांश प्रस्तुत करना होता है, थीसिस की पुनः पुष्टि करना और परिणामों के महत्व और उस पे चर्चा शामिल है। इसमें प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको नई जानकारी प्रस्तुत करने से बचना चाहिए, बल्कि अपने शोध प्रश्न से सीधे तौर पर जुड़े तर्कों को और साक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट और शोध पत्र, अपने शोध को संक्षेप में प्रस्तुत करें, अपने शोध के मुख्य बिंदुओं, तर्कों और निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करें, थीसिस की पुनः पुष्टि करें, अपने मूल शोध कथन को दोहराएं, लेकिन अपने लक्ष्यों के आधार पर इसे फिर से लिखें, न कि कॉपी पेस्ट करें। मुख्य अंतर्दृष्टि और निहितार्थों पर जोर दें, स्पष्ट करें कि आपके निष्कर्षों का क्या मतलब है। तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखने वाली ये है कि अपने शोध को बहुत शॉर्ट और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, अपने शोध के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें, तर्कों पर और निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करें। दूसरा, थीसिस की पुनः पुष्टि करें, अपने मूल शोध कथन को दोहराएं, लेकिन अपने लक्ष्यों के आधार पर इसे फिर से लिखें, ना कि कॉपी पेस्ट करें। तीसरा है मुख्य अंतर्दृष्टि और इनके जो बेनिफिट्स है उस पर जोर दें, जैसे स्पष्ट करें कि आपके निष्कर्षों का क्या मतलब है और उनके व्यापक अर्थ क्या है। केवल प्रासंगिक डेटा साझा करें, केवल उन डेटा और निष्कर्षों को शामिल करें जो अध्ययन के लक्ष्य से संबंधित है। आखिरी में भविष्य के लिए सुझाव दें, भविष्य के शोध के लिए सुझाव दें या पाठक को किसी विशेष मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। लिखित और विजुअल सामग्री का उपयोग अवश्य करें। निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए टेक्स्ट के साथ साथ कुछ चित्रों का, ग्राफिक्स का, अन्य विजुअल्स का उपयोग कर सकते हैं। लॉजिकल और स्पष्ट संरचना का पालन करें। परिणामों को शोध प्रश्नों के आधार पर तार्किक रूप से प्रस्तुत करें। तीसरा है, बहुत ज्यादा संक्षिप्त परिचय रहे, लंबी और बहुत सारा जो है सारांश ज्यादा रहे इसमें,

विस्तृति क्या कह सकते हैं, डिटेल्स इसमें ज्यादा ना हो, समय लंबी और सी जानकारी देने के बजाय मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें ताकि दर्शक विचलित ना हो और उन्हें आपका प्रोजेक्ट ठीक से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो ये जो बातें हैं कई बार मैंने रिपीट किया है ताकि, क्योंकि ये रिसर्चर की बात होती है, एक शोधकर्ता इसी तरह से अपना काम करता है, हर बात को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन से चार बार विचार करके करता है, हर एंगल से विचार करता है, चारों ही तरफ विचार करके उस चीज को प्रेजेंट करता है ताकि कोई कमी उसमें ना रहे। तो है ना कमाल की बात, शोधकर्ता बनते ही आप रातों रात सितारे बन सकते हैं। इसीलिए थोड़ा मेहनत जरूर है, लेकिन कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा मीठा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा परियोजना को प्रबंधन करना। अब ये सारी चीजें होने के बाद ये सुनिश्चित करना कि परियोजना आवश्यक मानकों और समय सीमाओं का पालन करती है, तो फिर ये आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार और लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज के इस विशेष शोधकर्ता जीवन कौशल के बारे में हमने बातें की और करियर के अवसर, जैसे कि मैं कहता हूँ करियर के अवसर, जैसे कि शोधकर्ता विभिन्न क्षेत्र में काम कर सकते हैं और वो है शिक्षाविद, एकेडमिक, विद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर या व्याख्यान के रूप में पढ़ाना और शोध करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी संगठन जैसे इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर जैसे बहुत पॉपुलर सरकारी अनुसंधान संस्थाओं में वैज्ञानिक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। तीसरा, निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, निर्माण, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनियों के अनुसंधान और विकास R&D विभागों में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य भूमिकाओं में जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, वित्तीय जोखिम विश्लेषक, संचालन शोधकर्ता या नीति निर्माण में सलाहकार। तो इस तरह से ये सारे विकल्प आपके पास है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका अगर नंबर लग जाता है तो आप हमेशा के लिए आपका करियर और आपका नाम भी हो जाता है। तो आशा करूंगा कि आज का ये विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा, तो जरूर हमें मैसेज करके आप बताइएगा कि आपको ये विषय अच्छा लगा। तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ आप अपने करियर में ऊंचा लक्ष्य रखें, ऊंची करियर उड़ान भरे आप, और अपना और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मना खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
4: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
3: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें एकताएत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्या किया? पाँच से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
1: अच्छा बाबा, लो पाँच से शुरू करती हूँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अकेली न जाना।
1: मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना।
0: खुली वादियों
2: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आंखों से दिल में समा आजा रे आजरा लहरा के आजरा आंखों से दिल

पे तो गुजरे कैसे बताऊं आचार्य आज जरा लहरा की आज जरा आंखों से दिल में समा आचार्य आज जरा।

0: जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज़।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो,
2: खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मैनेज करने का जब पूरा तरीका हमने समझा, उसमें जब रिश्तों को देखा तो ये बात समझ में आई कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जब रिश्तों की बात होती है तो उसमें दो लोग तीन लोग शामिल होते हैं और उन पर

0: बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब अध्यात्म या अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी, उसको समझते हुए, खुद को समझते हुए रिश्तों को देखा, तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई और पावर हमारे हाथ में आ गई कि हम हर रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इन्हीं रिश्तों को कुछ और तलाशते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछले कुछ एपिसोड्स को देखते हैं, कुछ कड़ियों में देखें, रिश्तों को हमने एक नई नजर से देखा है कि अब हर चीज मेरे पर्सपेक्टिव से हो गई। यहाँ अगर मैं कहूँ कि पहले मेरा नाम आते ही मुझे लगता था मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन जब हर चीज को ठीक करने की पावर मेरे पास आ गई तो फिर मैं कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ।
1: एब्सोल्युटली। और उसके लिए हमने देखा कुछ एक बातों पर जिस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट वॉज कि रिलेशनशिप को हम अपनी कॉन्शियसनेस में पहले क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रखें कि दूसरे को हम किस दृष्टिकोण से अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने याद रखना है कि नो वन एल्स कैन हर्ट मी,
0: आई हर्ट माई सेल्फ।
1: यू कैन से वॉट यू वॉन्ट बट आई यूज वॉट यू से टू हर्ट माई सेल्फ। नो वन कैन हर्ट मी, आई हर्ट माई सेल्फ। तो हम खुद ही अपने दर्द को क्रिएट करते हैं। कोई और मुझे दर्द नहीं देता है, कोई और धोखा दे सकता है, लेकिन दर्द फिर भी मेरी क्रिएशन है। तो जैसे ही मुझे वो रियलाइज होता तो उसको फिनिश करना आसान हो जाता है। और तीसरा हमने देखा कि सारा दिन में जो हम लेबल्स लोगों को लगा देते हैं, तो लेबल्स लगाकर फिर हम उसमें बहुत सारे बैगेजेस भरते जाते हैं कि वो ऐसे भी हैं, वो ऐसे भी हैं, तो उससे हमारे मन में गिल्ट, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, यू नो, ये सारे बैगेजेस भरते जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी इमोशनल हेल्थ और फिर अगर जल्दी नहीं फिनिश किया गया तो फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के या कम से कम रात को तो जरूर एक बार अपने सारे बैगेज को हल्का करें। तो नेक्स्ट टाइम जब उनको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे,
0: क्लीन हम होंगे, या फिर मैंने क्रिएट किया हुआ होगा। हमने कहा था कि घंटी बजे उससे पहले ही हम एक इमेज क्रिएट कर चुके होंगे कि जैसी इमेज मैं चाहता हूँ, हाउ आई वॉन्ट टू परसीव हिम एक्चुअली।
1: एब्सोल्युटली। एंड उसमें सोल कॉन्शियस, क्योंकि वो जो है जैसे है उनको अगर राइट परसीव करना है तो वो तो एक आत्मा है। अगर लेबल्स के आधार से परसीव करना है तो वो भी सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि वो एक आत्मा है एंड अ प्योर सोल। सो इफ आई वॉन्ट टू हैव द ट्रू परस्पेक्टिव देन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। और एक बार सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर रिश्ता बना तो फिर उसमें तो कोई दर्द की मार्जिन ही नहीं। लेकिन ये सारे जो हमारे औरों के साथ रिश्ते हैं, इनको निभाना, इनको स्मूथ करना, इसमें एनर्जी फ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला रिश्ता किसके साथ क्रिएट करना पड़ेगा? अपने आप के साथ। आई विद माई सेल्फ। आज मेरा सारा अटेंशन इन रिश्तों पर है, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, सब कुछ इज फॉर समवन एल्स, बट डू आई लव माई सेल्फ? क्या मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने से प्यार करती हूँ? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक वो रिश्ता मेरे से नहीं जुड़ा तो औरों के साथ जुड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अपने आप से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
0: हाँ, अगेन यू नो, अपने आप से रिश्ता इन द सेंस, अगर मैं कॉन्शियसनेस पे भी जाती हूँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, आई द सोल क्रिएट्स अ रिलेशनशिप विद आई द बॉडी?
1: नो, दिस इज नॉट आई द बॉडी।
0: हाँ,
1: दिस इज तो माई बॉडी।
0: आई द सोल, आई वो चैतन्य शक्ति, मैं वो चैतन्य शक्ति, किसके साथ रिश्ता क्रिएट कर, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ?
1: नहीं, रोल के साथ भी नहीं रिश्ता। रिश्ता तो अपने आप के साथ, रिश्ता रोल के साथ नहीं, शरीर के साथ नहीं, रिश्ता अपने आप के साथ। वो मतलब क्या, आप देखो आत्मा के अंदर ये ताकत है दैट इट कैन रिफ्लेक्ट ऑन द सेल्फ। हमने पहले भी देखा कि व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्रिएट अ रिलेशनशिप विद यू, वेयर हियर। सिमिलरली व्हेन आई थिंक अबाउट माई सेल्फ
0: आई क्रिएट एन इमेज ऑफ माई सेल्फ। ओके,
1: आई विल क्रिएट अ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। सेल्फ हम यहाँ बोल रहे हैं वो चैतन्य शक्ति को। तो व्हेन आई द सेल्फ reflect on myself, I am a pure soul. This is giving vibrations of purity to myself. You are a pure soul. This is giving vibrations of purity to you. I love you is giving vibrations of love to you. I am a loveful soul is giving vibrations of love to myself. तो इसलिए जब तक मैंने अपने आप को वो एनर्जी नहीं दी तो वो एनर्जी मैं औरों को दे पाऊँ वो पॉसिबल नहीं
0: तो अच्छा ये जो मनन करना कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया
1: कुछ भी अपने बारे में कि ये जो दर्द हुआ ये क्यों हुआ ये दर्द की जिम्मेवार कौन था ये सारा जो अपने आप के साथ जो मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकती हूँ कि आपको दर्द हुआ क्यों हुआ आपके दर्द का कारण कौन चलो कोई बात नहीं ये करने से ये ठीक हो जाएगा सो दिस इज ऑल कम्युनिकेशन विद यू तो जब अपने आप से रिश्ता जुड़ेगा फिर औरों के रिश्ते तो बहुत इजी हो जाएंगे क्योंकि अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ना इज मेडिटेशन What is meditation? Meditation, first stage क्या है Self-awareness. Meditation सबसे पहले क्योंकि हम meditation ये शब्द बार बार कहते आए हैं और हमने बार बार कहा कि हर एक घंटे के बाद meditation, रोज सुबह उठकर meditation, या रात को सोने से पहले meditation. तो meditation का first result जो मुझे मिलेगा वो होगा self-awareness. और self-awareness ये कि मेरी कौन सी thoughts and feelings wrong है कौन सी राइट है मेरे लिए वेरी इम्पोर्टेंट कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है लेकिन उनके लिए देखना तो पड़ेगा ना इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस मुझे ये रियलाइजेशन दिलाती है कि ये थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट भी कौन कर रहा था
0: मैं कर रही थी
1: आज दिन तक क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ तो अपने आप से रिश्ता क्या था मुझे ये ही नहीं पता था कि मैं खुद ही यहाँ बैठ कर क्या क्या क्रिएट कर रहा
0: है इनफैक्ट मुझे अभी तक यही पता था अपने साथी रिश्ता मुझे ये चाहिए मुझे ये तकलीफ दे रहा है मुझे वो व्यक्ति हर्ट कर रहा है मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं
1: क्योंकि मेरा रिश्ता उन सब के साथ था तो मैं उनको देख सकती थी कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं और वो क्या क्या दे रहे हैं मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ वो देखने के लिए तो मुझे अपने तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा सेल्फ अवेयरनेस मतलब यू नो गोइंग थ्रू द डे विद दिस अवेयरनेस कि ये सारी जो थॉट्स और फीलिंग्स है ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऑफिस में बहुत बड़ा केओस हो जाए काम नहीं हो रहा आई एम अवेयर कि प्रोजेक्ट खराब हो रहा है लोग ठीक से काम नहीं कर रहे मेरा भी कंप्यूटर क्रैश हो गया आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस आई एम आई अवेयर कि ये सारी सिचुएशन में यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है ये ध्यान रखना मुझे ये अवेयरनेस है कि कंप्यूटर को क्या हो गया मुझे ये अवेयरनेस है कि लोगों को क्या हो गया मुझे ये अवेयरनेस है कि यहाँ क्या हो रहा है तो बेसिकली उस पर ध्यान देना कि यहाँ क्या हो रहा है तो जब सारा दिन यहाँ देखना शुरू कर देंगे तो अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी एंड फिर उनमें से कौन सी थॉट्स और फीलिंग्स मेरे लिए हेल्दी है और कौन सी मेरे लिए ही डैमेजिंग है क्योंकि हमने कितनी बार देखा कि अपना दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं थी तो क्रिएट करते ही जा रहे थे लेकिन जब अब ये जागृता आ जाएगी कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ फिर फिनिश करने का प्रोसेस अपने आप आ जाएगा अवेयरनेस होती है तब हमें रियलाइज होता है कि मैं लेबल्स नहीं हूँ मैं रोल्स भी नहीं हूँ मैं रिलेशनशिप्स भी नहीं हूँ मैं हूँ कौन
0: मैं वो चैतन्य शक्ति
1: मैं वो चैतन्य शक्ति
0: और जहाँ मैं पावरफुल सोल कहता हूँ ना समवेयर इट एक्चुअली एम्पावर्स यू
1: एब्सोल्युटली
0: यू नो लाइक इट्स एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ रियलिटी
1: एब्सोल्युटली
0: व्हेन यू सी इट हैपनिंग एक एक चीज को जब आप जीतना शुरू करते हैं इट गिव्स यू दैट रियल इमेंस हैप्पीनेस
1: लेकिन जीतने वाले को ये पहले पता होना चाहिए ना कि मेरे पास शक्ति कौन सी है सी द होल प्रोसेस इज नॉट गोइंग लाइक दिस लेकिन इट्स गोइंग लाइक दिस तो मुझे स्मृति आई आई एम अ पावरफुल सोल मुझे स्मृति आई कि हर थॉट हर फीलिंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ देन मैं सारा दिन कल ऑफिस में उस अवेयरनेस के साथ रहा मुझे स्मृति आई कि भले आप कुछ भी कहें मेरा दर्द मैं क्रिएट कर रहा हूँ अब मैं उस अवेयरनेस में चल रही हूँ सारा दिन ऑफिस में सो व्हाट विल हैपन टू द रिलेशनशिप्स वो तो अपने आप ठीक होते जाएंगे क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि सारी एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है तो मुझे ध्यान किसका रखना है अपना रखना है तो मेडिटेशन में जो सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता है ये कि मुझे कॉन्स्टेंटली एक यू नो इनर कनेक्शन जो हम आज दिन तक सुनते आए थे कि अपने आप को देखना अपने आप को खोजना Lekin I don't think we were very sure what we were looking for.
0: A lot of people told me going in means like I don't understand.
1: Dekhna matlab sirf dheere dheere ye sankalpon ko dekhna, feelings ko dekhna.

0: और इस स्मृति से देखना कि हम क्रिएट कर रहे हैं। शुरू में कई बार ये हो सकता है कि हम सोचे नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा, ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने देखा नहीं है। अभी सिर्फ देखते जाए, सिचुएशन आने दो, सिचुएशन आएगी, आप अपने रिस्पॉन्स को देखो और फिर देखो ये कहाँ से शुरू हुआ था रिस्पॉन्स। इट स्टार्टेड विद अ थॉट। प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपसेट हो रहे हैं, आस्क योर सेल्फ आई हैव अ रिस्पॉन्स। अगर मैं डिस्टर्ब हो गई तो आस्क योर सेल्फ ये किसने क्रिएट किया। दिस इज अवेयरनेस। फिर धीरे धीरे रियलाइज होगा मैं ही तो डिस्टर्ब हुई थी, नेक्स्ट टाइम लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। थर्ड टाइम फोर्थ टाइम करते करते मुझे रियलाइज हो जाएगा कि कंट्रोल का स्विच कहाँ है, यहाँ है, बाहर नहीं है। पहले हम वेट कर रहे थे बाहर ठीक हो
1: तो मैं ठीक हो जाऊंगी,
0: मैं ठीक हो जाऊंगा।
1: वेरी ट्रू। ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा।
0: अगर कोई बहुत डिस्टर्ब होता है ना ऐसे वायुमंडल में, बच्चे मान नहीं रहे या काम ठीक से नहीं ऑफिस में हो रहा, उनको आप बोलो अच्छा दो मिनट आप तो बैठो सब ठीक हो जाएगा। बोले पहले सब ठीक तो हो जाने दो
1: तभी मैं
0: बैठ जाऊँ। सो वी आर लुकिंग एट इट ऑलवेज द अदर वे अराउंड। द सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन। मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, परिस्थिति अपने आप हो जाएगी। तो मेडिटेशन का ये सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता। एंड सेकेंड जो बहुत इम्पोर्टेंट हमें बेनिफिट मिलता दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल,
1: यस। अब मैं रिएक्ट नहीं करूँ।
0: देखो आज दिन तक कंट्रोल शब्द जैसे ही हम सुनते थे द इमेज दैट कम्स इज लाइक यू नो होल्डिंग ऑन टू समथिंग और ओवर पावरिंग समथिंग या किसी चीज को बड़ा टाइट पकड़ कर रखना। लेकिन जहां अंदर की बात आती है, इमोशंस और थॉट्स और फीलिंग्स की बात आती, वहां कंट्रोल मतलब एक्चुअली क्या? टू लेट गो। टू लेट गो। इफ आई वांट कि मेरे मन की स्थिति इन कंट्रोल चले
1: तो जाने देना।
0: तो जितने ही डैमेजिंग थॉट्स है, हर्ट वाली थॉट्स है, लेट देम गो। थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस अवेयरनेस से चलते हैं कि आई हैव टू लेट गो, ये थॉट, ये बैगेज मैंने पकड़ा है, लेट गो लेट गो, तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता जाता है। तीसरी बात जो बहुत अच्छा हमें बेनिफिट करती है वो होता है कम्युनिकेशन पर। हमारे जो कम्युनिकेशन है, आज दिन तक हम समझते थे कम्युनिकेशन इज एट वर्ड लेवल, कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो एक दूसरे के लिए करते हैं वो कम्युनिकेशन है। अब हमें समझ में आता कम्युनिकेशन वाइब्रेशंस के आधार से होता है कि मैं एनर्जी जो आपको ट्रांसमिट करती हूँ। अब मुझे अपने वर्ड्स पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या
1: कहना ही पड़ेगा, वेरी ट्रू।
0: कई बार क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं और बोलते कुछ और हैं तो हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। सपोज आई डोंट लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग राइट नाउ बाय चांस, बट आई एम सेइंग आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तो आपके ऊपर कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, कि मेरी थॉट कुछ और है, अब मैं उसको कन्वर्ट करके बोल रही हूँ।
1: और फिर उसमें डर रहता है कि कहीं निकल ही ना जाए कि अच्छा ये रंग जो है ना कभी भी निकल सकती है वो।
0: अब कम्युनिकेशन पर कैसा हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा और फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक तनाव क्रिएट होता है क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है। अब इसी में अगर कभी गुस्सा आ गया मुझे गलती से तो वो कन्वर्टर काम करना
1: बंद कर देगा। मैं कहूंगी आप तो गंदे लग रहे थे, मैंने फिर भी कहा कि आप अच्छे लग रहे थे,
0: तो वो सारा ऐसे का ऐसे बाहर निकलने लगता है और फिर हम कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरा कन्वर्टर बीच का काम करना बंद हो गया था। तो कम्युनिकेशन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। वी आर सेइंग कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार हम कहते मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। व्हाई, वेयर इज द प्रॉब्लम? यहाँ क्लैरिटी नहीं है। यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू आई थिंक एंड व्हाट डू आई फील। जो यहाँ क्लियर होगा उसको यहाँ एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेडिटेशन से क्योंकि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती जाती है तो फिर वर्ड्स में ऑटोमेटिकली आती जाती है।
1: एक्चुअली हमें भी तो कभी कभी नहीं पता होता। यस, मेडिटेशन रियली हेल्प्स इन दैट। हमें पता ही नहीं होता कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता। हम सोच तो रहे हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं लेकिन अंदर से हमें बहुत सारी चीजें बुरी लग रही होती हैं।
0: तो इसलिए अंदर से अगर बुरी लग रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं लेकिन अच्छा है।

0: फियर एवरीथिंग, उसमें हम और उस समय उसको सारा डांटते हैं. लीडर राइट कम्युनिकेशन स्किल, उस समय आप उसको एम्पावर करें, उसके कॉन्फिडेंस को जो बिल्कुल उस समय क्रैश हो गया है फिर से उधर लेकर आए. एंड देन व्हेन बोथ आर स्टेबल देन टॉक. पेरेंट एंड चाइल्ड, दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन. आज बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आया है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं है या शायद वो फेल हो गया है, उस दिन डांटना जस्ट डजंट वर्क. वो तो ऑलरेडी इतने दर्द में है, एक दर्द में व्यक्ति को और दर्द देना,
1: क्योंकि हम दर्द में आए ना तो मैं किस पे निकालूं.
0: बट हाउ फेयर इज इट कि वो बच्चा अभी तो ऑलरेडी दर्द में है ना, उसने क्लास को फेस किया कि वो फेल हो गया, वो गिल्ट में है, वो हमें नहीं फेस कर पा रहा, वो तो अपने को भी नहीं फेस, उसमें उसको और डांटते हैं. जितने बच्चे आज दिन तक फेलियर के बाद सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं?
1: फियर
0: ऑफ फेसिंग द पेरेंट्स. हाउ मच फियर दिस इज डीप रूटेड. क्यों? वी आर कम्युनिकेटिंग इन अ स्टेट ऑफ पेन. सो वो कम्युनिकेशन कभी भी राइट रिजल्ट नहीं क्रिएट करेगी. तो मेडिटेशन से, क्योंकि माइंड में अवेयरनेस आ गई, कंट्रोल आ गया, तो कंट्रोल सिर्फ मन पर नहीं आया, फिर सारी कर्म इंद्रियों पर आ गया. तो मन पर कंट्रोल आया तो मुख पर भी तो कंट्रोल आ गया.
1: वो कंट्रोल नहीं हुआ ना,
0: इट्स अ नेचुरल थिंग ना,
1: अपने आप ही हो गया वो.
0: जैसे आपने कहा कि मैं उसको डेफर कर सकती हूँ, अगर पहले रियलाइजेशन नहीं था तो कोई बोले कि अभी नहीं, आप एक घंटे के बाद बोलो, तो नहीं.
1: ओ, कैसे एक घंटे तक, क्या मतलब क्या करेंगे फिर एक घंटे तक?
0: और वो रियलाइजेशन भी नहीं होता था, हमें लगता था अभी ही बोलना है, लेकिन दिस इज अवेयरनेस ही, दिस इज द जर्नी. अब अवेयरनेस है, हम कहते हैं मुझे पता है ये हो गया है, बट वील टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर. एंड वो जब फिर आप डायलॉग करोगे, वो एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा, बिकॉज एनर्जी जो फ्लो कर रही होगी, that will be positive.
1: And then we'll be actually looking for reasons.
0: Absolutely.
1: Why that happened, you know? Because हम intelligently handle कर रहे होंगे.
0: Absolutely.
1: हम उस वक्त बर्सर्क होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं.
0: तो लेट्स रिमेम्बर कि जब भी किसी से कोई गलती हो जाए, whether it's in office or at home, that's not the time to talk about it. Let everyone get okay. उस समय नहीं करने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. Just let everyone get okay. वो भी जिनसे हो गया है, एंड मैं भी जो हर्ट हो गया हूँ, मुझे अपने हर्ट को ठीक करना है, फिर हम उस पर कम्युनिकेट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा.
1: तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हमने सेल्फ के साथ रिश्ते की बात की, रिलेशनशिप अपने साथ, और उसमें जहाँ जब हमने समझा तो मेडिटेशन एक्चुअली डजंट लुक लाइक मेडिटेशन, यू नो इट्स अ सेल्फ टॉक बेसिकली. और वो जो रिश्ता है, तो हम थोड़ा सा अनुभव क्यों ना अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करें.
0: सुबह उठकर अपना दिन शुरू करने से पहले कुछ एक मिनट अपने साथ इस तरह से हम बैठ सकते हैं, एंड जस्ट गिव द राइट काइंड ऑफ थॉट टू माई सेल्फ. ना परिस्थिति के बारे में सोचना है, ना लोगों के बारे में सोचना है, ना अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है, नॉट दैट काइंड ऑफ टॉक, वो तो सारा दिन ही चलती रहती है, बट द राइट काइंड ऑफ थॉट आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ. लेट्स ट्राई इट राइट नाउ. अपने आप को देखें इन रोल्स, रिलेशनशिप्स, लेबल्स, इन सब से परे, इन सब को निभाने वाला मैं, आई द एनर्जी विच इज मास्टर ऑफ दिस बॉडी. चैतन्य शक्ति, मन और बुद्धि की मालिक, कर्म इंद्रियों की भी मालिक, आई टाइनी स्टार शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. अपने आप को विजुलाइज करें कि यहां से बैठकर मैं इन कर्म इंद्रियों को और इस पूरे शरीर को चलाती हूं, मैं चलाने वाली शक्ति हूं. आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, एंड टुडे आई चूज हैप्पीनेस. कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, मैं कैसे रहूंगी स्टेबल, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं. आई एम अ हैप्पी बीइंग, दिस इज ऑलरेडी माय नेचर. अब मुझे आज सारा दिन में अपने संबंधों में,

0: इस स्थिति को रखते हुए मुझे हर संबंध और कर्म में आना है। ओम शांति।
1: ओम शांति। और जिस तरह से आज हमारे साथ के रिश्ते को ही आपने बताया, और कहीं न कहीं जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे अपने ही थॉट्स स्लो डाउन होने लगते हैं, तो वो सब कुछ हमें करना नहीं होता जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अध्यात्म हमें ये सिखाता है जीवन जीने का सही तरीका ये है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करें। आई थिंक इट स्टार्ट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली। वी बिकम पावरफुल, वी स्टार्ट रियली बिकमिंग पावरफुल। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए। कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
2: हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org।
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी समय आज इतना ही। जिन रिश्तों को हमने समझा देखा उसमें एक महत्वपूर्ण रिश्ता अभी और है, और वो है परमात्मा के साथ रिश्ता। उसको भी साथ मिलकर गंवा लेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं। नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, कितनी तरह की स्किल्स हम सीख चुके थे, लाइफ को ही नहीं जान पा रहे थे। अब वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीखते जाएंगे। जिंदगी बहुत सुंदर होती जा रही है और अनुभव से बड़ा जो कहते हैं कि सच कोई और नहीं होता, तो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव होता है, तब हमारे लिए वो सच बन जाता है। आज भी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दिन भर में हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि दिन जो है वो कम पड़ने लगता है। हर बार की तरह हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत है। शांति
1: शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सी बातें हमने सीखी। आप ये लगता है कि दिन छोटा है, इतनी सारी चीजें हैं, काम है, बहुत कुछ और मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है, अब हम स्टूडेंट बनके स्किल्स भी सीख रहे हैं ये इस पूरी श्रृंखला के अंदर अंदर कि कैसे हमने अभी तक गलतियां की थी उन्हें ठीक करें। लेकिन टाइम जो है वो मतलब दौड़ जाता है, भागता है। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए, नहीं होता। कहां गलत हो रहे हैं हम समय को समझने में, उसे मैनेज करने में?
2: सबसे जो फाउंडेशन इनफैक्ट यही है कि सवेरे जल्दी उठो तो आपके पास वह 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और तब तो जल्दी उठो सवेरे, और वह जिसको कहते अधिकतर 90% का वही पीक टाइम होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपने स्नान आदि किया, तैयार हो गए, उस समय जो सबसे डिफिकल्ट काम है वह करो।
0: लेकिन उस वक्त तो जब हम अपने आप को उठाते हैं हम इतने हैवी हुए हुए होते हैं।
2: विशेष सर्कल आपने खुद क्रिएट किया कि भाई टेंशन में सारा दिन बिताया, लेट सोए, शराब पी के सोए, या तो और रीति से भी और टेंशन में ही सोए तो सवेरे उठे तब भी फिर दिक्कत होती है। अगर फुल साइकिल को आप ठीक करो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने निश्चित टाइम किया है तब उठ जाओ, और उठते फिर ये नहीं कि अभी और 5 मिनट के बाद अभी नींद आ रही है और अभी 10 मिनट के बाद, ऐसे में आपने टाइम डिसाइड किया तब बस, भल नींद आ रही है तो भी उठ जाओ एक बार।

0: उठ के कुछ पैदल करने लगो, चलने लगो, ब्रश करने लगो। मैं तो सीधा स्नान करता, चाय भी नहीं पीता, उठे सीधे डेढ़ दो ग्लास पानी पिया, बस सीधा ब्रश करने गए, तैयार होने लगे, शेविंग की। और देखो उतनी देर में फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। उस समय क्यों हमें थकावट रहती है, क्योंकि नींद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, और जब तक वो नॉर्मल ना हो आप में एनर्जी नहीं आती है। परंतु अगर इस प्रिंसिपल को अपनाओ कि तुरंत बस आप तैयार होने लगो।
1: लेकिन सुबह उठते तो अखबार चाहिए ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं कि वो सोए हुए अखबार आती है, चाय आती है, उससे उठते हैं।
0: पूरी मतलब इट्स वर्स्ट थिंग, दोनों ने। मैं हमेशा कहता हूँ बैड टी इज बैड,
1: बैड टी इज बैड,
0: इसीलिए तो बैड टी कहा ना उसको। तो चाय पीनी भी है तो नाश्ते के बाद पियो, उठते ही चाय नहीं पियो, क्योंकि चाय की जो हार्मफुल इफेक्ट है वही है कि इमीडिएटली वो इरिटेशन क्रिएट करती है, स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा। और अखबार के नेगेटिव न्यूज है, बस एक आदत की बात है, दो दिन आप करिए, बस उठते ही डेढ़ दो ग्लास पानी पियो, पॉसिबल तो बस उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो ताकि विटामिन सी आदि हम आपको मिलेंगे, और फिर तैयार होने जाओ। वो आधे पौने घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्नान आदि करके आप फ्रेश भी होंगे। फिर चाहिए तो भले आप एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी चाय पीनी है तो पी लो, इस प्रकार से वह जो टाइम आपको मिल जाएगा और तब एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा।
1: आपने कहा स्नान के बाद एक्सरसाइज करो,
0: नहीं अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी सिंपल तो करो, भले अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो भले पहले ही कर लो तो पसीना होगा। अगर नॉर्मल योगा आदि करते हैं कि जिसमें आपको पसीना नहीं होना है तो स्नान के बाद भी करो तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मुख्य बात तो मेरी ये थी कि भी सवेरे थोड़ा जल्दी उठो और वह आपको डेढ़ दो घंटे का जो टाइम मिलेगा वह पावरफुल टाइम होगा, तब डिफिकल्ट काम करो, अच्छे से सारे दिन का प्लानिंग करो। तो जो आपका शुरू में प्रॉब्लम था कि भी दिन छोटा पड़ गया, पर दिन छोटा नहीं पड़ेगा, आपका 25-30% काम अर्ली मॉर्निंग में भी हो जाएगा, मेंटली भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे।
1: लिटरली देखें, ज्यादातर देखें सतीश शिवानी, जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि सुबह उठे और टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ स्केड्यूल हमने रखा हुआ है जो हमें करना है, और उसके बाद ट्रैफिक जाम मिलेगा या कुछ मिलेगा, उसका मार्जिन रख के भी हमें घर से निकलना है, तो टाइम तो प्लानिंग का, हमें जीने का ही टाइम कम मिल रहा है, ये इसको कैसे हैंडल करें?
0: गलती तो वही है ना कि आप ये सोचते हो कि 45 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे, आपको 7:30 को घर को निकलना है तो आप 7 बजे उठते हो, फिर तो हड़बड़ी होगी होगी। ये जो ब्रह्मा कुमारी इसकी लाइफ स्टाइल है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हम जल्दी उठते हैं, जो मैंने बताया, तुरंत स्नान कर लेते, तैयार होते तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5-3 घंटे होते हैं।
1: लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक आदत है कि आप 7 बजे उठते हैं तो तब आप फिर, क्योंकि आप रात इतना लेट सोए होते हैं और जो भी है, तो इस कारण वो सुबह उठने के बाद भी काफी हैवीनेस रहती है।
0: तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम है।
1: ओके,
0: आपने जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट किया है कि भी रात को 1:30 बजे सोना, सवेरे 7 बजे उठना, उसको बदलना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को भी वो सेटिंग हो गई है। क्या करिए, अगर अभी आप 1:30 बजे सोते हैं तो 5 दिन 1 बजे सोना शुरू करिए तो नींद आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और 5 दिन के बाद 12:30 बजे सोइए, और सप्ताह के बाद 12 बजे सोइए, ऐसे करते करते आप 10:30-11 पर भी आ सकते हैं, फिर सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं होगा।
1: तो पहले हम सोना जल्दी करें या उठना करें?
0: सोना जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा ही, 1/2 आवर ही आप जल्दी सो, भले उसी टाइम पर उठो, फिर और कम हुआ तो उठना जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड है स्लीप का वो तो पूरा हो गया।
1: और हम एक जो मैंने अनुभव किया है, घर पहुंचते 10 बजे हैं, फिर क्या करें?
2: तो भी अपनी अब ये भी सोचना होगा, हम 10 बजे क्यों घर पहुंच रहे हैं, हमें हर काम करने में आज ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन नहीं रख रहे। आई विल हैव टू स्टॉप, रीशेड्यूल एवरीथिंग, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हम सब जब मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, एंड कई बार हमने ये बात की है, राजयोग मेडिटेशन इज नॉट 10 मिनट्स और 1/2 आवर, राजयोग मेडिटेशन इज अ लाइफ स्टाइल ऑफ 24 आवर्स। तो जो परिवर्तन हमें एक तो अटेंशन रख के लाना है,

0: कुछ धारणाओं को हर रोज फॉलो करना है, जैसे ही हर चीज पर फॉलो करते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या भोजन खाना, सारा दिन में कैसे सोचना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे द होल साइकिल विल फॉल इनटू प्लेस। देखो जब डिसहार्मनी होती है तो पूरे एस्पेक्ट पर डिसहार्मनी होती है, जैसे ही आप उसको हार्मोनाइज करना शुरू कर देते पूरा दिन हार्मोनाइज हो जाएगा। एक चीज भी अगर हम शुरू करें कि मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर,
1: कभी भी उठो
0: जल्दी थोड़ा, क्योंकि अगर लेट उठे तो फिर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हम क्या कहते हैं, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। सी अगेन, हमने मेडिटेशन को अपने प्लानर में कहाँ डाल दिया कि अगर टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो टाइम तो कभी होता ही नहीं है। हमें अगर उसकी इक्वेशन को चेंज करें, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। इट्स जस्ट द वे आई ट्यून माई सेल्फ, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इफ आई से टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो वो हफ्ते में कभी एक दिन टाइम मिलेगा तो करेंगे, और क्योंकि रोज नहीं करेंगे तो जब वो एक आधा दिन करेंगे, योग लगेगा नहीं, फिर कहेंगे लगता नहीं, क्या आधा घंटा निकाल के बैठे, लगा भी नहीं, सो देन इट गोज आउट ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट। मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, इससे मेरा थॉट और टाइम मैनेज होगा। नाउ लेट मी एक्सपेरिमेंट करके कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, जो भी टाइम हम उठते हैं, क्योंकि इमीडिएटली शायद नहीं कर पाए, प्रेफरेबली जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि 4:30 जो अमृत वेले का समय है, जब माइंड की एक्टिविटी, जब हम वो मेडिटेशन बहुत पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, थोड़े दिन उसको अभ्यास करके देखें। जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आती है, अपने आप आने ही है,
1: ये तो होता है कि जितने सुबह है।
0: तो अगर स्टार्ट करना है, मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट कि कल से मुझे ये स्टार्ट करना है और वो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करना है। नहीं भी हो रहा, अभी हम नए हैं, फिर भी मुझे रोज करना है। कोई भी एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत दर्द होता है पहली बार। अब जो हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं है तो हम कहते छोड़ो, एक्सरसाइज करने से दर्द होता है। एक्सरसाइज करने से तो दर्द नहीं होता ना कभी, लेकिन वो कुछ एक दिन हमें क्रॉस करना पड़ता है। सेम विद मेडिटेशन, थोड़े दिन हम कहेंगे उठते हैं नींद आती है, उठते हैं योग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, अभी हम स्लीपी है, फिर भी हम बैठेंगे, जो सारी तैयारी करके जैसे गिरीश भाई ने बताया, हम बैठेंगे, लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि योग करेंगे और थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी, मेरे सारा दिन के थॉट्स कैसे चलेंगे। सी, वो मेडिटेशन मतलब सिर्फ उतनी देर नहीं ना, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ टू अनदर फ्रीक्वेंसी। सारा दिन थॉट्स कैसे हो जाएंगे, स्लो डाउन होंगे, रात को घर भी पहुंचेंगे, सोने का टाइम होगा, थॉट्स कैसे होंगे, स्लो होंगे, सोएंगे अच्छी नींद आएगी, सुबह उठना ईजी हो जाएगा। इट विल हैव टू स्टार्ट विद द मेडिटेटिव थिंग इन द मॉर्निंग। मेडिटेशन और ज्ञान, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जब सभी पहली बार आते हैं, हम में से किसी को सुबह पहले 4 बजे उठने की नहीं आदत होती है। इट इज एन अनअर्थली टाइम, वी यूज टू थिंक 4 बजे कोई उठता है, ये कोई उठने का टाइम है, अभी तो रात लगती है बाहर। एवरी वन कम्स विद देयर ओल्ड लाइफ स्टाइल, कोई 6 बजे 7 बजे, कोई तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे, लेकिन किया, परिवर्तन हुआ, प्राप्ति हुई। थोड़े दिन मुश्किल लगा, थोड़े दिन के बाद रह नहीं पाए उसके बिना, क्योंकि उसका वो आधा घंटा जो हम निकालते हैं वो आधा घंटा नहीं है, इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माय एंटायर 24 आवर्स। अगर मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला तो पूरे दिन शरीर ठीक रहेगा ना, और पूरा दिन क्या, फिर हर रोज शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कहें कि वो आधा घंटा नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो भी सारा दिन काम करेंगे लेकिन ड्रैग करते हुए, इस तरह से एनर्जेटिक। सो लेट्स बिगिन विद दैट मेडिटेशन, दिस हैज टू बी पुट ऑन टू माय प्रायोरिटी लिस्ट कि ठीक है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ विद दिस। हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं, हूएवर थॉट दैट वी हैड टाइम फॉर दैट बिफोर। आज ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई बहने आते हैं, 9 लाख से ऊपर परिवार है ना, उनका भी शॉप है, बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं। You will be surprised, हमारे पास इतने इतने बच्चे हैं। अगर उनका स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का है, पहले वो 8 बजे तक तैयार होते थे ना, आज वो 7 बजे तक तैयार होकर सेंटर पर आते हैं मुरली क्लास के लिए। क्या प्राप्ति है उस छोटे से बच्चे को, 1 घंटा एक बच्चे के लिए जल्दी उठना। इट हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड, देन यू गेट द रिजल्ट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, फिर वो आपकी हार्मनी में लाइफ स्टाइल चलनी शुरू हो जाएगी।
2: तीन बातें एक्चुअली।

0: एक तो जो कहा कि प्रायोरिटीज को दीजिए कि मुझे जल्दी पहुंचने की प्रायोरिटी है। अभी घर में आप पहुंचते हैं वो 10:30 बजे, तो मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना ही है। उसके लिए दूसरा ये करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़ेगा, लर्न टू से नो, मुझे पहुंचना है 9:30 तक, तब मेरी दिनचर्या ठीक होगी। और तीसरी बात, कहीं छोटा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, तो बिजनेस थोड़ा सा कम चले कोई बात नहीं, और कोई एकाध काम आपका रात्रि का हुआ कोई बात नहीं, थोड़े दिन में करूंगा, फिर सवेरे तो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उल्टा और आप एफिशिएंटली करेंगे। जैसे कहते हैं सक्सेस के लिए भी कहा है, डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम
1: इन द राइट वे,
0: राइट वे।
1: You may be doing things, but not in the right way at the right time.
2: And I think we don't even know, हमें यहाँ पता ही नहीं है कि right क्या है, right और wrong को भी हमने इतना relative कर लिया है।
1: इसीलिए तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम और फिर बाकी जो सारे साइड इफेक्ट साथ में आ रहे, इट्स ओनली बिकॉज ईटिंग नॉट एट द राइट टाइम, स्लीपिंग नॉट एट द राइट टाइम, थिंकिंग नॉट इन द राइट वे। इस पूरी सीरीज में हमने देखा है कितनी सारी हम गलतियां करते आ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें, टाइम वुड नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज थॉट्स स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। हमारे सेंटर पर हैदराबाद में मिस्टर केवीके राजू आते थे, ही लेफ्ट द बॉडी, ही वॉज चेयरमैन ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, चेयरमैन है बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप का। पहले तो कहते थे टाइम ही नहीं होता था, मेरे को तो 1:30-2 बजे तो सोने का टाइम मिलता है और बहुत कम देर सोते थे। लेकिन जब मेडिटेशन का प्राप्ति समझ में आई तो उन्होंने 3:30-4 बजे उठना शुरू किया। जैसे गिरीश भाई ने कहा सैक्रिफाइस, उन्होंने पार्टीज बंद कर दी, लेट नाइट सोशलाइजिंग बंद। चेयरमैन है ना, ये थोड़ी सोचा कि मेरी कंपनी में कोई लॉस हो जाएगा, नहीं, समझ में आया व्हाट इज गुड फॉर मी। उनके एक प्लांट में बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी काफी समय से, बिटवीन द लेबर एंड द टॉप मैनेजमेंट, मीटिंग्स डिस्कशंस, नो सोल्यूशन। एक दिन वो मॉर्निंग में उठे 3:30, ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन, देयर इज द आंसर। वॉट द आइडिया व्हिच ही गॉट इन द अर्ली मॉर्निंग, ही पुट इट फॉरवर्ड टू हिज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस दिन मीटिंग में, एवरी वन वेंट यूनानिमस, यस ये इसी तरह होना चाहिए। जो उन्होंने उस दिन प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया, उनको गवर्नमेंट के लेवल से उस चीज के लिए अवार्ड मिला था। एंड ही सेड कितने दिन मीटिंग्स डिस्कशंस एंड मॉर्निंग मेडिटेशन एंड मुझे आइडिया आया। तो टाइम वेस्ट हो रहा था ना, लेकिन हमें लग रहा था हम बहुत बिजी हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कशन इज समटाइम्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हम सुपरफिशियल लेवल पर सोच रहे हैं, हम एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में सोच रहे हैं, कभी एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं आएगा। लीव इट, इसके बारे में कल सोचेंगे। जब साइलेंस में होते हैं, जब हमारी एकदम ये एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली थॉट्स बिल्कुल क्लियर एंड प्योरिटी की स्टेट में है, ऐसे सोल्यूशन आकर सामने खड़ा हो जाएगा, तो कितना टाइम बचा।
2: आपने कहा कि टाइम नहीं है इसलिए मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेडिटेशन करेंगे तो आपका टाइम जो है आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, या टाइम आपका मैनेज हो जाएगा।
1: फाइंड दैट के बहुत टाइम है और बताओ और क्या काम करना है, जबकि वी डूइंग मच मोर देन जो पहले किया करते थे सारा दिन के अंदर। इट्स जस्ट दैट थॉट स्ट्रीमलाइन होती है ना, हर काम को कम टाइम लग रहा है।
2: हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर साइंस,
1: अगर मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पे और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगर उसका पहले All this is not there. तो आपकी पूरी concentration किस पर है? काम पर है. Definitely वो काम जल्दी होगा और गलतियों के बिना होगा. आपको decision लेना है. आपके mind में doubt नहीं है, confusion नहीं है. Decision लेने में कितना time लगेगा? आप यहाँ वहाँ बैठकर इधर उधर की इसकी उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर भी नहीं चल रहा, बाहर भी नहीं कर रहे, कितना time बचेगा? You could just save lot of time and energy. And सारा काम जल्दी जल्दी जल्दी होता जाएगा, यू विल से मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ काम नहीं होगा, इंजॉय करते हुए, हल्के रहते हुए वो काम करेंगे, एंड जब शाम को घर आएंगे यू विल बी मोर और लेस जैसे आप सुबह गए थे, एटलीस्ट मेंटली, फिजिकली थक सकते हैं लेकिन मेंटली यू आर स्टिल वेरी चार्ज्ड, क्योंकि माइंड वॉज स्टिल स्लो इवन इफ द बॉडी वॉज फास्ट। जो बहुत फास्ट फिजिकली काम करना हो सकता है, बट माई माइंड इफ इट इज स्लो हम नहीं थकते हैं। आज हम फिजिकली स्टैटिक बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बैठे गए घंटों, लेकिन माइंड कितना फास्ट है। तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, कौन थका एट द एंड ऑफ द

0: ये थका कौन? शरीर ने तो बहुत ज्यादा कुछ किया ही नहीं, मन बहुत ज्यादा थका और फिर रात को उसको स्लो डाउन नहीं किया, तो ये थके हुए मन को रात को सोने भी नहीं दिया, ये अभी भी रात को चल रहा था। तब जो आपने कहा कि सुबह उठेंगे तो सर दर्द हो रहा है, थके हुए मन के साथ उठे हैं, इट्स स्टिल लाइक वेरी हैवी ओवर हियर, फिर भी टाइम नहीं है, रेस्ट थोड़ी कर सकते, फिर इस थके हुए मन को लिया, फिर उस जर्नी पर चले। इमेजिन डेज एंड डेज, इयर्स एंड इयर्स हैव पास्ड लाइक दिस, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर सफरिंग सो मच। जैसे इसको स्लो डाउन करेंगे हर चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी।
1: मॉर्निंग में बहुत कुछ आपको मेरा अनुभव सुनाता हूँ, मुझे कई बार लिखना होता है, बुक्स लिख रहे हैं, देखा है कि अगर इवनिंग में लिखते हैं तो अगर एक पेज लिखने में आपको आधा घंटा लगा तो मॉर्निंग में वही 10 मिनट में लिख पाते हैं। इट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल। तो इसलिए भले थोड़ा जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताई वो फॉलो करके सवेरे एटलीस्ट एक घंटे का टाइम आप निकालो कि फ्रेश हो गए सब कुछ वो आपने लिए है, चाहे उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो, और ये सारे दिन का फॉरवर्ड प्लानिंग करना है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करो तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी।
2: एक मैं बात ये जानना चाहती हूँ, ये आपने कही बात की फिजिकली, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज कि हमने फिजिकली तो कुछ करते ही नहीं है, ज्यादातर लोग जो है वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे हमें इतनी ज्यादा थकान है कि हम कुछ भी शाम की वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मेडिटेशन के बाद जो हम दिन की शुरुआत करते हैं उसमें और आज जो मैं जिंदगी जी रही हूँ उसमें क्या फर्क हो जाएगा?
0: क्योंकि थॉट प्रोसेस स्लो डाउन एंड एक्यूरेट होता जाएगा। पूरा हम समझते आ रहे हैं, थॉट हर चीज कर रहे हैं, थॉट का बॉडी पे इफेक्ट। आपने कहा बॉडी ज्यादा कुछ नहीं करती, फिर भी हम थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सारा दिन में हमने कितने टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितनी क्रिएट की। गिरीश भाई ने बताया हर थॉट का बॉडी के हर सेल पे असर, हर थॉट का ब्रेन के हर केमिकल पर असर। तो इतनी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो ब्रेन पर और बॉडी पर कितना असर पड़ा होगा। किया कुछ भी नहीं था, गाड़ी में बैठे थे, गए थे, सारा दिन एसी ऑफिस में बैठे वापस, यहाँ क्या क्रिएट किया? वी एक्सपीरियंस के जब हम माइंड का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकल बहुत एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी माइंड लाइट है एंड राइट है तो फिजिकली भी एग्जॉशन है। आप अपने आप को एक हॉलीडे पे देखो, लुक एट योर सेल्फ ऑन अ पिकनिक, ठीक है? आप वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, ड्राइव करके 2-3 घंटा दूर जाते हैं, वहां पे ट्रैक करते हैं, ये वो चीजें हैं जो आप अपने नॉर्मल डे पे कभी नहीं करते, राइट? फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं उस दिन, इनफैक्ट बहुत एग्जॉस्टेड हैं उस दिन, लेकिन आप मेंटली कैसे थे पिकनिक वाले दिन पर?
2: बहुत खुश थे।
0: तो घर आके भी कैसे लगेगा? और कुछ मूवी चलना है रात को? आई स्टिल हैव द एनर्जी। भाई फिजिकली सब चीज टूट रही है, दर्द हो रहा है, माइंड आई डिड नॉट क्रिएट एनी स्ट्रेस टूडे, मैंने आज किसी पर गुस्सा नहीं किया सारा दिन पे, देर वॉज नो फियर, माइंड ओवर मैटर। मन का नहीं ध्यान रखेंगे तो टाइम का भी ध्यान नहीं रख सकते क्योंकि सब चीज क्रम्पल होने लग जाती है। तो मेडिटेशन हम मॉर्निंग में भी करते और फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस किया हर एक घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल, वो चार्जिंग, ताकि अगर कहीं भी गलती से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही थी हमें फिर वो अटेंशन मिल जाता, हम रुक कर फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते। हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया राइट थिंकिंग, तो वो राइट थिंकिंग कई बार बीच बीच में चेक कर लेते हैं। पूरा दिन अच्छा अगर बीतेगा बहुत अच्छी नींद रात को आएगी, अगले दिन सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी।
1: और एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, और सब चीजों की तुमने चर्चा की है परंतु सवेरे सवेरे आपने मेडिटेशन कर लिया तो परमात्मा की भी मदद मिलती है, जैसे वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग।
2: लेकिन मतलब अभी भी ज्यादातर लोगों के साथ ये बात है कि मेडिटेशन और मेरी डेली लाइफ में क्या परिवर्तन है, क्या कनेक्शन है? मेरे डेली ऑफिस के जो मीटिंग्स हैं, ऑफिस की जो हैंडलिंग है, ऑफिस के जो डिसीजंस हैं, उसमें और मेडिटेशन, तो मेरा जो हम मेडिटेशन यहाँ कर रहे हैं एक परमात्मा के साथ कनेक्शन है या अपने साथ कनेक्शन है, उसमें मेरा ये जो ऑफिस के डिसीजंस हैं या लाइफ के डिसीजंस हैं उसका कनेक्शन क्या है?
1: तो एक बार तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे तो लोगों से डील करना बहुत ईजी होगा। कई बार हम एंग्जाइटी में लोगों से डील करते हैं तो उल्टा गलतियां कर बैठते हैं,

0: स्प्रे में करेंगे तो सही करेंगे, थोड़े डिटैच भी होंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा। अब देखिए डिटैच होके कोई देखता हो तो वह चीज को सही दिखेगा, वैसे आप डिटैच होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव सही हो जाएगा, अन्यथा आप अटैच होकर के कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी गलत हो रहा है। इंट्यूशंस भी आपको मिलेंगे, जो इंट्यूशंस भी मदद करेंगे कार्य को सही करने में।
1: मेडिटेशन में जो सबसे पहली बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, माई थॉट्स आर इन माई कंट्रोल, जैसे ये फंडामेंटल चीज पर मास्टरी आ जाती है, आपके इमोशंस पर मास्टरी आने लगे, आपने सारा दिन किसी पर गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, आपने लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो आपने उनको कौन सी एनर्जी भेजी?
2: एक्सेप्टेंस के।
1: जैसे आपने उनको वो वाली एनर्जी भेजी, आपको उनसे कौन सी एनर्जी मिली? से एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम क्यों भारी हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही है। आई मे बी द लीडर ऑफ माई कंपनी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस छोड़ू, उस वजह से कई लोगों के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ या गुस्सा नहीं भी कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत फियर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उनसे फियर की एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मुझे भारी करेगी, उनको तो करेगी करेगी। आई ऑलवेज फील कि एक लीडर के लिए एक जूनियर से ज्यादा रिस्की है, हमें लगता है कि जो जूनियर्स हैं इनको डांट खानी पड़ती है तो इनके लिए बहुत टफ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप वर्कर का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांट किसको खानी पड़ती है? ज्यादातर वर्कर को खानी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या एग्जीक्यूटिव को क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 10, 20, 100, 1000 वर्कर्स के लिए जिम्मेवार है। मैं एक को अगर डांटती हूँ उसको तो एक ही बार डांट मिलती है, मैं 10 को डांटती हूँ मुझे कितनी बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है? 20 टाइम्स, 10 टाइम्स व्हेन आई गेव इट एंड 10 टाइम्स व्हेन दे गिव इट बैक टू मी। तो मेरी तबीयत पर तो असर पड़ना ही है अगर मैंने बचा लिया अपने आप को इन चीजों से, और उल्टा अगर मैंने 10 टाइम्स प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी तो मुझे 20 टाइम्स कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाउ विल आई फील बाय द एंड ऑफ द डे? मेरे को लगेगा जितना पहले था उससे भी ज्यादा लेकर मैं शाम को घर पर।
2: इट्स अ बिग टेस्ट। आप जैसा फील कर रहे हैं शाम तक जाते जाते, ये आपको बताएगा कि आपके दिन भर की स्थिति, आपने क्या क्या दिया।
1: बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट और कुछ भी नहीं है। इट्स अ रिफ्लेक्शन, मैंने आज सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट की, कौन सी एनर्जी गिव की, और फिर औरों से मुझे एनर्जी मिली। शाम को एक्सरे आपको पता चलेगा, यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक। एटलीस्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग अदर पीपल, लेट मी जस्ट चेंज व्हाट आई गिव फ्रॉम टुमारो। हर स्टेप पर चेंज आएगा, बहुत अच्छा सारा दिन बीतेगा एंड यू विल एंजॉय योर वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट।
2: यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई विल एंजॉय द डे, यू नो, जो पूरा दिन, इतना सुंदर दिन मेरे लिए दिया है उसको मैं एंजॉय तो कर पाऊंगी। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शांति।
0: शांति।
2: सचमुच देखने की बात है, बार बार हम कितनी बार फिल्म में या किसी किताब में, कविता में सुनते थे, पढ़ते थे कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एहसास क्या हो रहे हैं हमें? आज हम जिंदगी जीना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना थका हुआ महसूस करते हैं। आज जो इतना बड़ा टेस्ट हमारे सामने आया है, हम शाम को कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर थके हुए हैं, अगर दुखी हैं, अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, इसका मतलब दिन भर में यही चीजें ना सिर्फ मैंने दी हैं बल्कि रिसीव की हैं। जब मैंने जितनी बार मैंने दी उससे डबल टाइम मैंने मुझे मिली है, क्योंकि उतनी बार मैंने दी थी और फिर उन्हीं लोगों से मुझे वापस मिली। अब देखना ये जरूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसा महसूस करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैंने तो दिन भर अच्छा रही थी, लेकिन अगर शाम को मैं थकी हुई हूँ, इतनी भारी हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइम को मैनेज करने के लिए जो अभी तक हमने इतने तरीके किए थे, एक जो आज मैं सूत्र पकड़कर जा सकते हैं हम लोग, कि सुबह अपनी अपने हाथ में कर लें। जैसे अभी तक सोच को अपने हाथ में किया था, सुबह उठने को अपने हाथ में कर लें। एक बार मन को ये तैयार कर दें, समझा दें, बाकी सारी चीजें उठते ही मेडिटेशन को अपना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, बाकी सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस। ये अनुभव बता रहा है और देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या कहता है। आज अवेकनिंग विद आनंद कुमार में इतना ही, फिर मिलेंगे।

चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: क्रांतिकारी अमर सिंह जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और उनकी मृत्यु के पश्चात जगदीशपुर के राजा बने थे। अमर सिंह को गद्दी पर बैठे अभी केवल 4 दिन ही हुए थे कि उन्हें पता चला कि आरा नामक स्थान पर अंग्रेजी फौजों का जमाव हो रहा है। शत्रु आक्रमण करें इसके पहले ही अमर सिंह ने शत्रु पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। अमर सिंह ने जब आरा पर आक्रमण करके जगदीशपुर छोड़ा तो अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर की नाकेबंदी कर ली ताकि वे दोबारा जगदीशपुर न पहुंच सकें। अमर सिंह ने अंग्रेजी सेना को चकमा दिया और जगदीशपुर पहुंच गए। अंग्रेजी सेना ये चकमा खाकर बुरी तरह बौखला गई। अमर सिंह को मारने वाले के लिए उसने बड़े बड़े पुरस्कारों की घोषणा कर दी। जगह जगह चौकियां बिठा दी गईं। जगदीशपुर पर अंग्रेजी सेना के आक्रमण के रूप में 6 सेनाएं 6 तरफ से एक साथ बढ़ी, पर 7वीं सेना को बढ़ने में कुछ विलम्ब हो गया। स्थिति का लाभ उठाकर अमर सिंह ने इसी पिछड़ी हुई सेना की तरफ से निकल जाने में सफलता प्राप्त की। 19 अक्टूबर 1858 को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों को पूरी तरह से घेर लिया। अमर सिंह को पहचानकर शत्रु सेना ने हाथी को चारों ओर से घेर कर बंदी बना लिया। बिना देर किए अमर सिंह हाथी पर से कूदकर शत्रु को छकाते हुए निकल गए। अमर सिंह ने जंगल की 1-1 इंच भूमि पर शत्रु सेना के साथ युद्ध किया था, पर ना तो उन्होंने कभी समर्पण किया और न ही कभी पराजय स्वीकार की। उन्होंने वीरता, युद्ध कला और देश प्रेम का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था।

0: अरे ये क्या हो रहा है यार, ये बगीचे में लाउड स्पीकर क्यों लगा? क्यों आज किसी पार्टी वार्टी की सभा होने वाली है क्या?
1: मालूम नहीं यार, चलो अपने गजबीय काका से पूछते हैं।
2: नमस्कार दादा। अरे हाँ भाई नमस्कार, माफ करना शोर शराबे में सुन नहीं पाया।
3: गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
2: अरे नटखट तू? अच्छा गुड मॉर्निंग, बढ़िया हूँ मैं। और तुम लोग सुनाओ, चाय पियोगे कि कुछ खाओगे?
1: दादा चाय के साथ दो प्लेट पकौड़े भिजवा दीजिए, खुशबू बड़ी परेशान कर रही है।
2: हाँ भैया हाँ। ए दो नंबर पर दो प्लेट पकौड़े और स्पेशल चाय जल्दी,
0: और शक्कर कम। अरे कल तो इस लड़के ने चाशनी बनवा दी।
2: ए, आज साहब का ध्यान रखना।
4: अरे दादा ये बगीचे में शामियाना लगा हुआ है, काम चल रहा है उधर, देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। कोई नेता आने वाला है या कोई सभा है?
2: ना तो कोई नेता आने वाला है और ना ही कोई सभा। अरे यहाँ बगीचे में क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ लगेंगी, उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। मूर्तियाँ आ चुकी हैं, चबूतरे तैयार हैं, बस मूर्ति स्थापित कर

0: शहीद पार्क का उद्घाटन होना है। आजाद हिंद फौज के एक सिपाही इसका उद्घाटन करेंगे।
1: चलो अपन देखकर आते हैं।
2: अरे चाय पी लेने दे यार। दादा आप भी चलो ना।
3: अरे आप लोग बातें ही करते रहोगे, मैं तो चला। ये रही मेरी पकौड़े की पुड़िया, मैं तो चला।
0: चलो भाई, ये नहीं मानेगा, चलना ही पड़ेगा। चाय हो गई, अब चलो ना। ये देखो, यहाँ बोर्ड पर सारे कार्यक्रम लिखे हुए हैं। 3 तारीख को क्रांतिकारियों के जीवन पर झांकी लगेगी, 4 तारीख को शहीद भगत सिंह का नाटक का मंचन होगा, 5 तारीख को वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। पूरे प्रदेश से कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर फिल्म भी दिखाई जाएगी।
4: लेकिन दादा, ये इतना बड़ा आयोजन किस लिए हो रहा है यहाँ पर?
0: आजादी के पहले संघर्ष 1857 को 150 वर्ष हो चुके हैं। शहीदों के जीवन पर केंद्रित ये 4 दिन चलने वाला जलसा है।
2: अरे पोस्टर तो लगा है।
1: आजादी के क्रांति पर्व के पहले संघर्ष को 150 वर्ष हो गए। झांकी लगी, झांकी का मुख्य विषय है शहीदों की याद में। चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो
2: चलो चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।
0: ये देखो, ये भगत सिंह द्वार है। वो सामने चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संघर्ष और बलिदान का दृश्य है। ये झांकी हर दिन बदलती जाएगी और कल झांसी की रानी और तात्या टोपे पर लगेगी।
3: अरे ये किसकी मूर्ति है?
0: ये बिहार के क्रांतिवीर अमर सिंह हैं।
1: तो काका, इस कार्यक्रम के बाद आज अमर सिंह की बात हो जाए।
3: हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ।

0: मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे ये राज सिंहासन भोग विलास के लिए नहीं मिला है। अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मुझे जगदीशपुर और भारत देश के लिए जान भी गंवानी पड़ी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मुझे स्वर्गीय कुंवर सिंह जी की आन बान शान का निर्वाह करना है और अंग्रेजों से टक्कर लेना है।
1: महाराज आप निश्चिंत रहें, हमारी मातृभूमि पर गंदी नजर डालने वाले को हम माफ नहीं करेंगे। अनीति को अनीति से ही मारेंगे। हमारे लिए मातृभूमि की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है, परिवार घर और रिश्ते बाद में।
2: ईश्वर आप सबकी रक्षा करें, हम सब साथ हैं। मुझे राजा महाराजा मत समझिए, मैं एक साधारण इंसान हूँ और आपकी तरह इस मातृभूमि की संतान हूँ।
3: महाराज अमर सिंह की जय। महाराज अमर सिंह की
4: जय।
2: साथियों मेरी नहीं, साथियों मेरी नहीं, भारत माँ की जय जयकार कीजिए।
5: भारत माता की
4: जय।
5: भारत माता की
4: जय।
5: भारत माता की
4: जय।
6: अभी राजा अमर सिंह को राजगद्दी संभाले 4 दिन ही हुए थे कि तभी जासूस ने आकर खबर दी।

0: महाराज की जय हो। महाराज, एक गोपनीय संदेश। ये संदेश आपके दक्षिण दिशा के गुप्तचर का है।
1: हाँ,
0: चलो उधर चलो।
1: अब बताओ क्या बात है।
0: महाराज, गुप्तचर ने खबर दी है कि अंग्रेजी फौज का जमावड़ा आरा नामक स्थान पर हो रहा है। महाराज, अंग्रेजों की धोखेबाजी खत्म नहीं हुई है। अत्याचार से जनता परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आरा के सब लोग परेशान हैं। जगदीशपुर पर आक्रमण की मंत्रणाएं चल रही हैं। अंग्रेजी सेना कभी भी हम पर आक्रमण कर सकती है, और महाराज उनके पास आधुनिक हथियार भी हैं।
1: ठीक है, गुप्त रूप से सेना में ऐलान कर दो कि सब तैयार रहे। पूर्व से पांचों टुकड़ियों को नदी की तरफ बढ़ने का संकेत दे दो। सैनिकों का अवकाश समाप्त कर मोर्चा संभालने का आदेश पारित किया जाए। हरेंद्र प्रताप को जगदीशपुर में ही रुकना होगा, सबकी सुरक्षा के लिए। हम कल सुबह ही आरा के लिए प्रस्थान करेंगे। जाओ, जल्दी जाओ।
0: जैसी आपकी आज्ञा।
1: माना कि मेरे पास अंग्रेजों की तुलना में छोटी सेना है और संघर्ष बड़ा, किंतु ये सोचने विचारने का समय नहीं है। अब तो सिर्फ लड़ना है और आगे बढ़ना है।

0: महाराज की जय हो। महाराज, हमारे कुल देवता के आशीर्वाद से हमारे सैनिकों में जोश है, हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: महाराज, एक शुभ समाचार भी है, हमने दुश्मन को घेर लिया है, अब हमारी जीत निश्चित है। आप आदेश करें तो हम धावा बोलने के लिए तैयार हैं।
2: देखो, जल्दबाजी अच्छी नहीं है, संयम से काम लेना होगा। दुश्मन बहुत चालाक है, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना होगा। कोई भी गलत निर्णय दुखद परिणाम दे सकता है। सावधान रहना और समय के साथ चलना।
1: महाराज की जैसी आज्ञा। महाराज, हम पर भरोसा रखें, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है।
2: ठीक है, नदी की तरफ भी मोर्चाबंदी कर दो, दुश्मन भागने ना पाए। मैं तीसरे खेमे में हूँ, मुझे हर पल की खबर मिलनी चाहिए। जाओ, जल्दी करो।
3: जो आज्ञा महाराज।

0: महाराज की जय हो। महाराज, दुश्मन ने हमारी सेना के आगे हथियार डाल दिए हैं। हमारी सेना ने घेराबंदी कर रखी है, आप आदेश करें। पहली टुकड़ी के कई जवान शहीद हुए हैं महाराज।
1: मेरे प्रिय सैनिकों, तुम्हारा ये बलिदान मेरे ऊपर कर्ज है, इस राष्ट्र के ऊपर कर्ज है। हम सारे शहीदों के खून का बदला लेंगे। सैनिकों, सारे लोग काली पहाड़ी की तलहटी में आराम करें, लेकिन सतर्क रहें। मैं दो टुकड़ियां लेकर नदी के पास हूं, सावधान रहना होगा। साथियों, पराजय का स्वाद अंग्रेज सेना ने चख लिया है। धन्य है मेरे देश के सैनिकों, तुमने कम संख्या होने के बाद भी देशभक्ति और वीरता का जो सबूत दिया है, उसे ये राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। किलेदार सिंह को जगदीशपुर रवाना होने का आदेश है फौरन। प्रजा की रक्षा होना ही चाहिए।
2: भारत माता की जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
3: अंग्रेजी सेना की पराजय का समाचार सुन ब्रिगेडियर डगलस तथा जनरल लुगार्ड सेना लेकर आगे बढ़े।
4: हमारी इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी हमारी हार हुई। अब आप लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए?
5: मुझे तो लगता है कि कंपनी हमको वापस इंग्लैंड बुला लेगी।
6: ये तो बहुत बुरा होगा,
5: लेकिन हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी रोकने से काम नहीं चलेगा। घोड़सवार सेना और आगे जाएगी।
1: साथियों, अंग्रेज अपनी पराजय से बौखला तो गए हैं, पर लुगार्ड और डगलस चतुर सेनापति हैं। उन्होंने सतर्क होकर रणनीति बदल ली होगी। हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। हमारे पास एक से बढ़कर एक सेनानायक हैं, परंतु इन सारे योद्धाओं को अलग करना होगा, मतलब शक्ति को विभक्त करना होगा। हम सब छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग अलग हमला करेंगे।
5: विद्रोही सेना झंझनपुर में है, पर अमर सिंह नहीं। हमको खबर मिला है कि अमर सिंह आरा में है। चलो आरा की तरफ कूच करो, बचने न पाए। जगदीशपुर से सेना हटा लो।

अंग्रेजों के पास विशाल सेना थी। उधर अमर सिंह ने अपनी सेना को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया। क्रांतिकारी सेना एक

0: दीर्घ उपद्रव करती तो अंग्रेजी सेना उसे दबाने के लिए पहुंचती। उधर क्रांतिकारी खाली स्थान पर जाकर दूसरी टुकड़ी को घेर लेते। अमर सिंह आरा में थे, अंग्रेजों ने जगदीशपुर की नाकेबंदी कर दी कि अमर सिंह जगदीशपुर न पहुंच पाए। अमर सिंह ने भी चाल चली, अफवाह फैला दी कि आरा में क्रांतिकारी सेना ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सेना ने आरा की तरफ कूच किया, उधर अमर सिंह चुपके से जगदीशपुर पहुंच गए।
1: वाह, क्या दिमाग पाया था अमर सिंह ने, कमाल की चतुराई है।
0: डगलस घबरा गया, उसने अमर सिंह को मारने के लिए कई इनाम रखे थे। वो 7,000 सैनिक लेके जगदीशपुर पहुंचा और 7 टुकड़ियों को अलग अलग जगह से आक्रमण करने को कहा। 6 टुकड़ियां आगे बढ़ी किंतु 7वीं टुकड़ी आगे बढ़ने में विलंब कर गई। बस यही अवसर देख अमर सिंह चक्रव्यूह से बाहर हो गए। डगलस हताश हो गया।
2: जनरल लुगार्ट, समझ में नहीं आता उस काले आदमी को कैसे पकड़ा जाए। अमर सिंह चालाक है, वो चूहा है, हमला करके बिल में घुस जाता है। आई एम हेल्पलेस।
3: मिस्टर डगलस, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें अमर सिंह को उसी के स्टाइल से मारना ही होगा। हमने सेना के ऑफिसर से बात की है, हम फिर से जोरदार हमला करेगा, पूरी सेना को दांव पर नहीं लगाएगा, टुकड़ों में हमला करेगा।
2: गार्ड, यू आर जीनियस, रियली यू आर अ जीनियस।
0: 19 अक्टूबर 1858, अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को चालाकी से घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ, 400 में से 300 क्रांतिकारी शहीद हो गए। बचे क्रांतिकारी शेर की तरह झपट झपट कर शत्रुओं पर हमला करते रहे और शहीद होते गए। अब केवल 3 बचे रह गए, उनमें से एक अमर सिंह। अमर सिंह था। हाथी पर बैठे अमर सिंह को दुश्मन ने पहचान लिया, लेकिन वीर अमर सिंह हाथी से कूद कर जंगल में गायब हो गए। इन वीरों ने न तो अंग्रेजों से हार मानी और न ही कोई समझौता किया। उधर जगदीशपुर में 150 स्त्रियों ने तोप के सामने खड़े होकर स्वयं पलीता लगा लिया। उनके रक्त रंजित अंग इधर उधर बिखर गए। बाद में वो आजादी के फूल बनकर खिले। अमर सिंह कहां गया और कैसे उसका अंत हुआ, ये किसी को ज्ञात न हो सका।
4: भैया क्या थे वे लोग, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए मिट गए पर झुके नहीं, सिर कट गए पर रुके नहीं।
5: दादा क्यों ना हम सब मिलकर अमर सिंह पर एक नाटक तैयार करें, जिससे और लोगों को मालूम पड़े कि वीर कैसे होते हैं। नौजवान पीढ़ी का अमर सिंह से परिचय होना जरूरी है। तो हम तो तैयार हैं, तो आप हो जाइए लेखक और निर्देशक, हम अभिनेताओं को इकट्ठा करते हैं, 2 दिन बाद हम सब नाटक का अभ्यास शुरू कर देंगे।
0: अरे ये तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया, हमारी तरफ से हमारे देश के शहीदों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक नाटक बचपन में मैंने देखा था, चंद्रशेखर आजाद, उसमें एक गाना था, भेड़ियों से रहम की उम्मीद करना छोड़ दो, भेड़ियों से रहम की उम्मीद करना छोड़ दो, अपनी इन सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ दो, भेड़ियों से रहम की उम्मीद करना छोड़ दो। भारत माता की जय। और फिर आजाद खुद को गोली मार लेते हैं। अरे तुम लोगों ने तो मुझे जोश दिला दिया। चलो मैं दुकान पर चलता हूँ, तुम नाटक के कलाकारों को इकट्ठा करो।
6: अच्छा।

निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंदित रहा.
1: इट इज अ टाइम टू बिड गुडबाय टू द ओल्ड अँड द ऑर्डिनरी अँड टू अवेकन द ब्युटी विद इन. दॅट टाइम इज नाव. इट इज टाइम टू वेक अप and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
2: Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and welcome, sister.
3: Om Shanti.
2: Welcome to Being Bliss.
3: Thank you.
2: Sister, last kuch episodes mein humne bahut achhi achhi baatein aapse suni. Kaafi क्लैरिटी आई. लेकिन जो बात आई थी दुआ की और दुआ के ऑपोजिट की, जेलसी की, अपने मन की थॉट दूसरे के मन की थॉट, इधर का तीर उधर, उधर का तीर इधर, उसमें कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर आ रहा है.
3: वी आर नाउ चूजिंग अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, राइट. हमें बहुत एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसको हम कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट है. एक छोटा चेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है. अनअवेयर ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, जहां ना रूल्स ऑफ द गेम नहीं पता, लॉज नहीं पता कौन से वर्क कर रहे हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई, ब्लेम गेम किया हुआ है कम्प्लीटली. ये इस वे ऑफ थिंकिंग से शिफ्ट करना टू अ वे ऑफ थिंकिंग जहां कम्प्लीट अवेयरनेस, कम्प्लीट नॉलेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्प्लीट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितना ईजी था बोलना उन्होंने ऐसा किया तो बुरा लगेगा, और कितना चैलेंजिंग है ये बोलना कि भले उन्होंने ऐसा किया मुझे फिर भी अच्छा सोचना है. कितना ईजी है बोलना वो जेलस है तो वो है बुरे, लेकिन कितना एक अप शिफ्ट करना है टू से अगर वो जेलस है तो वो दर्द में है, उनके प्रति अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है, कंपैशन. सो ऑब्वियसली द शिफ्ट इज वेरी बिग. अब ये शिफ्ट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा हमें एक प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये शिफ्ट हमारे जीवन को भी कम्प्लीटली शिफ्ट कर देगा.
2: नहीं, बट थोड़ा सा फियर भी होता है ना.
3: फियर किस बात का है
2: भाई? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं क्यों कार्मिक अकाउंट बनाऊ, ये इसलिए आर्टिफिशियल बिहेवियर में भी. पहले मैं प्यार, वो मेरा प्यार था, भले अगला बोले यार कैसी बात करता है, लेकिन मैं अब मुझे वो प्यार करने जाता हूँ, प्यार से बात करना चाहता हूँ, प्यार की एनर्जी जबरदस्ती के भेज रहा हूँ.
3: बात करने के

0: तरीके से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की सोच, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज आप कह रहे हैं कि अंदर मेरा प्यार है, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूं। इसका ऑपोजिट भी होता है कि अंदर बहुत कुछ पकड़ के रखा है, लेकिन ऊपर बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत मीठा बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह की एक डिफरेंट चीज हमें दिखाई दे कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, बाहर गुस्सा नहीं होगा, बाहर सिर्फ एक बात करने का तरीका थोड़ा सा लाउड हो सकता है, लेकिन अंदर जो एनर्जी है वो बहुत प्यार की और एक्सेप्टेंस की है, तो वाइब्रेशन कौन सा क्रिएट होगा?
1: वाइब्रेशन तो प्यार के होगा।
0: एब्सोल्युटली। अब अगर अंदर एनर्जी क्रिटिसिज्म की है, अंदर एनर्जी हर बात पर एक थोड़ा सा डिसकंफर्ट क्रिएट करने की है, अंदर एनर्जी में रिजेक्शन है लेकिन शब्दों में एक्सेप्टेंस है ना, अंदर से इफ आई फील क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बैठे, एंड बाहर से बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, बहुत अच्छा है, तो ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट करेगा? हम आज क्या कर रहे हैं, अपने एक्ट कर्म बाहर को देख रहे हैं, अपने बोल को चेक कर रहे हैं, और अंदर हम बहुत कुछ अक्यूमुलेट करके रख रहे हैं, और फिर हम ये पाते हैं कि कितनी मेहनत करके भी हमारे रिश्ते उतने सुंदर है नहीं, हमारे जीवन में उतनी खुशी है नहीं।
1: लेकिन अब मैं एक्सेप्ट करूं कि वो बात करे नौकर किचन में तो भी मैं प्यार दूं, वो मेरी बात तीन बार बोलूं नहीं सुने तब भी प्यार करूं, मैं सारा कुछ अपने आप को पूरा 360 डिग्री चेंज नहीं कर पाता।
0: प्यार करूं मीन्स क्या करूं? प्यार करना नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना कि गुस्सा करना नहीं है। एज लॉन्ग एज सपोज मैं यहाँ बैठकर आपके बारे में कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट करूं, अंदर आपको देख देख कर एक मेरी रनिंग कमेंट्री नहीं चलती रहे, यानी एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो हमारी लोगों को देख देख कर या लोगों के बारे में सोच सोच कर जो चलती है, दैट रनिंग कॉमेंट्री जो अंदर चलती है, दैट इज रेडिएशन, दैट इज वाइब्रेशन। अगर मैं वो नहीं चला रही हूँ तो मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। सी दिस, जो आप कह रहे हैं ना, प्यार करने की मेहनत नहीं करनी है,
1: फोर्स नहीं करना है।
0: लाइक अ डिफरेंस इज बिटवीन, एक मदर को ले लें, वो अपनी बेटी को भी देख रही है और अपनी बहू को भी देख रही है। ठीक है, बेटी को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं और बहू को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं, ये डिफरेंस चेक करना है। ये चेक करना है। बेटी की भी कई बातें गलत लगेंगी। ऐसे थोड़ी है कि बेटी सब कुछ सही करती है और बहू कुछ सब कुछ गलत कर रही है। दोनों अपने अपने तरह से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन बेटी के प्रति जो एनर्जी क्रिएट होती है वो मोर एक्सेप्टिंग होती है, और जो बहू के प्रति एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि वहां अभी फाउंडेशन नहीं है, वहां फाउंडेशन
1: नहीं है।
0: आई यू नीड अ फाउंडेशन,
1: समझ में आया?
0: एक फाउंडेशन चाहिए ना उस रिश्ते के लिए, वहां अभी वो फाउंडेशन नहीं है, और उस रिश्ते में पहले के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के लेबल्स लगे हुए हैं। ये रिश्ता तो थोड़ा सा
1: नाजुक होता है,
0: हाँ, इसमें तो सोचकर, इस रिश्ते में तो बनाना पड़ता है। माँ बेटी के रिश्ते में तो कभी नहीं बोलते बनानी पड़ेगी इनसे, इनसे अच्छी तरह से ध्यान रखो, अच्छी तरह से बननी चाहिए। वहां लेबल क्या है? ये तो है ही नेचुरल ब्यूटीफुल रिश्ता। तो इससे जो डेलिकेट, जिनको हम कहेंगे रिश्ता है, उस रिश्ते में पहले से एक फिल्टर है, एक लेबल है, और दोनों तरफ के लोगों के पास है वो, और इसीलिए दोनों की जो वाइब्रेशन है वो उस लेबल के थ्रू जा रही है। अब आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है कि किसी के भी प्रति, चाहे वो स्टाफ है चाहे वो कोई भी है, आप सिर्फ एक धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे कि सारा दिन औरों को देखते हुए मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है, अभी चलो लेट्स से शब्दों में भी नहीं आ रही, मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है उस कमेंट्री की क्वालिटी क्या है?
1: मेरी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मेरे पास तो 20-20 साल से स्टाफ है, वो लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, बुरा मानने वाली फैमिली है, ये आप कैसे बात करते हो, दोस्त बोलते हैं यार उससे ऐसी। मैंने बोला अगर उसको इतना बुरा लगता है वो 20 साल से क्यों है?
0: वो आपसे खुश है कि नहीं, वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ। मैं अपने से खुश हूं कि नहीं इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, लोग क्या बोल रहे हैं इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट।
1: अपने से खुश

0: बात नहीं सर, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, दैट्स इट।
1: अपने से खुश मतलब मेरी एनर्जी कंफर्टेबल है कि नहीं, मेरे अंदर एक कामनेस है कि नहीं, या एक आवाज चलती रहती है सारा दिन। ये जो इनर आवाज है ना, ये आवाज अगर क्रिटिकल है, ये आवाज अगर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर ये आवाज सारा दिन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या जो हमने लास्ट टाइम देखा कि ये आवाज दूसरों की खुशी को देखकर खुश नहीं है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। आपको ये पता नहीं चल सकता अगर मैं आपकी सफलता को देखकर खुश नहीं हूं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगी ये बात। आई विल बी सो नाइस, सो अप्रिशिएटिव, सो मोटिवेटिंग, आई बी वेरी नाइस विद वर्ड्स, मेरे शब्द बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी कॉन्वर्सेशन सिर्फ मुझे पता है। तो लोगों के लिए तो मैं बहुत अच्छी हूं, सब कहेंगे कितना अच्छी बात करते हैं, सभी से कितना अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, आपको सबसे अप्रिसिएशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप अंदर खुश नहीं होंगे। अपने से खुश मतलब अपनी खुशी, वो एनर्जी ब्लॉक हो रही है। क्यों ब्लॉक हो रही है? क्वालिटी ऑफ थॉट्स, इस पर मेहनत नहीं करनी है, प्यार करने में, प्यार देने में मेहनत नहीं करनी है, वो आपका नेचुरल स्वरूप है, आत्मा का नेचुरल स्वरूप है लव। अगर हम ये वाली कॉन्वर्सेशन को, जैसे आपकी सफलता को देखकर मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है कि इतना सारा मिल गया, मतलब इतने थोड़े टाइम में इतना अचीव कर लिया, अब ये एक थॉट ही सपोज, मैं इसको समझती भी नहीं कि ये गलत थॉट है, मेरे को लगता है नेचुरल है ना, इतना थॉट क्रिएट कर लिया, लेकिन ये एक थॉट भी जो इस तरह की क्वालिटी की है, इसने मेरी नेचुरल खुशी को ब्लॉक किया है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब मैं क्या करूं? नाउ आई एम अवेयर कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन, इस तरह की थिंकिंग मेरी खुशी के लिए डैमेजिंग है। लीव अलोन कि वो दूसरे तक पहुंच के क्या करती है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये मेरी खुशी को, क्योंकि वी आर सेइंग बीइंग ब्लिस, आई बीइंग ब्लिस, नॉट आई रेडिएटिंग ब्लिस, वो तो अपने आप हो जाएगा नेचुरल। बीइंग ब्लिस, ये मेरी खुशी को कैसे ब्लॉक करती है? तो जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन चल रही है, मैं इतना तो अटेंशन रख सकती हूँ कि धीरे धीरे उस कॉन्वर्सेशन को चेंज। सपोज आप मुझे बोले आकर, उनको देखो इतने गलत काम करते हैं फिर भी कितना अचीव कर लिया, इतनी मेहनत भी नहीं की फिर भी इतना अचीव कर लिया, ये आपने बोलना शुरू किया। और सपोज मैंने फिर एकदम से ऊपर से बोला, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक मैंने बोला, हाँ आजकल के जमाने में तो कुछ भी होता है, ऑनेस्ट जो नहीं है वो लोग भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, ये मेरी एक तरह की कॉन्वर्सेशन। दूसरी तरह की कॉन्वर्सेशन, अच्छा है ना, श्रेष्ठ कर्म तो कुछ किए होंगे ना उस आत्मा ने, सफलता तो ऐसे मिल ही नहीं सकती, अच्छा है उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, अभी देखो कितना अच्छा आया, तो जीवन में खुशी आ गई ना। अब मेरी ये थॉट्स मतलब मेरी ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे आपकी भी कॉन्वर्सेशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकती है। मन में जब एक थॉट चलती है तो उसके बाद एक और थॉट भी आती है। जैसे जब हम कुछ करना शुरू करते हैं तो एक थॉट आती है करो, दूसरी थॉट आती है नहीं ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी, फिर ये थॉट बोलती है नहीं तो क्या हुआ, एक बार करके देख सकते हैं ना। तो हमेशा ऐसे दो आती है। वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन, वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन इनसाइड, जैसे कि दो लोग बोलते हैं अंदर। कई लोगों को लगता है ये दो पर्सनालिटी है अंदर, दो पर्सनालिटी नहीं है, दो थॉट्स है। क्यों दो थॉट्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे अंदर दोनों संस्कार हैं। मेरे अंदर नेचुरल प्यार का भी संस्कार है और मेरे अंदर अक्वायर्ड ईर्ष्या का भी संस्कार है। तो जो मेरा ईर्ष्या का संस्कार है वो थॉट क्रिएट करेगा, इतना मिल गया उनको। जो मेरा नेचुरल प्यार का संस्कार है, चाहे वो एक धीरे से ही थॉट क्रिएट करेगा, छोटी सी क्रिएट करेगा, ठीक है अच्छा है ना, तो क्या हुआ, अच्छा है, खुश है। अब क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपनी कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है और कुछ नहीं करना है। वी डोंट हैव टू, यू नो, विद थिंकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम दूसरे को बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी के लिए, ऐसा क्यों सोचते हो किसी के लिए, ऐसा सोचो ना क्यों, बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। ऐसा हम अपने लिए नहीं बोल सकते, हम जोर से ही बोल रहे हैं अपने आप के साथ, क्योंकि इतना क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं, लेट मी ग्रेजुअली चेंज, क्योंकि मेरी खुशी ब्लॉक होती है। हमें अब सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना है, लोग क्या बोलते हैं।

0: doesn't matter. Even if I get the approval of everybody around me, do I approve of myself? That I have to ask. Kyunki sara din ab hume ye samajh mein aa gaya ki energy flow kar rahi hai ek direction se dusre direction.
1: I to approve negative kaam pe bhi to logon ki karti hogi na.
0: I approve
1: of myself. मैंने तो ठीक किया,
0: yes.
1: उसको तो डांटना ही चाहिए था, yes. ऐसे लोगों को तो मार पड़नी चाहिए, मैं मारा अच्छा
0: लेकिन
1: किया।
0: अब हमारा पैरामीटर बदल गया ना, पुराना बिलीफ सिस्टम से हम गुस्से को अप्रूव कर रहे थे, अब हम एक नए जीवन, इसीलिए तो आपने कहा ना वो थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही है,
1: नए बिलीफ की बात
0: अभी हमें वो क्यों थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, जो आपने कहा बहुत स्ट्रगल लग रही है आर्टिफिशियल, क्योंकि अब एक नए बिलीफ सिस्टम से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं अभी भी
1: पुराने कंफर्ट जोन से हटके, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है।
0: कोई भी कंफर्ट जोन को तोड़ना इट इज नॉट, इसके लिए सबसे इजी तरीका पहले है कि रोज ये इन्फॉर्मेशन तो जरूर भरनी है अपने अंदर, यू नो दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो रोज लेनी है, क्योंकि पुरानी बहुत डीप रूटेड है, पुरानी बहुत डीप, रोज अगर 15 मिनट आधा घंटा ये लेंगे, इट विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन माय थॉट्स एंड देन होल डे अवेयरनेस, क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, लेकिन अब अपनी थॉट को चेक करके कि मुझे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है, क्यों व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है, मुझे नॉलेज है, अभी मेरा वो पूरा कम्प्लीटली सिस्टम में नहीं आया, लेकिन अभी मुझे नॉलेज तो है कि ये आत्मा भी कैसी है ओरिजिनली, ये भी एक प्योर ब्यूटिफुल सोल है जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ा गलत कर्म कर दिया है, लेकिन व्यक्ति कैसा है, सो इवन इफ यू डन अ वेरी वेरी बैड कर्म, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, मेरे पहले एक थॉट ऑफ नॉलेज तो क्रिएट हो जाए कि व्यक्ति ओरिजिनली बहुत प्योर एंड ब्यूटिफुल है, कर्म जो अभी किया वो गलत है, तो एटलीस्ट जो व्यक्ति के प्रति थॉट्स क्रिएट हो रहे थे ना वो कम हो जाएंगे, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट जो आपके साथ क्रिएट हो रहा है वो तब क्रिएट होता है जब मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ, अगर मैं आपके लिए एक अच्छी थॉट रख के आपने जो किया उसके बारे में सोचो तो भी मेरा आपसे जो कार्मिक अकाउंट बन रहा था वो नहीं बनेगा,
1: कभी कभी बोलते हैं ना कि इज अ नाइस मैन लेकिन रॉन्ग डिसीजन ले ली,
0: ब्यूटिफुल, बस ऐसे ही, नाउ एवरीवन इज अ नाइस पर्सन, क्यों, क्योंकि नॉलेज मिली, नॉलेज मिली, इट्स लाइक ये व्हाइट कुर्ता है लेकिन इसपे कुछ गिर गया, या ये कुर्ता ही गंदा, कैसा खरीदा, कैसा पहना, कैसी ड्रेस है, बिकॉज नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज से एक थॉट तो क्रिएट कर सकते हैं, अब अगर नफरत होने भी लगे, गुस्सा आने भी लगे, धीरे धीरे ओरिजिनली वो आत्मा ब्यूटीफुल है, उस आत्मा के साथ के कार्मिक अकाउंट को थोड़ा सा हमें अभी पहले हल्का करना है, अब उन्हें हमें उनकी गलती भी बतानी है जो अगर उस रोल में है, जैसे चाइल्ड या स्टाफ या कोई भी फ्रेंड्स, हमें उनकी गलती भी बतानी है, नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एंगर
1: टू डिसिप्लिन
0: टू असर्टिवनेस, डिसिप्लिन तो हम एंगर के साथ भी कर रहे थे,
1: बींग असर्टिव
0: क्योंकि बहुत बार बहुत लोग कहेंगे कि नहीं काम होने वाला है, ऐसे सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं, सिर्फ प्यार से बोलते जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हम,
1: मैं थोड़ा सा प्यार नहीं, मैं हो गया था इनडिफरेंट, जो हो रहा है होने दो,
0: नहीं
1: ये टूटता है टूटने दो, वो गलती करता है करने दो, ये छोड़ दो, बात ही नहीं करनी, मुंह कम खोलो,
0: क्यों, क्योंकि मेरा बोला हुआ इनको पसंद तो आती नहीं बात, तो फिर ठीक है मैं नहीं बोलती,
1: फिर कार्मिक अकाउंट वाली बातें और बाकी काफी बातें आपसे सुन के,
0: लेकिन आपका जो रोल है अगर वो आपने उससे अलग हो गए तो वो भी तो कार्मिक अकाउंट हो जाएगा,
1: अच्छा रोल एज अ पेरेंट, हेड ऑफ द फैमिली, घर का बड़ा हूँ,
0: पेरेंट का बच्चे के साथ कार्मिक अकाउंट क्या है,
1: सही रास्ता बता,
0: रोल है ना, गाइड फैसिलिटेटर, अगर रोल से डिटैच हो गए,
1: हाँ इनडिफरेंट,
0: इनडिफरेंट, अगर मुझे अभी दिख रहा है कि आप इस कुर्सी से अभी गिरने वाले हैं,
1: हाँ.
0: मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं, जो आपको अभी ये गलती है गिर जाएंगे, एंड आई सिट बैक लाइक दिस, इनडिफरेंस, कौन सा कर्म क्रिएट हुआ,
1: और फिर ड्यूटी भी है ना फैमिली,
0: फिर कर्म कौन सा क्रिएट हुआ, कोई गिर रहा था,
1: बैड कर्म हुआ,
0: कोई गिर रहा था और उसको सहयोग नहीं दिया, तो ये तो रॉन्ग कर्म में चला जाएगा, तो इनडिफरेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड कर्म, रोल क्या है, मुझे राय देनी है,

0: तो फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी?
1: लो,
0: जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, फिर जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उसको आप रिसीव नहीं करते हैं। आपकी स्थिति का ध्यान रखते हुए, आपको अप्रिशिएट करके, अगर मैंने आपके काम को भी क्रिटिसाइज कर दिया, मतलब गलत बोल दिया, इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन जब आप पर अटैक कर दिया ना, देखो कोई भी किसी पर जब अटैक करता है, आप ऐसे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपकी ये बात गलत थी, आप हमेशा ऐसे करते हो, सामने वाला कहां चला गया? दर्द में। अब दर्द में जाने के बाद उसको कहते हैं आपको ना आगे से ऐसे करना चाहिए, वो तो सुनने की हालत में ही नहीं रहा अभी, वो उसका मन एक अलग डायरेक्शन में चला गया।
1: मैं जब गोल्फ खेलता हूँ ना तो कैडी है, थोड़े कुछ ज्यादा ही बोलने वाले भी होते हैं, अरे क्या शॉट मार दिया, आप खड़े ही रॉन्ग थे तो रॉन्ग ही जाएगा ना शुरू से। तो मैंने उसको बोला कई बार, मैंने बोले शॉट मारने से पहले क्यों नहीं बताया कि मैं रॉन्ग खड़ा था?
0: वही सहयोग देने की बजाय क्रिटिसाइज किया,
1: बाद में तो सब बोलने वाले।
0: लेकिन उसमें भी एक है कि वो आपको ये बोलेंगे कि ये जो आपने मारा ना, ये आपको ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा मार लेते तो ये बेटर हो जाता आपके लिए। लेकिन एक है आपने ऐसा किया, आप ऐसे हैं, आप ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, अब उससे आपकी गेम पर इफेक्ट आ जाएगा।
1: आप हमेशा रॉन्ग ही खड़े होते हो,
0: अब आपकी थॉट्स कैसे हो जाएंगे जब ये सारी बातें सुन लेंगे?
1: टोटली कंफ्यूज हो जाऊंगा,
0: कंफ्यूज एंड फीलिंग वेरी
1: वेरी लो कि मुझे खेलना नहीं आता।
0: My father said like this to me, my friend spoke like this to me, my boss spoke like this to me। अब जब ये हो जाएगी, मन की स्थिति ऐसी चली जाएगी, तो फिर जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो गोल्फ की गेम है चाहे ऑफिस में काम है, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, स्थिति डाउन होगी। अब जब ये सब हो गया तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी अपनी गलती को ठीक करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट होना चांसेस आर लेस, क्योंकि इट वॉज नॉट गिवन विद द राइट एनर्जी। वेन हमें किसी को चेंज कुछ करने के लिए कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी। चेंज करना, किसी को गलती बताना, ये छोटी बात नहीं होती है, ये छोटी बात नहीं है किसी को बताना कि ये आपने गलत किया है। जितनी बड़ी गलती सामने वाले की, जितनी बड़ी गलती उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट, मतलब लविंग और पावरफुल एनर्जी से देनी चाहिए, ताकि सामने वाला उस गलती को स्वीकार करने के लिए पहले तो स्वीकार करे, फिर उसके बाद उसको चेंज करे। ये तो दोनों बहुत बड़े काम है। कोई मुझे अगर बोले कि मैंने कुछ गलती की है, पहले बात तो मैं स्वीकार करूं कि मैंने गलती की है, फिर मैं उतना मोटिवेट हो जाऊं कि मुझे उस गलती को चेंज करना है। दोनों चीजों के लिए मुझे शक्ति चाहिए, नहीं तो एक मैं डिफेंसिव हो जाऊंगी, बाहर से नहीं भी अगर हो सके, आप बॉस है मैं नहीं बोल सकती आपको, अंदर से डिफेंसिव हो जाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था, ये तो हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते रहते हैं, मैं डिफेंसिव हो गई अपनी गलती के प्रति, मतलब मैंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। जब स्वीकार ही नहीं की तो चेंज करना तो होगा ही नहीं।
1: आउटसाइड स्वीकार गलती,
0: कौन करता है स्वीकार गलती? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो गलती उनको सही एनर्जी के साथ बताई नहीं गई होती है।
1: नहीं,
0: यस, आपने रिजेक्ट करके फिर गलती बताई, आपने व्यक्ति को रिजेक्ट किया कि आप ऐसे हो, और फिर उनको गलती बताई।
1: अगर कोई आदमी, समझो मेरा ड्राइवर की आपकी जो बात हो रही थी, उस दिन लेट आया, मैंने पूछा कि अगर सपोजिंग लेट क्यों आया, वो 200 कहानियां बना देगा, नहीं मैं तो आ गया था, मैं तो नीचे खड़ा था, मैं लेट नहीं आया, मैंने नौकर को बता दिया था कि साहब को बोल देना, मैंने भाभी जी को बोल दिया था कि मैं आ गया, उसकी ड्यूटी है मुझे रिपोर्ट करना, तो गलती बांधते कहां है? उसमें मेरी क्या, उसमें एनर्जी रॉन्ग थी?
0: एनर्जी रॉन्ग,
1: मैं रॉन्ग तरीके से पूछा, व्हाई यू लेट,
0: पूछा भी और अंदर सोच सोच के उसको कैसी एनर्जी ऑलरेडी भेज दी थी।
1: हो सकता है उसने इमेजिन कर लिया।
0: सी, एनर्जी इमेजिन नहीं की जा सकती है,
1: कि एनर्जी इमेजिन नहीं की, तो पास एक्सपीरियंस है कि साहब डांटता है, लेट आते हैं, तो पहले से ही उसने इमेजिन कर लिया।
0: तो ये चीज कोई एक बारी में नहीं वर्क होगी, ये इक्वेशन, ऑब्वियसली इट्स माई वे ऑफ लिविंग विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैंने हर बार, सपोज मैंने 10 साल से किसी को क्रिटिकल एनर्जी दी हो और हर बार उनके बारे में ऐसा चिंतन किया हो, और आज पहली बार मैंने वो क्रिटिकल एनर्जी नहीं दी, तो फर्स्ट टाइम में नहीं मैजिक क्रिएट होगा ना।

0: दूसरे का संस्कार है सिस्टर हाँ। कि हर बात में कभी भी हाँ। अपनी गलती नहीं मानना, झूठी बोलना हाँ। या अपने आप को बोलना मैंने किया ही नहीं डिफेंसिव, तो उसको फिर मेरी राइट एनर्जी से भी मैं बोलूं।
1: अच्छा, और अगर रॉन्ग एनर्जी से बोले?
0: नहीं, रॉन्ग एनर्जी की
1: बात बोलना तो है ना, अपने ये ड्राइवर को बोलना तो है ही ना कि वो लेट आया एंड दैट ही हैज टू कम ऑन टाइम फ्रॉम आगे से, तो कौन से दो ही ऑप्शन है, नाराज हो जाए और ये भी सोचे ये हमेशा ऐसे करता है, यू नो ऑल दैट टर्बुलेंट एनर्जी।
0: अगर मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस दिन हाँ, लेट हो भी गया हाँ, और कुछ ना बोलूं तो
1: कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर आपका रोल ऑफ डिसिप्लिन बोलना ये नहीं है कि लेट हुए, बोलना ये है कि आगे से आपको हमेशा टाइम पर आना है।
0: लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं बोलूं तो वो खुद ही आके बोलते हैं सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया सॉरी,
1: तो फिर आपसे अच्छी एनर्जी गई है, ये सत्य है
0: कि मुझे तकलीफ नहीं हुई ना उस दिन
1: तो एक्सेप्ट कर लिया ना,
0: ठीक है आगे हो गया तो मुझे कहीं जाना भी नहीं था ना।
1: रिजेक्ट नहीं अगर किया तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया तो सामने वाले के लिए भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना वो इजी हो जाएगा। अब इसके साथ अगर आप अप्रिशिएट भी कर दो उनकी बाकी विशेषताओं को
0: और बोल दो अरे यार तुमने खुद आके बोल दिया सॉरी वेरी गुड,
1: वो तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन। और दूसरा कि आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आप जो काम करते हैं वो इतना एक्यूरेटली करते हैं, एक ये वाली संस्कार है विच फॉर यू आई फील यू नीड टू वर्क ऑन योर स्टफ, कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने इस एक संस्कार पे वर्क करें, क्योंकि चलते चलते आपको इस संस्कार के साथ हो सकता है प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपने एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर इंस्ट्रक्शन भी दिया एंड ये भी हो सकता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन को आपको डिसिप्लिन बनाना पड़े, विच मीन्स देखे कल से आप लेट या आप एक भी बार अब इसके बाद लेट नहीं आ सकते, अदरवाइज एक्शन।
0: लेट हो गया कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर दो
1: जनरली, मतलब लेट इज वन थिंग बट इट कुड बी लाइक ऑफिस में कुछ या कोई भी बात, आप एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी रख सकते हैं उस पर, प्रोवाइडेड राइट एनर्जी दी है। और ये बोलने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उनकी वो गलती चित पर नहीं रहनी चाहिए, दे दी काम खत्म। क्यों चित पर नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि वो नहीं तो अगली गलती के लिए वो वाली बात जो पकड़ के रखी है एक तो वो रेडिएट करती जाएगी और फिर वो वाली बात नेक्स्ट टाइम फिर बैक रेफरेंस फिर निकल कर आएगी। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, आप ऐसे ही करते हैं, दिस शुड नॉट हैपन, दिस विल क्रिएट दैट अगेन टर्बुलेंट एनर्जी जो फिर सामने वाला उस बात को स्वीकार नहीं करे। तो सिर्फ ये दो बातों का ध्यान रखना है, एक व्यक्ति पे अटैक बिल्कुल नहीं, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड विशेषता प्योरिटी लवली सोल एंड विद वेरी गुड क्वालिटीज, कुछ एक संस्कार लेकिन वेरी गुड क्वालिटीज। अब ये वाली गलती, अब गलती के बारे में भी जब बात करें तो जो गलती हो चुकी उसके बारे में बात करना इट्स नो यूज, इम्पोर्टेंट अब आप क्या करेंगे और इसके बाद से आगे से आप कैसे काम करेंगे। फोकस ऑन हाउ टू चेंज द थिंग, गलती की क्यों, कैसे की, करते क्या हो, समझ नहीं आता क्या, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, टर्बुलेंट एनर्जी, ये एंगर की एनर्जी है। और असर्टिवनेस, काम जो हुआ गलत हुआ सिर्फ आगे के लिए बात करेंगे। सी एंगर, ये बहुत थिन लाइन है, इसको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा, एंगर पास्ट के बारे में बात करता है हमेशा, एंगर हमेशा पास्ट के बारे में बात करेगा। जैसे आपने उस दिन कहा वो दरवाजा टूट गया कांच का इतना बड़ा, एंगर क्या बोलेगा, इतना महंगा दरवाजा लगवाया था, पहले तो मैंने लगवाने के टाइम ही तुमको बोला था कांच का दरवाजा नहीं लगाओ किचन में, लगाना नहीं चाहिए था, ध्यान से नहीं खोला होगा तुमने, नहीं तो हो ही नहीं सकता कांच का इतना बड़ा दरवाजा टूट जाए। दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जो हो चुका है जो बीत चुका है। एंगर ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट,
0: ये पॉइंट बहुत अच्छा है,
1: ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट, देन एंगर विल से तुम हो ही केयरलेस, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कितनी बार देखा तुम केयरलेसली ये तोड़ देती हो वो गिरा देती हो, तो आज दरवाजे को तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम केयरलेस हो। देन एंगर अटैक्स द पर्सन, टॉक्स अबाउट द पास्ट, अटैक्स द पर्सन। असर्टिवनेस, पास्ट के बारे में तो जाएगा ही नहीं, व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेगा नहीं, असर्टिवनेस

0: सिर्फ कहेगा ये ऐसा हो गया है, अब हमें इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एंड आप ध्यान रखेंगे कि आगे से भी ये ऐसा होगा, फुल स्टॉप. एंड यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, यू नो, बच्चा है, स्टाफ है, यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट मेथड विल चेंज, एनर्जी विल चेंज.
1: थैंक यू सिस्टर, आपने फुल स्टॉप कहा, लेकिन मुझे अब कॉमा करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक.
0: श्योर, थैंक यू. ओम शांति.
1: नमस्कार. थैंक यू. ओम शांति.
2: If we create critical thoughts about the other person, but speak very sweet words, we are still sending them negative vibrations. Slow down this inner conversation, because it blocks our natural energy of happiness and love. Irrespective of the karma that the other person does, always remember they are a pure, beautiful soul. This consciousness keeps our flow of love natural and radiates respect to them. When we have to give a correction for someone's mistake, it has to be given with vibrations of love. Negative energy from us makes them justify their mistake and then not correct it. Anger attacks the person and talks about the past. Assertiveness talks about the mistake and solution.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जिन हाथों में हैंडल होते, पैरों के तले पैडल होते, दबती उठती पैडल होते, भर जाती मुरादों की झोली, भर जाती मुरादों की झोली।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये दिल कब लहराता था हर एक से कतराता था, ये दिल कब लहराता था हर एक से कतराता।

इतना उकसाया, दिल रो के रुक ना पाया, तुमने इतना उकसाया, दिल रो के रुक ना पाया, मेरे एहसास में आग लगा।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिमा का स्वागत करती हूँ। और आज ज्ञान से रूबरू इस कार्यक्रम में ज्ञान के पीड़ों से छुड़ाकर कुछ बातें आज आपके बीच लेकर आई हूँ। और आज हम चर्चा करते हैं, हाँ, जीवन को जो भी ईश्वर के द्वारा जो भी पुरस्कार मिला है, कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें लगता पुरस्कृत किया गया है ईश्वर के द्वारा, लेकिन हम कभी कभी उसे समझ नहीं पाते हैं। तो जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार बनाए, हमेशा यही सोचे कि ईश्वर का दिया हुआ पुरस्कार है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं, जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार बनाए। तो जैसा कि कहा जाता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व की प्रशंसा केवल कहते हैं कि शमशान में ही होती है, लेकिन अगर कहते ही ऐसा है, लेकिन अगर यह कथन पूर्ण रूप में सत्य नहीं है, क्योंकि हम अनेक आयोजन भी अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित होते हुए देखते हैं। ऐसे सम्मान के नेपथ्य में यही उद्देश्य होता है कि समाज के अन्य लोग भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो सके। कई ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं जो श्रेष्ठ चरित्र, शुद्ध व्यवहार और श्रेष्ठ कर्मों से प्रशंसा योग्य होते हुए भी उनकी जो है निंदा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रशंसकों की तुलना में आलोचना की संख्या अधिक होती है। हाँ, उसमें आलोचक जो होते हैं उनकी संख्या आप देखना अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर यही पाएंगे कि संसार में लगभग हर व्यक्ति के अंतर्मन में जो होता है प्रशंसा और सम्मान की आकांक्षा जो होती है, यह बात अलग है कि किसी किसी को अपनी इस आकांक्षा का आभास नहीं होता, लेकिन उनका अंतर्मन जो है वो प्रशंसा और सम्मान की आकांक्षा रखती है। तो किसी किसी को इसकी आकांक्षा का क्या होता है, आभास कभी कभी नहीं होता है। सम्मान पाने वाले को जो है उनकी निंदा तभी मतलब होती है जब दूसरे लोगों में उसी प्रकार के या उससे अधिक सम्मान पाने की इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा अपूर्ण रहने पर किसी न किसी विधि से सम्मानित व्यक्तियों की निंदा करके उनकी छवि बिगाड़ने की प्रयास की जाती है। और एक तरफ हम ये भी देखते हैं, सम्मान और प्रशंसा के जो भूखे लोगों की पीड़ा भी दोहरी होती है। एक ओर उन्हें किसी की प्रशंसा सुनना सहन नहीं होता, दूसरी ओर स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए उनके कान जो हैं वो व्याकुल रहते हैं। सम्मान के प्रति ऐसे आसक्त लोग जो होते हैं दूसरों को सम्मानित होते देख ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। ऐसा करके वे अपनी प्रशंसा और जो योग्य है, जो भी उनकी बची खुची जो भी योग्यता है या जो

विशेषताएं हैं उसे भी वो गवा बैठते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार बनाएं। जैसा कि हम देखते हैं, यदि किसी की प्रशंसा कम होती है तो निंदा भी कम होती है। इसलिए समाज के एक बड़े समूह को जिसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती, लेकिन जिनकी प्रशंसा अधिक बड़े स्तर पर होती है, तो उनकी निंदा और अपमान जो है वो भी बड़े स्तर पर होती है। निश्चित रूप से समाज के एक बड़े वर्ग को उनकी जानकारी मिल जाती है। यदि सम्मान पाने की भावना के साथ कार्य किया गया तो प्रशंसा भी होगी, आलोचना भी होगी, निंदा प्रशंसा का समाधान आध्यात्म के मार्ग पर मिल सकता है। जो व्यक्ति को निंदा प्रशंसा से ऊपर उठाकर एक ऐसे शिखर पर विराजित करता है जहाँ सर्व प्राप्तियों की सूक्ष्म फुहारें उसके अंतर्मन में बरसती हुई अनुभव होती है। इस शिखर पर सामाजिक सम्मान और प्रशंसा जो है वो तुच्छ अनुभव होने लगते हैं। इससे होता क्या है, सभी प्रकार की जो भौतिक इच्छाओं और आकांक्षाओं की जो भी ये होती है आकांक्षा इसकी, उससे मुक्त रहने का यह अलौकिक आध्यात्मिक तरीका है। मन की यह अवस्था जो होती है वो व्यक्ति को मैं और तू तू के चक्कर में जो आते हैं उससे ये बाहर रखती है। जिसने सम्मान नहीं चाहा उसका कोई अपमान भी नहीं कर सकता, और जिसने प्रशंसा नहीं चाहिए उसकी कोई निंदा भी नहीं कर सकता। स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से मन की यह अवस्था बन सकती है। यह अवस्था सर्व प्राप्तियों का जो होता है वो अलौकिक अनुभव स्वतः ही करवाती है। एक होता है अध्यात्म के पथ पर निरंतर चलने से मन की यह जो अवस्था होती है वो व्यक्ति के स्वभाव संस्कार में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। और ये जो होता है यह अलौकिक उपलब्धि समाज से जो प्राप्त सम्मान व पुरस्कार की तुलना में अनमोल है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आगे देखते हैं जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार कैसे बनाएं। तो हमारा आज का विषय है जीवन को ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार बनाएं। जैसा कि हम देखते हैं जीवन यापन हेतु सीमित मात्रा में भौतिक हो जो साधन होते हुए भी मन की यह जो श्रेष्ठ अवस्था है वो अवस्था अपने आप में संपूर्णता संपन्नता और निश्चिंतता का अनुभव कराते हुए जो है जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करती है। सांसारिक दृष्टिकोण से यह जो है अवस्था जीवन की मुख्य धारा से विपरीत अवश्य अनुभव होगी, क्योंकि हमारा समाज जो है वो भौतिक उपलब्धियों की कसौटी पर ही व्यक्तित्व का आकलन करता है। आत्मा की जो यह श्रेष्ठ स्थिति जो होती है हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। करोड़ों

इसे ही कोई चूंकि बिरला होते हैं वही समझदारी से स्वयं को उस अनुरूप गढ़ पाता है। आश्चर्य की बात है कि समाज ऐसे बिरले व्यक्ति को मूर्ख ही समझता है। ईर्ष्या युक्त मानसिकता से ऊपर उठने के कारण ऐसे व्यक्ति सामाजिक आलोचना से प्रभावित नहीं होते बल्कि आत्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत होकर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा क्योंकि समाज जो है ना, ऐसी महान आत्माओं के जीवित रहने तक उन्हें कौड़े तुल्य समझा और मरणोपरांत क्या करते हैं, अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने या पर्दा डालने के लिए क्या करते हैं, उन्हें देव तुल्य घोषित कर दिया। आवश्यकता यह है कि हम इस अध्यात्म की शरण में आकर स्वयं को दिव्य गुणों से इतना उत्कृष्ट बनाए कि हम स्वयं ही स्वयं का सम्मान और प्रशंसा कर सके। हमारा चरित्र जो है श्रेष्ठता को उस पराकाष्ठा को स्पर्श करे जहाँ सम्मान प्रशंसा और पुरस्कार की आकांक्षा न रहे बल्कि समाज को हमारा संपूर्ण जीवन ही ईश्वर प्रदत्त पुरस्कार नजर आए। तो इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

साजन तुम नहीं आए, ढलते जाए शाम सिताए लेकिन

अब वो आ ही जाए, चलते जाए शाम के साए।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आपको नई कटाई रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मिलो कि है दिल मिलाने के दिन, नहीं दूर जाने के दिन, ये है पास आने के दिन। देखो ना जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ।

0: दे मन दिल ना दुखाओ
1: परती नहीं नारी का संसार जा रहा है भगवान के घर का चिंगा

भगवान तेरी घर का सिंगार।

Thank you.

पर हो जाने जाना, उसके रूप में लगी हो और हसीन दिल पर हो जाने जाना, उसके रूप में लगी हो और हसीन तेरी कातिल राने मार ही डाला।

तो गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया, फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर।

पहचान हुई जागी मोहब्बत गाने लगी जिंदगी हमने दुनिया में आकर बोल पुकारा जिंदा हुई आशिकी हमने दुनिया में आकर बोल पुकारा।

उस भर दिया अयो भूस भर दिया मेरी चाहत में।

बन के गुलगुले जल के बुलबुले बन के गुलगुले जल के बुलबुले यार चुलबुले सुन रे पगले बोले बार बार बोले ढोले तू आज अपने दिल के सब दाग ढोले ढोले तू आज अपने दिल के सब दाग ढोले ढोले तू ढोले तू

रेशम हो या खादी, कब तक लादे लादी, सुबह का मैला आंचल धोकर किरणों पर फैलाए। दुनिया का हम कच्चा अपना लोहा सच्चा, घेर के धुंधली शाम से लोहा शाम को भी चमकाए। बन के गुलगुले जल के बुलबुले चाँद चुलबुले सुन रपगले, तोले तू आज अपने दिल के।

0: सनिया बन के दुल्हनिया चुपके इशारे कर चुपके
1: बोले तू आज अपने दिल

शमा मुस्कुरा कर जला, रश्क से कोई बुझ बुझ के जलने लगा। क्यों ओ कोई आने को है। वाह वाह वाह।

संगीत की दुनिया के साथ अब मेरा रिश्ता अपने 50 साल पूरे कर रहा है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कई यादें उभर रही हैं। कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं, खास तौर पे याद आ रहे हैं वो लोग जिनके साथ मैंने गाया, जिन्हें गाते हुए सुना। ऐसे सुरीले लोगों को मैं अपने सुरों की श्रद्धांजलि के अलावा दे ही कह सकती हूँ। मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं इन महान कलाकारों से अच्छा गा सकती हूँ, बल्कि ये कहूंगी कि इन 50 सालों में मैंने उनसे जो सीखा है उसे ही पेश करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। बचपन में या तो मैं अपने पिताजी को गाती हुई सुना करती थी या मुझे पसंद था सहगल साहब का गाना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिलूं, बातें करूं, उनका गाना सुनूं और अपना गाना सुनूं। ये सपना सपना ही रह गया, पर उनके सुरों का असर 50 सालों से मेरे संगीत के साथ साये की तरह चल रहा है।

उठे या आंधी अंधर साथ लिए जैसे पहाड़ से आग उठे हो गया खड़ा तन कर राणा हाथों में भाला उठा लिया हर हर बम बम बम महादेव हर हर बम बम बम महादेव कह कर गण को

गई झरोखे पर कटी हंसनी उसी अदी घोड़े पर चढ़ा दिखा राना जैसे कमान पर चढ़ाती।

ले खड़ग हाथ फिर कहाँ ठहर ले तैनात।

सचमुची है छत्राणी, फिर एड़ लगाई भोले पर, हर की बोली जय हो।